0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, जिसमें आप सुन रहे थे राग भटियार। कलाकार थे फैयाज वसीफुद्दीन डागर। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले कंप

0: पाउंड और एटीएम पी ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को

0: सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Union Cabinet approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The minister said the cabinet also cleared the mobile manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition, and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The government also approved 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The cabinet also gave nod to 2 multi-tracking projects covering 4 districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana.

भक्ति का संगीत हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आशा और विश्वास का दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। प्रभु का स्मरण मन को धैर्य देता है और आगे बढ़ने का साहस भी।

श्रोताओं, सच्ची भक्ति किसी विशेष स्थान या समय की मोहताज नहीं होती। जब मन निर्मल हो और हृदय में विश्वास हो, तब हर क्षण ईश्वर के सानिध्य का अनुभव होने लगता है। आइए इसी विश्वास के साथ एक और मधुर के माध्यम से महसूस करते हैं ईश्वर की उपस्थिति को।

श्रोताओं, भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो बिना किसी भेदभाव के हर हृदय तक पहुंच जाता है। और जब संगीत में भक्ति का भाव जुड़ जाए तो वातावरण अपने आप पावन हो उठता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन में भगवान महावीर के दर्शन पर विचार। माफ कीजिएगा, कार्यक्रम चिंतन में आप सुनेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों।

मातृभाषा के प्रति भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम जग जाहिर है। हिंदी भाषा के विकास और जन जन के हृदय में बसाने के लिए

चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मां त्रिशला की कोख से राजकुमार वर्धमान का जन्म हुआ। शीघ्र ही उन्होंने घर छोड़ दिया और वर्षों कठिन तप कर एक ऐसी दर्शन की आधारशिला रखी जिसे समझकर अगर आदमी जीवन जीने लग जाए तो सचमुच पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आए। जिनेंद्र ने इस पूरे दृग विषय को देखकर सात तत्व माने हैं। ये हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें जीव अजीव को द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य व्यक्त अवस्था का नाम है, अव्यक्त अवस्था का नाम भाव है। अनादि अविद्या के कारण कर्म जीव में प्रवेश कर जाते हैं। जीव के बाद अजीव तत्व के पांच भेद हैं, धर्म, अधर्म, पुद्गल, काल और आकाश। धर्म के विषय में महावीर कहते हैं, वत्थु स्वभावो धम्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, मगर अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जिन अनुशासन के ये पांच महाव्रत हैं। अपने मन, वाणी व शरीर के द्वारा असावधानी से किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी तरह का कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है, मगर जाने अनजाने हम में से हर कोई हिंसा करता है। करित हिंसा आदमी खुद करता है, कारित हिंसा वह है जिसे आदमी दूसरों से करवाता है। तीसरी हिंसा है अनुमोदन हिंसा, जिसे आदमी होते हुए देखता है मगर कहता कुछ भी नहीं। दूसरे महाव्रत सत्य के विषय में सबसे बढ़िया उदाहरण उनका है जिन्होंने हाथी को सूप, खंभा या रस्सी बताया था। महावीर कहते हैं, आदमी का अपनी प्रकृति को पहचान लेना ही सत्य है। और तीसरे महाव्रत ब्रह्मचर्य को साधे बिना सत्य की समझ नहीं होती। चौथा महाव्रत अचौरी है। मन में चोरी का भाव भी अगर पैदा हो जाए तो जिन अनुशासन कहता है चोरी हो गई। परिग्रह यानी संग्रह यानी होर्डिंग का सिद्धांत। तीर्थंकर महावीर को मानव मन की समझ थी, तभी तो उन्होंने अपरिग्रह को पांचवा महाव्रत माना। भगवान महावीर कहते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार के कारण आश्रव होता है। अगर आदमी क्रोध, मान आदि छोड़ दे तो भाव और द्रव्याश्रव दोनों से बच जाता है। बाहर से आने वाले हर प्रभाव को रोक देना संवर कहलाता है। जिन अनुशासन में कर्म के प्रवेश को रोकने के 62 उपाय हैं, जो संमितियां और गुप्तियां कहलाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, आश्रव और संवर से जो जीव बच जाता है वह निर्दोष हो जाता है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना भगवान महावीर के दर्शन पर विचार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुछ ध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

0: अनुमोदिते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः विश्वासं व्यक्तवान् यत् भारत यूरोपीय संघयोः व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनेन द्वयोः पक्षयोः सहकार्यम् अधिकं सुदृढं भविष्यति। ब्रुसेल्स नगरे सम्पन्नस्य तृतीय भारत यूरोप संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् असौ अवदत् यत् भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः सुरक्षा रक्षा सहकारः अथ गमनागमन रूपरेखा इत्येतेषां माध्यमेन विकसितः सहयोगः अग्रे अपि प्रवर्धिष्यते।
1: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
0: केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त व्यापार सन्धिं निष्पक्षं न्यायसंगतं संतुलितं च निरूप्य अवदत् यत् एषः सन्धिः उभयदेशयोः सर्वेषां क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकरः भविष्यति। भारतीय निर्वाचनायोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति। दिल्ली कर्णाटकयोः मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारिभिः प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य 29 दिनांक पर्यन्तं निर्धारितम् आसीत् अधुना आगामी मासस्य 8 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यं आगामी मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तं एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायां जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और विनिर्माण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
3: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को

सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका में शीतल चौहान के भजन। आपके साथ तबले पर थे पशुपतिनाथ मिश्रा, सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी पर थे विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर थे नफीस खान। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 7:30 हुए हैं, ये सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी। गुड मॉर्निंग।

श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी की इस बेहद खूबसूरत और ताजगी भरी सुबह में आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपकी दोस्त दुर्गेश और आज की हसीन सुबह की हम सफर। सर्द नर्म हवा के झोंके, चिड़ियों की चहचहाट और आपके हाथ में चाय का गरम गरम प्याला, वाकई जिंदगी हर सुबह हमें मुस्कुराने का एक नया बहाना देती है। तो चलिए अपनी इस सुबह को और भी सुरीला और सकारात्मक बनाते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग के साथ। दिन की शुरुआत करते हैं कैसे गाने के साथ जो हमारे भीतर

वाकई सच बात है दोस्तों, जब ज़िंदगी हमें प्यार करना शुरू कर देती है तो ज़िंदगी भी हमें नए नए तोहफे देने लगती है। जैसे ये सुबह, सुबह का जो समय होता है सिर्फ जागने का नहीं होता, बल्कि अपने सपनों को एक नई उड़ान देने का होता है। कल क्या हुआ उसे भूलकर आज एक नई शुरुआत करने का नाम ही तो सुबह है। और इसी ताजगी को महसूस कराने के लिए अगला गीत पेश है, जो आपको ताज़ी हवा और सुकून का एहसास कराएगा, बिल्कुल इस गीत की तरह।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इसी मुस्कुराहट, ताजगी और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। मैं हूं आपकी तुर्केश और कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। अगले आधे घंटे तक हम सुनने वाले हैं वही फिल्मी गीत जो आपकी सुबह को और भी खुशनुमा बना देंगे। चाहे आप चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हों, सैर पर हों या फिर अपने काम की शुरुआत करने जा रहे हों। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये सुरीले नगमे आपके अच्छे साथी बनेंगे। तो देर किस बात की, दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को एक और खूबसूरत गीत के साथ।
4: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
5: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ,

दोस्तों, हर सुबह हमें ये याद दिलाती है कि बीता हुआ कल सिर्फ एक याद है और आने वाला कल अभी बाकी है। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जब हम सिर्फ सुने, महसूस करें और बिना किसी जल्दबाजी के उन लम्हों को जी लें जो हमें बहुत पसंद हैं। दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारा आज का संगीत का सफ़र पसंद आ रहा होगा। इसी कड़ी में एक और बहुत प्यारा सा गीत सुनते हैं और आपके होठों पे मुस्कान ले आते हैं।

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि सुबह का अपना एक अलग ही संसार होता है। पत्तों की सरसराहट होती है, पक्षियों की चहचहाट होती है, उगते सूरज की सुनहरी आभा, और मानो प्रकृति का हर दिन एक नई धुन रचता हो। और ऐसे में अगर कुछ प्यारे फिल्मी गीत साथ मिल जाएं, तो सुबह और भी यादगार बन जाती है। बस सुबह हमें सिर्फ एक नया दिन ना दे करके ये संगीत भी दी जाती है। जब आप हमारे साथ होते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी सुबह को और भी हसीन बना दें। बिल्कुल इस गीत को।

तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संगीत यात्रा के साथ आज का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। अपने दोस्त रेडियो होस्ट दुर्गेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: कैच द रेन, बारिश की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है

0: डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और एटीएमपी ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट

0: भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहाँ तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।

0: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
2: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमेरिका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
3: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Union Cabinet clears 2 elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his 2 siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 2 elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43-kilometer long, 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River Bank in Varanasi city at a cost of around 11,000 crore rupees.
6: वरुणा नदी के किनारे किनारे
7: द प्रोजेक्ट इज अ फुली एलिवेटेड 6-lane and 4-lane कॉरिडोर अलोंग द वरुणा रिवर इट विल हैव अ टोटल लेंथ ऑफ 43 किलोमीटर्स विद एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,998 crore रुपीज एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली 4 years द फुली एलिवेटेड 6-lane कॉरिडोर रनिंग अलोंग साइड द गंगा रिवर इट विल स्पैन 46 kilometers एंड इज एस्टिमेटेड टू बी बिल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 14,448 crore रुपीज
6: 14,448 crore rupees का बनेगा।

0: minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. And in men's cricket, second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed the India-UK historic FTA coming into effect, setting a new path, and also the cabinet clearing major projects pushing for semiconductor chips and mobile phone production. Iran threatens regional oil blockade over US sanctions is a headline in the Hindu. Well, the paper quotes Iran saying oil and gas will either be for everyone or no one as US claims waves of strikes. As the world famous Rath Yatra in Puri begins today, President Draupadi Murmu in an op-ed in Hindustan Times has written about her childhood memory of prayers and hymns to Sri Jagannath. She has expressed her feelings, saying 13 festivals are also said to be celebrated during the 12 months of the year in Kshi Kshetra. But the splendor of Rath Yatra is unique and incomparable. And finally, under the headline, Power of Second Life, the Times of India writes about discarded X-ray sheets transformed into stylish dresses, orange peels creating fabric, and for use for shoes refurbished for school children in Ladakh, showing India's journey towards sustainability. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet clears two elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World-famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों के आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो शाहराह प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने वाराणसी में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सफर में लगने वाला वक्त कम से कम करने की खातिर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में नामानिकारों को जानकारी देते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा दूसरा प्रोजेक्ट वाराणसी शहर में तकरीबन 43 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतालिक है, जिसमें 6 और 4 लेन होंगी। इस पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
3: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
2: मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ सेमीकॉन के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दी है।

0: जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमिकॉन के पहले मरहले की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए मस्कुरा स्कीम का मकसद आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर मंजरनामे पर भारत को आगे रखने के सरकार के अहद के सिलसिले में कदम बढ़ाना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमिकॉन के दूसरे मरहले के तहत 4 लाख करोड़ रुपये की मालियत की सरमायाकारी होने की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज़्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। IRCTC ने इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए 4 अहम इकदाम किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज़्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगे, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है IRCTC.co.in/e-ticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं योम आज़ादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। योम आज़ादी के जश्न के लिए जारी तैयारियों के मद्देनज़र महकमे आसार कदीमा ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। महकमे के एक अहलकार ने कहा है कि योम आज़ादी से कबल हर साल इस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पहली बैनुल अक्वामी फ़्लाइट सर्विस का आगाज़ किया गया है। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से मुत्तहिदा अरब अमारात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली बराह रास्त परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का हमेशा से ये मानना है कि एक आम आदमी को भी हवाई जहाज़ में सफ़र करने का मौका मिलना चाहिए। रियासत की एविएशन पॉलिसी इसी नज़रिए के तहत तैयार की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उड़ीसा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद वहां जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर के अपने सालाना सफर पर रवाना हो रहे हैं और पुरी के पवित्र शहर की फजा जय जगन्नाथ की अकीदतमंदों के नारों से गूंज रही है। पुरी में आज सुबह सवेरे से तेज बारिश होने के बावजूद लाखों अकीदतमंद बारिश की परवाह न करते हुए पवित्र रथों का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम के तनाजुर में हुक्काम चौकसी बरत रहे हैं। मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर पुरी में बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: उधर झारखंड में सालाना रथ यात्रा पूरी रियासत में रवायती जोशोखरोश और अकीदत के साथ हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जगन्नाथ चकानेन लीला चलवारे।
4: रांची के दुर्वा में तारीखी जगन्नाथपुर के मंदिर में आज सुबह मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। दोपहर बाद देवी देवताओं को रथ पर

0: विराजमान कराए जाने के बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा मासीबाड़ी के लिए रवाना होगी। जिला इंतजामिया ने सीसीटीवी निगरानी और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती समेत वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। खुंटी में मकामी इंतजामिया ने कल तारीखी रथ मेले के लिए किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अली।
1: गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के शुभ मौके पर भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जमालपुर में तारीखी जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शिरकत की और भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सुनहरी झाड़ू से रथों के रास्तों को साफ करने की अलामती पाहिंद विधि की रस्म अंजाम दी और बाजाब्ता तौर पर रथ यात्रा का आगाज किया। भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के अजीम शान रथ दर्जनों अखाड़ों भजन मंडलियों और लोक रक्स करते हुए ग्रुपों के हमरा 16 किलोमीटर के रिवायती रास्ते से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब अमित शाह ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा पुख्ता अकीदे एतमाद और भक्ति की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र रथ यात्रा से भारत के शानदार सकाफती विरसे और भगवान के तई गैर मुतजलजल अकीदत की अक्कासी होती है। केरलम में सबरीमाला मंदिर के कपाट महाना पूजा अर्चना के लिए आज खोले जा रहे हैं। ये मंदिर इस महीने की 21 तारीख तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। अकीदतमंदों को कतार के वर्चुअल निज़ाम के जरिए ही वहां दाखिल होने की इजाज़त होगी ताकि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो सके। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों के तहफ़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमज़ोर करने की खातिर फ़ौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फ़ौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप की। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हरा दिया। वक्फे से पहले कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी, लेकिन खेल के 55वें मिनट में एंथनी गोर्डोन ने इंग्लैंड की तरफ से पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया, जबकि लुटारो मार्टिनेज ने 90वें मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में शोपिया गार्डन्स में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले 1 मैच में इंग्लैंड को 6 से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी 1 मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी राजस्थान, मगरबी राजस्थान

0: और मगरबी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के बाज हिस्सों में आज शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और हवा में नमी के साथ मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने भारत और बरतानिया के दरमियान हुए जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे के नाफिजुलअमल होने की खबर को अपने पहले सफ़े की बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है और वजीर अजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि यह भारत बरतानिया शराकत दारी में एक अहम लम्हा है। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने पार्लियामेंट हाउस में दो नौ मुंतखब अरकान मंसूर अली खां और रजनीश कुमार अग्रवाल को राज्यसभा की रुकनियत का हलफ दिलाया। इस खबर को प्रताप ने पहले सफ़े पर पेश किया है। सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की लागत वाली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस खबर को कई अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमेरिका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों के तहफ्फुज़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। राग है भोपाल तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन, राग था भोपाल तोड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का। यह हमारा अगला कार्यक्रम है उद्योग पत्रिका। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है।
3: श्रोता मित्र नमस्कार। आज का व्यावसायिक परिवेश पहले की तुलना में कहीं अधिक कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी हो गया है। तकनीकी आधारित तेजी से बदला है और ऐसे समय में किसी भी संस्था की सफलता केवल अच्छे उत्पाद या सेवाओं पर निर्भर नहीं करती बल्कि प्रभावी प्रबंधन यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रशिक्षित मानव संसाधन, प्रेरणादायी नेतृत्व और मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर भी समान रूप से आधारित होती है। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुशांत दीक्षित को। सुशांत जी, आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आपको 2 दशकों का एक लंबा नेतृत्व का अनुभव है और आप व्यवसाय के मामले में, बिजनेस के मामले में साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
4: धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे।
3: सुशांत जी, आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की?
4: 20 साल पहले जब कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स नए नए आए थे पूरे दुनिया में, तभी साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दिया मुझे और तभी स्लोनेस लाने के लिए सिस्टम में और ऑपरेशन रोकने के लिए साइबर अटैकर्स करते थे
3: जी।
4: तो वो टाइम पे स्किल गैप मुझे बहुत दिखा, तो मैंने मेरा स्किल्स उस पे बढ़ाने का कोशिश किया, अलग अलग तकनीकें यूज की, डेवलपमेंट से लेके एप्लीकेशन डेवलपमेंट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में आया, फिर साइबर सिक्योरिटी में आया और उसके बाद मुझे मौका मिला एक टीम लीड करने का। तभी मैंने सोचा कि मुझे मैनेजमेंट तकनीक की आवश्यकता है, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ और स्किल धारण कर लिया है मैंने, अभी मुझे मैनेजमेंट का स्किल धारण करना है। तो मैंने 2 साल का फुल टाइम MBA किया, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से किया। उसमें मुझे एक डायरेक्शन मिला कि मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है और करना क्या चाहिए मैनेजमेंट के साथ और उसका महत्व क्या है, वो पूरा मैंने समझा।
3: सुशांत जी, तो आज के दौर में व्यवसाय में एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ये कितना इम्पोर्टेंट है?
4: ये बहुत ही आवश्यक चीजें है, सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं बट पूरे इंटरनेशनल कंपनीज के लिए। आपने देखा रहेगा बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज में इंडियन CEOs की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट से लेके मैनेजमेंट सीखा है और अभी वो लीडरशिप में एक अव्वल स्थान पे है। तो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत है, जो उत्पादन है
3: जी
4: उसको गुड क्वालिटी बनाने के लिए, उसको तकनीकी दौर से अच्छा बनाने के लिए और जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंचाने के लिए, वो करते हुए अपने लोगों को ऊपर लेके जाने के लिए मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा टूल है। मेरे ख्याल से सब लोग ने जिंदगी में सीखना चाहिए
3: जी। सुशांत जी, तो जैसे अभी आपने कहा कि ग्लोबल लेवल पे इंडियंस जो है वो लीडरशिप दे रहे हैं, और तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जो स्किल्ड या फिर स्किल डेवलप्ड है या फिर मैनेजमेंट जो क्वालिटी है वो कहीं और जगह से बेहतर है?
4: मैनेजमेंट की एक खूबी है जो इंडिया में है और इंडिया में बहुत अच्छे क्वांटिटी में है, जो कि स्कार्सिटी हम लोग के कल्चरल वैल्यूज है और जो हम लोग अपने परिस्थितियों से हम लोग जूझते हुए आए हैं 20 इयर्स 30 इयर्स, वो हमें कहीं ना कहीं रेजिलिएंट बनाता है
3: जी।
4: और लीडरशिप में रेजिलिएंट रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी कभी आगे होती है, कभी पीछे होती है, कभी उनका शेयर ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, बट रेजिलिएंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडियन लीडरशिप प्रोवाइड कर सकती है दुनिया में कोई भी कंपनी को।
3: तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज का दौर जो है वो चैलेंजिंग का दौर है, चुनौतियों का दौर है। चुनौतियों के साथ में जो आज जो परिवर्तन हो रहा है और वो भी डिजिटल परिवर्तन हो रहा है, और इसमें डिजिटल परिवर्तन में ये देखा जा रहा है कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि जो बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस है वो कुछ ज्यादा बढ़ गया है, तो आज की चुनौतियां क्या क्या है, क्या हो सकती है?
4: सबसे बड़ी चुनौती और अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ है, जो है कि कस्टमर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना और उनको अपने प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करना, इस्तेमाल करने के लिए जल्दी से जल्दी वो समय कम लगना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है
3: जी।
4: तो जैसे बिजनेसेस के लिए कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जो

0: होता है वो डिजिटल माध्यमों के वजह से कम हो गया है।
1: जी
0: और जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा बैंकिंग में जो अकाउंट ओपन करने के लिए टाइम लगता था और अभी अकाउंट ओपन करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो बहुत ही कम है। पहले 3-4 दिन लगते थे, अभी वो 1 घंटे में या फिर ऑनलाइन आप विद इन 5 मिनट्स कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल इकोनॉमी ने हम लोग को दिया है वो बहुत ही ऊपर के दर्जा का है। और जो कंपनियां सेवाएं दे पाती है डिजिटल इकोनॉमी की वजह से, डिजिटल टूल्स की वजह से,
1: जी
0: वो कम्पिटिटिव हो गई है। सेवाओं की वजह से उनका एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है जो कंपटीशन में जिताता है।
1: जी सुशांत जी, अभी आपने कहा कि पहले जैसे बैंकिंग के आपने उदाहरण दिया और ये कहा कि पहले 3-4 दिन एक अकाउंट खोलने में लग जाता था, लेकिन अब जो है कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में ये सब सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आजकल जो सुविधा हो गई है, जो आसानी हो गई है, उसके बाद कुछ खतरा भी बढ़ गया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। डिजिटल इकोनॉमी के वजह से साइबर अटैक्स भी बढ़ गए हैं।
1: जी
0: तो जैसे मैंने लीडरशिप के बारे में बोला, वैसे ही मैं डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बोलूंगा कि रेजिलियंट रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है।
1: जी
0: अटैक होने के बाद भी हम कितने टाइम में उभरते हैं वो अटैक से, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और उसमें हमने काम करना चाहिए। मैं बहुत सारे कंपनीज के साथ काम करता हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ अक्रॉस द ग्लोब। उनको रेजिलियंट बनाने के लिए उनके प्रोसेसेस, उनके पॉलिसीज और उनके प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ों में हम उनको हेल्प करते हैं ताकि वो रेजिलियंट रहे, रेजिलियंट बने और कोई भी खतरे से बाहर जल्दी से जल्दी आ जाए।
1: रेजिलिएंट बनाने के लिए आप किन किन बातों को ध्यान रखते हैं, किन चीजों पर आपका ज्यादा फोकस होता है?
0: इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं कोई इंसिडेंट में, पॉलिसीज कैसे लगाते हैं, डिसीजन कितना फास्टर लेते हैं,
1: जी
0: ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रेजिलिएंट बनने के लिए। अगर आप एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस आपने डिसीजन लेने के लिए 4 घंटे लगा दिए तो तब तक पूरा प्रॉब्लम और बड़ा हो गया रहेगा।
1: जी
0: तो डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी फास्टर और प्रोसेसेस जो हम लोग ने कंपनीज में लगा के रखी है, गवर्नमेंट में लगा के रखी है, वो कितनी अजाइल है ये भी हमको देखना चाहिए।
1: सुशांत जी, तो अभी जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल की भी ज़रूरत होती है, स्किल डेवलपमेंट में ये कम्युनिकेशन स्किल कितना मायने रखता है, किन किन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है जब आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस के बारे में आपको बताना है, प्रचार करना है?
0: ये बहुत गलत फहमी है कि कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब आप कितने कम से कम वर्ड्स यूज किए हुए आपका मैसेज सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। कंपनी के बारे में जो कॉपी राइटिंग होता है वो आप कैसे करते हो, आपका एडवर्टाइजिंग कैसा होता है, क्या आपका सेल्स प्रोडक्ट और मार्केटिंग सेम लैंग्वेज बात कर रहा है कि नहीं, सेम मैसेज भेज रहा है कि नहीं, ये होता है कंपनी का कम्युनिकेशन। इसमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।
1: इसमें सिर्फ लैंग्वेज की ही बात नहीं होती, यानी कि हर मुद्दे पर, हर पहलू पर ध्यान देने की बात होती है।
0: यस, सबसे बड़ा गैप मैं देख रहा हूँ आज की स्टार्टअप्स में, कंपनीज में या फिर कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज में भी, उनका सेल्स मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट तीनों अलग अलग चीजें बात करते हैं,
1: जी
0: तो एक सिंगल मैसेज कस्टमर तक पहुंच नहीं पाता है।
1: देखिए सुशांत जी, मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है कि स्टार्टअप तो शुरू कर लेता है, उस स्टार्टअप के शुरुआत करने के बाद में जो प्रोडक्ट आते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए दिक्कत होती है, तो आप इसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं? इसमें भी क्या कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए?
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने में, सेल्स करने में एक प्रोसेस और एक बहुत ही सीखा और स्किल डेवलप किया हुआ इंसान की आवश्यकता है। पूरे दुनिया में ही सेल्स या फिर जो बेचने वाला है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट इंसान होता है कंपनी में, जो पूरे कंपनी का वजन अपने कंधों पे लेके घूमता है। उसके वजह से ही सैलरी एचआर को मिलती है, मार्केटिंग को मिलती है, सबको,
1: कंपनी भी उसी
0: सेल्स
1: से चलती है।
0: कंपनी भी उसी से चलती है। तो उसके लिए एक स्किल होता है, एक तकनीक होता है, वो सीखने की आवश्यकता है, जो मेरे ख्याल से फाउंडर ने भी सीखने की आवश्यकता है।
1: आज का दौर जो है डिजिटल का दौर है, और डिजिटल में भी अब एआई की तकनीक आ गई है,
0: बिल्कुल
1: और एआई तकनीक आने के बाद ये कितना सुरक्षित है, और क्या इसमें लीडरशिप की भी कितनी आवश्यकता होती है?
0: सो मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। कभी भी इंसान का जजमेंट जो है वो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हर एक
1: लेकिन इम्पोर्टेंट तो
0: इंसान,
1: है किसी बिजनेस के लिए आज के दौर में डिजिटलाइज्ड होना या फिर एआई को अपना लेना, ये भी तो
0: हमारे
1: जरूरी है।
0: पास कोई ऑप्शन नहीं है एआई को अपनाने के अलावा, क्योंकि जो जैसे मैंने बोला कस्टमर एक्विजिशन जो है या फिर कम्पिटेटिवनेस है, उसके लिए एआई का उपयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और एआई कितना भी आगे चले जाए, अगर ये दो चीज़ें आपके पास है, जजमेंट और रिलेशनशिप, तो आपको एआई से कोई खतरा नहीं है, आप सुरक्षित है, आपका जॉब सुरक्षित है। ये दो स्किल

0: आपने पास रखिएगा जजमेंट और रिलेशनशिप।
1: जी, आज के दौर में चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जब तक आप उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप खुद को शो नहीं करते हैं, तब तक कुछ आगे बढ़ना मुश्किल सा लगता है। निर्भर हो गए हैं सभी को इसमें, तो ऐसे में साइबर सुरक्षा, इसके क्या आप एक्सपर्ट भी हैं, ये कितना ज़रूरी है और इसमें चैलेंज क्या है?
0: साइबर सुरक्षा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। अगर भारत स्किल रिसोर्सेज साइबर सुरक्षा में दे पाए, कम से कम 5 मिलियन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और पूरा दुनिया 1 मिलियन ही एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस कर पा रहा है, स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं बट देशों के लिए, राज्यों के लिए भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है।
1: जी
0: और बिकॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स आपने देखे रहेंगे, ये वोलाटाइल सिचुएशन में बहुत सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स भी होते हैं और उसके वजह से ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है।
1: जी सुशांत जी, आजकल देखा जा रहा है कि कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, जिसमें कि जो होते हैं MSME, और उनके पास में सीमित संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस थोड़े कम होते हैं और उसे आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में साइबर सुरक्षा के जरिए उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है?
0: MSME में मैनेजमेंट स्किल्स ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट स्किल्स MSME में आप उभारे, अच्छे मैनेजर को अच्छा अपॉर्चुनिटी दे, तो साइबर सुरक्षा के जरिए वो ROI आपको दे पाएगा, आपके उत्पादन मार्केट में जल्दी पहुंचा पाएगा, एक कैटेगरी क्रिएट कर पाएगा आपका खुद का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो साइबर सुरक्षा के जरिए किया जा सकता है।
1: जी, एक लीडर के लिए और लीडरशिप के लिए कौन सी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि एक अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकता है?
0: विजन एंड कॉन्फिडेंस,
1: जी
0: हर एक लीडर के पास एक विजन होना चाहिए जो इररिप्लेसेबल है और कोई कॉपी नहीं कर सकता उसको। जितना आगे का देख सकते हो और क्लियरली देख सकते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है विजन के साथ साथ।
1: इतने सारे क्वालिटीज होने के बाद में भी कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ कमजोर हो रहे हैं, बिजनेस में थोड़ा सा स्लो हो रहा है, मूवमेंट थोड़ा स्लो हो रहा है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? फाइनेंशियल या मैनेजमेंट या स्किल डेवलपमेंट, तीनों को मिलाकर के किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है?
0: मैं आपको एक बहुत अच्छी तकनीक बताता हूँ, जो अच्छी एक तकनीक बहुत ही उम्दा प्लेयर ने बनाई थी, उसका नाम है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। रेड ओशन मतलब जिधर 10 प्लेयर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे सारे लोग फोन बेच रहे हैं और मैंने आईपॉड बना दिया, तो ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी मतलब इनोवेशन है, जो आप थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है स्लो मार्केट में, कम्पिटिटिव मार्केट में, और जहाँ पे आपको ग्रो होना है और डिफरेंशिएट करना है, तो मैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूँगा।
1: सुशांत जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है, पूरे देश का विजन है कि 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनाना है, तो इसमें बिजनेस या स्टार्टअप की भूमिका क्या हो सकती है और किस प्रकार से इसे आगे लेकर जा सकते हैं?
0: हमें अवश्य अलग अलग जगह पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज हुई। सिर्फ आईटी सर्विसेज से जीडीपी ग्रो नहीं होगा, हमको हर एक अलग अलग माध्यम से अपना जीडीपी बढ़ाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि जो लीडरशिप और जो मैनेजरियल स्किल्स और जो स्किल्स भारत में है, मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज आ सकता है इसमें। हमारे युवा बहुत ही प्रिपेयर्ड है ये सिचुएशन के लिए, और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो बहुत ही उम्दा है और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लीडर से। सो आई थिंक इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, वी कैन डू इट।
1: जी, वैसे अभी अपने युवाओं का जिक्र किया, और जो यूथ है, हमारे देश में यूथ की संख्या बहुत है, यानी कि काफी है पूरी दुनिया से, तो युवा उद्यमियों को जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स के लिए, आपका क्या संदेश है ताकि वो प्रबंधन में, नेतृत्व में, कौशल विकास और साइबर सुरक्षा के बीच एक संतुलन स्थापित कर सके, एक बैलेंस बना सके?
0: मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा विचार विनिमय पे आपका समय मत डाले, जस्ट स्टार्ट। एंड वो एक प्रोसेस है, उसमें आप बहुत चीज़ें सीखेंगे। कोई भी आपको प्रिपेयर करके बिजनेस आप चालू नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो आप नया सीखेंगे बिजनेस चालू करने के बाद, कुछ ना कुछ तो नई सीख आपको हर एक दिन मिलती रहेगी,
1: यानी कि जो चैलेंजेस आते रहेंगे उससे भी आप सीखते रहेंगे।
0: उससे भी सीखते रहेंगे। तो जस्ट स्टार्ट, चालू करिए और सब चीज़ें होती रहेंगी।
1: जी सुशांत जी, आपने लीडरशिप के विषय में और मैनेजमेंट के विषय में, स्किल डेवलपमेंट के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी, उससे आपसे हम तो चाह रहे थे कि और भी कुछ बातें करें, लेकिन हमारे पास वक्त की बड़ी कमी होती है, इसलिए हम हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो साथियों, आपने व्यवसाय में प्रभावी प्रबंधन, निरंतर कौशल विकास, सशक्त नेतृत्व और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अत्यंत उपयोगी जानकारी आपने सुशांत जी साझा की। हमें विश्वास है

0: आपकी बातें हमारे श्रोताओं और उद्यमों के लिए प्रेरणादायक और एक मार्गदर्शक साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचक स्वर शालिनी मित्तल और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: उद्योग पत्रिका।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम मिट्टी दी महक। तो प्रस्तुत है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: शाद गुड़े तो मिठी, मामा मो जवानी वाली शाद गुड़े तो मिठी, आई जवानी हर कोई वेंदा जांदी किसे न दिठी, आई जवानी हर कोई वेंदा जांदी किसे न दिठी, की मनिया दे बंदिया तेरी आखर होना मिट्टी, पर सच्चे इश्क ने ताने रहना ताड़ी हो जे चिट्ठी हो।
1: असीं सुन रहे

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा के समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। नए स्वरूप में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी श्रेणी की सीट उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, टिकट बुकिंग करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी लेगी जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी नई वेबसाइट का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसकी आसान प्रतिक्रिया पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज पूरे देश में शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये भगवान जगन्नाथ की मौसी का निवास स्थान माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में ठहरते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों पर श्री मंदिर लौटते हैं जिसे बहुधा यात्रा या वापसी रथ यात्रा कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध ये रथ यात्रा अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। उन्होंने भगवान से सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान हफ्ते में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की

अनुमति होगी। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गई हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बेहद अहम खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली टैंकर को रोक दिया। ईरान

बहुत ही प्यारा गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आंधी से, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में, और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत खुशी होती है आपसे मिलते हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि आपके मैसेजेस आते हैं और हम भी आपसे बात कर पाते हैं और आपके दिल का हाल जानते हैं और अपना भी सुना पाते हैं इस कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बात भी मेरे ध्यान में आ रही थी अभी प्रोग्राम से पहले, कि ज़िंदगी में हम रोज़ ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग पहली ही मुलाकात पर दिल पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, तो कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं। तो दोस्त, मेरे दिल में आया कि मैं भी आपसे पूछूं कि आपको किसी दूसरे इंसान में सबसे ज़्यादा क्या इम्प्रेस करता है, क्या अच्छा लगता है दूसरे इंसान में? क्या उसकी सादगी या ईमानदारी, या यूँ कहे मुस्कुराहट, या बात करने का तरीका? साथ में कभी कभी किसी में कॉन्फिडेंस होता है, वो भी देखकर बहुत अच्छा लगता है, और दूसरों को मदद करने की आदत भी होती है, या फिर आपको उसका व्यवहार अच्छा लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा, आखिर कौन सी एक बात है जो आपको किसी व्यक्ति का प्रशंसक बना देती है और आप उसके कायल हो जाते हैं? तो सोचिए और हमें बताइए कि आपको दूसरे इंसान में सबसे ज़्यादा क्या इम्प्रेस करता है। तो दोस्तों, और भी बातें बहुत सारी होंगी और ये हमें ज़रूर बताइएगा। मैं साथ में ये कहना चाहूँगी, जो नए श्रोता है जिन्हें हमारा ईमेल आईडी नहीं पता, उन्हें भी बता देते हैं कि वो हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो हमारा मेल आईडी बिल्कुल नोट कर लीजिए, हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com, और एक बार फिर दोहरा दें, iprradio.delhi@gmail.com। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस और मेल का, बहुत से मैसेजेस हैं लेंगे, पर एक प्यारा सा गीत और फिर बताएंगे किन किन ने ये फरमाइश हमारे को भेजी है। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद में। कहते हैं खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, बल्कि इंसान की सोच, उसके व्यवहार, उसके व्यक्तित्व में होती है। कई बार कोई व्यक्ति अपने शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कामों से दिल जीत लेता है। और यही बात हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपको दूसरे इंसान में सबसे ज़्यादा क्या इम्प्रेस करता है? सादगी, ईमानदारी, आत्मविश्वास, या मदद करने की आदत, या कुछ और बात? कभी कभी किसी की मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी लगती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो चलिए, ये तो हो गई बातें बहुत सारी, और अब हम आपके मैसेजेस भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ये संदेश, ये हमें आया है किशनगंज बिहार से, है रविंद्र मोहनदास आशा देवी जी का ये संदेश। और अगला संदेश हमें आया है, ये आया है हमें आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहाँ का। और अगला संदेश हमें आया है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, है रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल, बाबू, प्रियांश, कुमारी, भाव्या देवांगन जी का संदेश। और ये हमारे साथ जुड़े हैं बुल्ढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से, सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, वटसिंगी बुल्ढाणा से इनके साथ हैं अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली जी। और ये हमारे साथ हैं किशोर नगर अमरावती से जुड़े इरामन शेंडे, शीला देवी, सिद्धार्थ गोंडाने जी। और छत्तीसगढ़ सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं विमला नेजा और सतीश नेजा जी। और ये संदेश हमें आया है, ये हमें आया है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। और हमारे साथ जुड़े हैं गांव पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे। और ये हमारे साथ जुड़े हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं हमारे साथ जुड़े शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी। जल्दी जल्दी हम मैसेजेस ले रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं। अगला संदेश ले लेते हैं, ये आया है फातिमा कॉलोनी से, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद शेख का। और ये छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी। और एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा। इनके साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु रिधान खुराना जी। और सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम भी हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने ये जुड़े हैं हमारे साथ कुमार हेड़ा सहारनपुर से। और दतरंगी भाटापरी छत्तीसगढ़ से हमें ये मेल आया है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा का। तो आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद, और आज आपके साथ हूँ मैं शोभा शर्मा। और बहुत सारे संदेश हम ले चुके हैं और बहुत सारे संदेश अभी वेटिंग में हैं, तो चलिए संदेशों को ही शुरू करते हैं। ये संदेश आया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोडाना का। और इनके साथ आदलपुरा गोगांवा से जुड़े हैं संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। और ये संदेश हमें आया है कस्बा बेलराम से इरशाद अहमद शाह, शाह जहाँ बेगम मरियम जैनब का। लिख रहे हैं इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, तो दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बिना ये प्रोग्राम अधूरा है, आपके संदेश ही हमें अच्छे लगते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है हमें सत्य प्रकाश सनोठिया का, रोहिणी से। ये लिखते हैं मुझे कई लोगों की निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी लगती है, इसके अलावा कुछ लोगों की बड़े से बड़े सभी भी उनकी जो संयमता जो भरते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। वही बात, बहुत सही बात की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और उसकी वजह से उनका जो अच्छा समय होता है, कोई अपॉर्चुनिटी होती है, छूट जाती है। और निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि कहें तो बहुत सोच विचार के लिए, परंतु फिर भी निर्णय लेना चाहिए टाइम पर, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर समय आपका निर्णय लेता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि उन्हें निर्णय लेने की क्षमता अच्छी लगती है, और पेशेंस की बात की है, संयमता की बात की है, तो वाकई बहुत सही बात की है। ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए इंसान को। चलिए अगर आगे देखते हैं मैसेज आगे कौन से आया है। ये आया है हमें ऊपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवास अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अब्बान अब्बासी, और साथ में इन्होंने लिखा और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य की ओर ये मैसेज उन्होंने भेजा है। और ये लिखते हैं जो दिल और नज़र से उतर गए क्या फ़र्क पड़ता है, वो किधर गए, बदल जाती है ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त जब कोई तुम्हारा तुम्हारे सामने तुम्हारा नहीं रहता। वाह क्या बात कही है, बिल्कुल दिल को छूने वाली बात। और अगला जो मैसेज आया है वो आया है मैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का। ये लिख रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, गीत भी अच्छे लग रहे हैं, हमारा मेल शामिल करने के लिए लिखते हैं। तो शुक्रिया आपको, बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमांश का। और हमारे साथ जुड़े हैं ये हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। ये लिखते हैं हमें तो अपने दोस्त की अदा, उसकी मुस्कान, उसका चाल चलन सब अच्छा लगता है, वे खुद ही बहुत अच्छे हैं। तो दोस्त वाकई में जो हमें पसंद होता है उसका सब कुछ ही अच्छा लगता है हमें। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से ये हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे जी और इनके साथ है प्रणय प्रसिद्धि। और अगला संदेश हमें आया है पिंगावाला चौक घरैया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, व्रत मक्कड़, कमल साहनी का। और ये हमें संदेश आया है दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा का। और नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं अजहर अहमद अलवी, इरशाद अहमद अलवी, सहाना बेगम और अलवी। और जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं जोन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। और ये हमें संदेश आया है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से है श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख और डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख और कुमार संचित दयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, सरबत देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षिता देशमुख। और इन्होंने कहा है कि समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार की ओर से इन्होंने संदेश भेजा है। और अगला संदेश हमें आया है राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी का चौधरीवास से। और अगला जो संदेश है ये आया है हमें किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे का। लिखते हैं मेरा एक दोस्त था जिस का नाम जयपाल, इन्होंने नाम बता रखा है, वह मुझे बहुत मदद करता था क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत नाजुक थी। आज वह मेरा जी दोस्त मुझसे जुदा हो गया, लेकिन मैं उसे भूला नहीं, जब भी मुझे उसकी याद आती है तो बहुत अफसोस होता है। जी हाँ दोस्त, वाकई में अच्छे लोग तो याद रहते हैं।

क्योंकि वो दिल के करीब हो जाते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। यह आया है अनवर साबरी, सन्नो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी का, दाऊद सराय सहारनपुर से। और हमारे से जुड़े हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह जी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। ये लिखते हैं, हम भी आपके नियम में श्रोता है, गुजारिश है कि आप हम आपसे अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो दोस्त ऐसी बात नहीं है, हम सबके संदेश लेने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगला जो संदेश है वो आया है राजू अग्रवाल, चरणदास, रेखा चौधरी का, वसद हिसारल से। और एक और संदेश लेते हैं, ये हमें आया है महरारा दरवाज़ा एटा से, नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रशीद वारसी का। और इनके साथ हैं किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान, सभी हाँ अंजुम खान भी जुड़े हुए हैं। ये लिखते हैं, मेरा मेल शामिल करें, काफ़ी देर हो गए, मेरा नाम शामिल करें। तो दोस्त ऐसी बात नहीं है, देखा ना, शामिल हुए ना आप। और अगला जो संदेश है वो आया है हमें चौधरीवास हिसार से, राज अग्रवाल, पंकज, निर्मला का। और ये संदेश आया है हमें मॉडल टाउन करनाल से, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, शशि वाला जी। ये लिख रहे हैं कि हमें प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लगता है और हम आपके आने से पहले प्रोग्राम चला कर रख देते हैं और बहुत मैसेजेस भी भेजते हैं। ये लिख रहे हैं। और अगला जो संदेश है वो पढ़ लेते हैं। ये हमें आया है आदर्श नगर मलौट पंजाब से, राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निर्वाण शर्मा का। और ये चंडीगढ़ सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा, जिस दोस्त को हम, ये लिखते हैं, नमस्कार शोभा बहन, नमस्कार आपको भी, जिस दोस्त को हम मिलते हैं उनके चेहरे की खुशी बयां कर देती है कि उसके लिए हम कितने खास हैं। निस्वार्थ मोहब्बत दूर से चमकती है, जब हम खुद प्यार का जज्बा संजो कर रखते हैं तो दोस्त तो क्या सारी दुनिया खूबसूरत लगती है, क्योंकि प्यार करने वाले पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। वही लाजवाब बात कही आपने, ऐसा ही विश्वास हम सभी को होना चाहिए। और ये संदेश, जी हाँ, ये लिख रहे हैं कि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मैसेज नहीं पढ़ा पर हमने इनका मैसेज पढ़ लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ठहल बाज़ार पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से इनके साथ जुड़े हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू, भाविक सिक्का। ये लिखते हैं, दोस्ती में ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी तो होनी चाहिए, ईमानदारी के बिना तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता ना। और अगला जो मैसेज आया वो आया शहबाज कलां, जसवा, पाकवड़ा, जिला मुरादाबाद से, मज़ाहिर हुसैन अंसारी, बेगमा, रईसा नाज, बेटा मुजक्किर बाबू, रईसा मज़ाहिर, मजहर, आसिम, बेटी सुमैया, महक की ओर से। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं प्यारा संगीत शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुन रहे थे बगावत फिल्म से ये गीत, और आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। और आपकी पसंद में आपके मेल शामिल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम आपके मैसेजेस का रुख करते हैं और ये लेते हैं अगला संदेश। हमें आया है बड़े खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। और ये संदेश हमें आया है गोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार का। ये लिखते हैं कि

तो हमारी फरमाइश का गीत बजता है, हमारे मैसेज शामिल होते हैं। तो दोस्त आपका मैसेज हमेशा शामिल होता है, आप इस तरह से शिकायत भेजते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। दोस्त अगला संदेश ले लेते हैं। आया है गांव कल मंडी खुद जिला झालावाड़ राजस्थान से, अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार, रसमस राजपूताना परिवार की ओर से इन्होंने ये संदेश भेजा है। और ये अगला जो संदेश हमें आया है, ये आया है शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का। ये लिखते हैं कि हमने 10:21 पर मेल भेजी, अभी नहीं आई। तो दोस्त हम बारी बारी से मैसेज लेंगे ना। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है गाज़ियाबाद से शीशपाल अकेला का, और जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। तो अब अगला संदेश हमें आया है, ये है कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बेबीता मिगलानी का। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं हमारा ये अगला गीत, बहुत ही प्यारा सा गीत है और आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और जिन श्रोताओं ने भेजी है उनकी तो बात ही कर रहे हैं।

तो दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस और मेल हमने आपके लिए और आज अपने संदेशों के जरिए बताया भी कि किसी की सादगी या किसी की ईमानदारी या उसकी मुस्कान या उसका व्यवहार आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको इम्प्रेस करते हैं उनकी में कोई ख़ास बात। तो शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सच भी है। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है, उसके व्यवहार से होती है। अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार और दूसरों के लिए सम्मान, यही वो बातें हैं जो हमें हमेशा यादगार बना देती है और इसी वजह से हमें दूसरे लोग अच्छे लगते हैं। और बहुत से मैसेजेस भी हैं, बातें तो हम बहुत सारी कर लेंगे, तो अगले मैसेज भी ले लेते हैं। ये जो संदेश हमें आया है, ये हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छेपा, कपिल छेपा, ईशान छेपा और पूजा परिहार का। ये लिख रहे हैं, आखिर कितना इंतज़ार करें और कितने मैसेज भरने पड़ेंगे। मैंने इनका मैसेज आज दूसरी बार इसलिए लिया क्योंकि ये हमेशा इस तरह की शिकायत करते हैं। तो दोस्त, आप पूरा प्रोग्राम सुनिए, आपका नाम भी लिया गया था और मैसेजेस की पूरी कोशिश होती है कि हम पूरे ले लें, पर कभी कभी छूट भी सकता है। तो चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया स्टेशन रोड जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया जी का। और ये हमें संदेश आया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी का। और अगला संदेश हमें आया है रघुवीर नगर दिल्ली से, दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नयाब और लड्डू जी का। और लिख रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो शिकायत लिख रहे हैं आप उन्हीं के मेल शामिल कर रहे हैं। तो दोस्त, ऐसी बात नहीं है, हम सभी के मेल शामिल करने की कोशिश करते हैं। और अगला जो संदेश वो हमें आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का। तो दोस्त, अब वक्त हो रहा है कि हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, विदा लें। और बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का सम्मान कीजिएगा, मुस्कुराते रहिए और अपने अच्छे व्यवहार से हर दिल में अपनी जगह बनाते रहिए, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। चलिए, मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा यह प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करने का। नमस्कार, और आपसे बिल्कुल फिर मिलेंगे कभी, तो जाइएगा फिर भी कहीं नहीं, क्योंकि एक प्यारा संगीत है ना आपके इंतज़ार में है। तो सुनते हैं ये प्यारा संगीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा के समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में देश में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा आज से उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देश विदेश के लोगों को बधाई दी है। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। नए स्वरूप में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीज़ें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी श्रेणी की सीट उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, टिकट बुक करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी लेगी जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15

अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

0: night. Now Argentina will play against Spain in the final on Sunday night. And that is the end of this news bulletin.
1: This is Akashvani. We now take you over to the Mahaprabhu Jagannath Jetham, Pavan Chitra Puri in Odisha, for the live broadcast of the celebration of Rath Yatra. Our commentators are Sri Mohan Lal Majitia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English.
2: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी लिए चलते हैं, जहाँ से आप वहाँ आयोजित हो रही रथ यात्रा का आंखों देखाल सुने के विवरण दे रहे हैं श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में। आइए श्री जगन्नाथ धाम पुरी चले।
3: जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम से रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में प्रोफेसर रजनीकांत नायक यहां उपस्थित हैं। मंदिर प्रशासन की जो कार्यालय है उसके छत पर हमें इस बूथ में हम बैठे हैं और हमारे बिल्कुल सामने तीन सुसज्जित रथों पर ठाकुरों के हम दर्शन करेंगे और सामने मेरे श्री मंदिर है। श्री मंदिर की शिखर पर नील चक्र है, नील चक्र से बंधा हुआ पतिता पावन ध्वज है और ये समूचा दृश्य बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनभावन लग रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, श्रोताओं को, हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को, अभी तक जो मंदिर की अंदर की जो नीतियाँ थी भगवान के पूजा की, उन्हें सुबह जगाकर, उन्हें रात के वस्त्र को उतारकर नए वस्त्रों से सजाकर उनकी जो दिनचर्या होती है वो सारी नीतियां समापन होने के बाद धीरे धीरे एक के बाद एक रथों पर उन्हें लाया जा रहा है। सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन महाराज उन्हें रथों पर लाया जाता है। जैसे कोई बहुत ही गणमान्य व्यक्ति किसी स्थान पर यात्रा करते हैं तो सबसे पहले उनके सुरक्षा अधिकारी वहां जाकर सुरक्षा व्यवस्था की जो निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं और संतुष्ट होने के बाद वो खबर भेजते हैं कि हाँ यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। उसके बाद वो गणमान्य व्यक्ति वहां पधारते हैं। ठीक उसी प्रकार सुदर्शन महाराज महाप्रभु श्री जगन्नाथ के सुरक्षा अधिकारी हैं। सबसे पहले उन्हें सेवक लोग अपने दोनों हाथों से उचक कर आगे पीछे झूला झुलाते हुए लाते हैं और तीन रथों में बीच का जो रथ है देवी सुभद्रा जी का रथ, जिसे देवदलन या दर्पदलन कहा जाता है, काले और लाल वस्त्र से आच्छादित बहुत ही सुंदर कारुकार्य है, बहुत ही सुदृश्य है, उस रथ पर उन्हें विराजमान किया जाता है सुदर्शन महाराज को। उसके बाद आते हैं बड़े भाई दाऊ जी, बलभद्र जी। बलभद्र जी उनके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ को पकड़कर पीछे रेशम की डोरी से बांधकर सेवक लोग उन्हें झुलाते झुला झुलाते रथ पर विराजमान करवाते हैं। ये दोनों अभी उपस्थित हो चुके हैं। ये जो प्रक्रिया है श्री मंदिर के भीतर से ठाकुरों को बाहर बड़दांड पर लाना और रथों पर विराजमान कराना, इस प्रक्रिया को यहाँ की जो श्री मंदिर की जो भाषा है उसे पहंडी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो पहंडी शब्द जो है वो संस्कृत के पदहुंडन शब्द से आया है। पदहुंडन मतलब एक एक कदम। तो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री जगन्नाथ को, श्री बलभद्र जी को, माता सुभद्रा को उस पहंडी प्रक्रिया में लाना जाता है। देवी सुभद्रा उनके हाथ पांव नहीं है तो उन्हें सेवक लोग अपने कंधों पर उचक कर लाते हैं, जिसे शून्य पहंडी कहा जाता है। वो सेवकों के कंधे पर सोते हुए आसमान की तरफ अपना मुंह करके

0: लाया जाता है और बीच वाले रथ में उन्हें विराजमान करवाया जाता है। पहले सुदर्शन महाराज, फिर बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुके हैं। बलभद्र जी का रथ जो है वो लाल और हरे रंग के वस्त्र से आच्छादित है, उसका नाम है तालध्वज। और अब सभी बहुत ही आतुर होकर देख रहे हैं कब अपने इष्ट देव जगत के नाथ, कल्याणकारी भगवान श्री जगन्नाथ पधारेंगे। जैसी कि हमें सूचना मिली है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की पहंडी शुरू हो चुकी है। घंट ध्वनि, शंख ध्वनि, हरि बोल, जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ सभी भक्त जो श्रद्धालु यहाँ लाखों की संख्या में उपस्थित हुए हैं, धुआंधार बारिश को नज़रअंदाज करके सभी अपने भगवान के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं इस बड़दांड में। ये बहुत ही रोचक दृश्य है। भगवान श्री जगन्नाथ जी आएंगे, रत्न सिंहासन को त्याग कर रथ पर बने काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होंगे। दोनों हाथ फैलाए अपने जो भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को वो आलिंगन करने के लिए आतुर होंगे और भक्त एक नज़र उन्हें देखने के लिए तरसता होगा। ये बहुत ही अद्भुत जो समारोह है रथ यात्रा का। ऐसी स्थिति में मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ही पुरानी कहावत है, दोले तू दोलो गोविंद रथेचु, दोले चू दोलो गोविंद चापे तू सुधा ना रथे तू वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न लभ्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात दोड़ पूर्णिमा में, दोड़ पूर्णिमा जो होली का समय है, तब भगवान को दोड़ वेदी पर, दोड़ मंडप पर, स्नान पूर्णिमा में स्नान मंडप पर, और जो नौका विहार करते हैं वहाँ भगवान जगन्नाथ जी को, रथ पर वामन रूपी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने पर मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति पा लेता है, उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं हमारे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से अनुरोध करूंगा, अंग्रेजी में वो अपना वक्तव्य रखेंगे। जय जगन्नाथ।
1: थैंक यू मजीथिया जी। माय ब्रदर कमेंटेटर, आई एम रजनीकांत नायक, अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड हम्बल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हू जगन्नाथ और जगतर नाथ जगन्नाथ, मीनिंग ही इज द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स एंड द एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड। I am wishing you, brothers and sisters of mine, a benign good morning. Even the fact is, the climatic conditions here in Puri this morning has been rather sodden because it has been raining almost intermittently since last evening. But despite that, the interest or the enthusiasm of the thousands and the lakhs and millions of devotees who have assembled here in the grand avenue of Puri, literally from all over the world, and I don't know what is the exact count of the devotees, but every year it is customary for us by now to expect around 10 to 15 crores sorry 10 to 15 lakhs of devotees who come, as I said, from all over India and also from foreign countries, because Lord Jagannatha is a very popular Lord. In fact, he is the Lord of the Lords and he is the primary deity who literally rules the Sanctum Sanctorum in Puri, which is called Sri Khetra or Sankha Khetra, and he stays there, which is his earthly abode. Previously he used to stay in his father-in-law's place, that happens to be in the ocean, because he has married Goddess Lakshmi, who happens to be the daughter of the king of the ocean, or Varuna, God Varuna for that matter. In fact, Devi Lakshmi, it is said, was not very happy that her husband should be living with her in her father's place. That is why it was considered imperative that

0: Jitia ji to continue with the commentary with Hindi.
1: धन्यवाद प्रोफेसर नायक. वर्ष भर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी श्री मंदिर के भीतर रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं और भक्तों को अपने इष्ट देव के दर्शन हेतु मंदिर के भीतर जाना होता है. बस यही एक ऐसा दिन है जब भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं. इसीलिए रथ यात्रा में शामिल होने की इच्छा लेकर देश के कोने कोने से तथा विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी आ पहुंचते हैं. वैसे तो भारत के कई छोटे बड़े शहरों में श्री जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित मंदिर हैं और उन शहरों में रथ यात्रा का आयोजन भी होता है, परंतु चार धामों में श्रेष्ठ ये श्री क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि पुरी शहर, यहाँ की जो रथ यात्रा है ये देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को खींच लाता है अपनी ओर. कोई भी भक्त एक ऐसा अवसर खोना नहीं चाहता जहाँ उसे अपने इष्ट देव के अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन उसके सामने बड़दांड पर मिल जाएं. बड़दांड यानी कि श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक का करीब 3 मील का सीधा रास्ता, जिस रास्ते तीनों रथ यहां से खींचे जाएंगे एक के बाद एक. सबसे पहले बलभद्र जी का रथ खींचा जाएगा, फिर देवी सुभद्रा जी का, और उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी बड़े आराम से बड़े भाई को और बहन को आगे भेजकर फिर बाद में अंत में वो आएंगे. वो अपने मन के मालिक हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं. जब रथ खींचे जाएंगे तब करीब करीब 3 बजे 3:30 बजे का समय जो है उस समय खींचे जाएंगे. अभी हम देख रहे हैं जो भक्त हैं वो इंतज़ार में हैं, क्योंकि बड़े भाई दाऊ जी महाराज वो अपने तालध्वज रथ पर विराजमान हो चुके हैं. माता सुभद्रा देवदलन रथ पर विराजमान हो चुकी हैं और उनके रथ में सुरक्षा अधिकारी के रूप में चक्रराज सुदर्शन भी मौजूद हैं. इंतज़ार है तो बस जगत के नाथ जगन्नाथ जी का. किसी को चकानयन के दर्शन की इच्छा होती है तो किसी को रथ खींचने की लालसा, और अगर रथ खींच न सके तो रथ की पवित्र रस्सी को छू भर लेने से जो आत्मसंतोष मिलता है उसी से ही भक्त प्रसन्न हो जाता है. भक्त और भगवान के मिलन का ये दृश्य अद्भुत है, अलौकिक है. महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने बैठे तो शब्द कम पड़ जाते हैं. बड़े बड़े चक्राकार नयन जिसकी पलक नहीं पड़ती, प्रभु जी के ऐसे रूप को देखकर भक्त के हृदय में श्रद्धा और भक्ति का लहर उठने लगते हैं. गोस्वामी तुलसीदास जी का एक छंद याद आ रहा है. बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बीनू बानी बकता बड़ जोगी. अर्थात निराकार ईश्वर बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के ही कई प्रकार के कार्य करते हैं, बिना मुख के जगत के सारे रसों का आनंद लेते हैं और बिना वाणी के सर्वश्रेष्ठ वक्ता कहलाए जाते हैं. ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का यहाँ आना स्वाभाविक बात है. जैसा कि मैंने पहले कहा, स्कंद पुराण में वर्णित है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते. रथ पर वामन रूपी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को अगर एक बार श्रद्धालु दर्शन कर लेता है तो उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता. वो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. इस बीच में देख रहा हूँ बारिश की बूंदें अभी भी जारी हैं, फिर भी श्रद्धालुओं की भक्ति में, उनकी श्रद्धा में, उनके विश्वास में, उनके उल्लास में कोई कमी नहीं है. वो आतुर नयन से इस बड़दांड पर आंखें गाड़े बैठे हैं. हमारे महाप्रभु आएंगे और अपने रथ पर विराजमान होंगे, फिर हमें अपने बाहें फैलाए वो हमारा स्वागत करेंगे, हमसे मुलाकात करेंगे, हमें बुलाएंगे कि आओ.

0: It was Lord Sri Krishna, while in the Kali, it is Lord Jagannatha. So as I was telling you, my dear sisters and brothers, the occasion turns unbelievably poetic. For everyone here does strongly believe that to every desperate call from the below, through the parched lands, the mute hills and dales, for mercy, suffering as everyone does from a torturous summer sun, the benign skies seem to open up on this pious day when the Asada clouds rumble and masses of heavy clouds come tossing and tumbling, pouring down divine benediction, as it were, in torrents of rain. In fact, we have been having sufficient rain since last evening, as I told you, and Lord Jagannatha comes cascading from his Niladri or the Blue Mountain to the lowliest of the lowly among us, because he is supposed to be in his Patita Pavana avatar. Patita Pavana means he is a savior of the lowliest of the lowly, savior of the fallen. And he proves once for all that God is not exclusive or remote, but he is accessible to human prayers, to the riches of man. In fact, that Godhead being accessible to humans is also the subject of matter of great classics like Prologue of Chaucer, the Iliad of Homer, the Odyssey of Homer, or even our very own Ramayana and Mahabharata. With this, I pass on the mic to my fellow commentator, Majithia ji, to continue the commentary in Hindi. Majithia ji.
1: धन्यवाद प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी. जैसा कि मैंने अभी श्रोताओं को बताया कि पौंडी प्रक्रिया से बड़े भाई बलभद्र, देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुकी हैं और सभी को इंतज़ार है जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी का. और ऐसा लग रहा है मंदिर के भीतर कुछ हलचल हो रही है. कदाचित जगन्नाथ जी रत्न सिंहासन से नीचे उतर आए हैं. मेरे सामने रथों के आगे कई तरह के भक्त अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो यहां से मैं देख पा रहा हूं. कुछ नृत्यांगनाएं ओडिशा की पारंपरिक नृत्य कला ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन कर रही हैं. यही ओडिसी नृत्य वो जगन्नाथ जी को समर्पित करती हैं. कोई हनुमान जी का वेश धारण कर, कोई शिव जी का वेश धारण कर भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है. ये एक रस्सी से बना चक्र घुमा रहे हैं, जिसे बनाटी कहा जाता है. यहाँ की ये पारंपरिक कला है जिसको यहाँ ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं. इस प्रकार जो जिस भी कला में माहिर है वो अपनी अपनी कला को भगवान की सेवा में अर्पित कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं. अभी तक जगन्नाथ जी के श्री मंदिर से बाहर आने की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि जो हमें लग रहा है, भक्तों में जो उत्साह लग रहा है, जय जगन्नाथ की जो गूंज हमें सुनाई दे रही है, उससे लग रहा है कि कुछ ही देर में भगवान श्री जगन्नाथ यहाँ पधारेंगे. इतने में मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को और देवी सुभद्रा जी को सर पर एक सुंदर सा मुकुटनुमा टाहिया पहनाया जाता है. यहाँ की स्थानीय भाषा में उसे टाहिया कहते हैं. टाहिया एक बहुत ही सुंदर मुकुट है, बहुत ही पवित्र और पारंपरिक आभूषण होता है, जिसे रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों पर ठाकुरों को पहनाया जाता है. मुख्य रूप से टाहिया सोल से बना होता है. सोल यानी एक प्रकार की प्राकृतिक घास जो बहुत ही हल्की और स्पंज जैसी मुलायम होती है. इसे छीलकर अंदर का सफ़ेद और चमकदार गुदा निकाला जाता है और उस गुदे से सुंदर कलाकृतियां बनती हैं, जैसे कि सोल से बनी कमल की पंखुड़ियां, मोर के पंख के आकार की नक्काशी और सोल से ही बने कदम्ब के फूल टाहिया को बहुत ही आकर्षक बनाते हैं. ये इतनी नाजुक और बारीक कारीगरी होती है मक्की से बनाने

0: Ardhasini or Ardhashoshini, because he is supposed to have sucked half of the water of the sea deluge when the Sri Khetra was in deluge in hoary past. Then there is Chandra Rupa, Sarvamangala and Bimala. Bimala happens to be the Khetraswari. Some say that it is Devi Subhadra who is also Khetra Rakshika. And of course at the center of this Khetra lie Lord Jagannatha, Lord Balabhadra and Devi Subhadra. And of course their divine caretaker Lord Sudarsana, who as I told you is Chakra Raja and who is said to be doing the role of Lord Shatrughna, one of the brothers of Sri Rama in the Treta Yuga. And there are a lot of speciality that Jagannath Jatra of Lord enjoys. And the Lord, let me reiterate here, who is inaccessible to many around the world. In fact, that is why there has been an unfortunate incident this year. The ISKCON enthusiasts, they have been blaming our own Gajapati Raja and Lord Jagannatha to be guilty of not allowing them to come near the temple. But I won't say that they are doing the right thing, because our Lord happens to be Patita Pavana, who literally descends from the Ratna Bedi to give a darshan to his millions of devotees who seem to be coming to get instant moksha by having just a look at him, or by pulling his ropes, pulling the ropes of the cars, or even, you know, literally competing with themselves. As the Pahundi Vijay continues, we watch them literally tearing apart. In a mob frenzy, they seem to be doing it. They tear apart the tahiya, as my fellow commentator was telling, which is a very beautiful tiara around the heads of the lords, and the tahiya is literally torn to pieces. Such beautiful, you know, relationship between the bhakta and the Bhagavan. You know, it is perhaps Puri alone which shows this in such a beautiful way. Majithia ji, please continue.
1: Abhi bhi hum intezar kar rahe hain Bhagwan Sri Jagannath ji ke aane ka. वो अभी भी मंदिर के भीतर से हैं और बाहर अभी तक वो आए नहीं हैं. इस बीच मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा, मेरे सामने जो भव्य श्री मंदिर है उसके शिखर पर नीलचक्र है. नीलचक्र अष्ट धातु से निर्मित है और ये नीलचक्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रतीकात्मक रूप मात्र है. उस नीलचक्र की ऊँचाई लगभग 11 फीट 8 इंच की है और गोलाई 7 फीट 6 इंच की, जबकि वजन लगभग 1500 किलो तक. मंदिर की चूड़ा या शिखर पर नील चक्र के साथ ध्वजा बंधी होती है, या बाना, यहाँ की भाषा में उसे बाना कहते हैं, जिसे पतित पावन बाना कहा जाता है. जो श्रीमंदिर तक आ नहीं पाते वो दूर से ही श्रीमंदिर के शिखर पर बंधे इस पतित पावन बाना को देखकर धन्य हो जाता है. उसे ऐसा लगता है कि मैंने स्वयं अपने इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया है. तो पतित पावन बाना यानी कि पतितों के उद्धार के लिए ये भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है. ये गाढ़े लाल या पीले रंग का होता है. इसका आकार त्रिकोणाकार होता है और इसके बीच श्वेत रंग से चंद्र और बिंदु उसमें बनाए जाते हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है दूर से देखने पर. मंदिर के शिखर पर से नील चक्र पर बंधा हुआ ये पतिता पावन ध्वज बहुत ही आकर्षण होता है. इसका प्रतिदिन संध्या समय पुराने ध्वज को

0: नीचे उतारा जाता है और नया ध्वज बांधा जाता है। इस कार्य के लिए विशेष सेवक होते हैं जिन्हें गरुड़ सेवक कहा जाता है। ये गरुड़ सेवक यानी कि उनके इष्ट देव गरुड़ होते हैं। ये गरुड़ सेवक प्रतिदिन संध्या में नए ध्वज लेकर मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं, पुराने ध्वज को उतार कर नया ध्वज बांधते हैं और जब मंदिर से शिखर से नीचे उतरते हैं तो मंदिर की ओर पीठ करके नीचे उतरते हैं। ये परंपरा रही है, विशेष परंपरा नील चक्र पर बाना बांधने की और बांधकर उतरने की, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। 12वीं सदी में बना ये भगवान का मंदिर बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है। देश भर से, विदेशों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें परंपरा अनुसार मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है, इसीलिए शायद रथ यात्रा का ये अवसर है। भगवान पहले मानवीय लीला के अंतर्गत बीमार होते हैं और 15 दिनों तक वो दर्शन नहीं देते हैं अपने भक्तों को, फिर स्वस्थ होकर जड़ी बूटी और विशेष प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि से उनकी चिकित्सा होती है, फिर भगवान स्वस्थ होकर नव यौवन का भेष लेते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ पर विराजमान होकर श्री गुंडीचा की ओर प्रस्थान करते हैं। ये है श्री मंदिर की जो सामान्य परंपरा। प्रतिवर्ष जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं पाते हैं उनके लिए ऐसा एक अलौकिक ये अवसर होता है जब वो अपने भगवान को अपने सामने देख पाते हैं। ऐसे कई किंवदंती हैं, दंत कथाएं हैं जो भगवान और भक्त के बीच मधुर संपर्क को, मधुर संबंध को दर्शाता है। जैसे कि एक किस्सा मुझे याद आ रहा है भक्त सालबेग का। भक्त सालबेग जिसकी समाधि इसी बड़दांड में श्री मंदिर से गुंडीचा जाते समय बीच में आती है। भक्त सालबेग वैसे यवन थे, वो हिंदू नहीं थे, लेकिन उड़ीसा के हर प्रत्येक घर में आज भी उनके रचित उड़िया भजन गाए जाते हैं बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा भाव से। जैसा कि एक भजन है, आहे नीळ शैळ प्रबळ मत्त बारण मुआरत नळिनी बनकु कर दळन। एक कवि ने हिंदी में इसका अलग भावांतर किया, ऊपर नीला अंबर है नीचे सागर नीला, नील शैल के नील माधव अनोखी तेरी लीला, अनोखी तेरी लीला। इस समय अभी भी हम देख रहे हैं श्रद्धालु आतुर होकर श्री मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार की ओर देख रहे हैं, कब मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री जगन्नाथ आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, उनके चक्राकार नयन देखकर मैं अपने आप को धन्य हो जाऊंगा और मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, वरना फिर अगले वर्ष मुझे दोबारा आना पड़ेगा। अगर मैं दर्शन नहीं कर पाया, अगर मैं रथ की रस्सी को छू नहीं पाया, अगर रथ को खींच नहीं पाया तो मेरा जन्म व्यर्थ जाएगा। इसलिए ये श्रद्धालु अभी भी आतुर होकर जय जगन्नाथ हरि बोल की गूंज कर रहे हैं और हर किसी के दिल में, हर किसी के हृदय में एक अद्भुत तरंग उन्माद है। सभी बड़े आतुर होकर सिंहद्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, देख रहे हैं भगवान अभी तक नहीं आए। वो अभी बड़े अभी भी वो बुला रहे हैं कि भक्त तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अब आओ हमें दर्शन दो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो और अभी तक हम इंतज़ार में हैं। आप सभी भी इंतज़ार में रहिए। अभी तक की जो यहाँ हमारे समक्ष जो घटा इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। अब दूसरे चरण में दोपहर 3:10 में मैं फिर से आप लोगों को आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। फिलहाल मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक और मैं मोहन मजीठिया आपसे विदाय लेते हैं और आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र को ले जाते हैं। चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा का आंखों देखा सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में।

सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

0: प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: हर आमदन।
1: लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। तो स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कल्पना का प्यार भरा नमस्कार और जुड़े रहिए हमारे साथ एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज पर भी। और दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम पूछने वाले हैं आपसे एक प्रश्न। तो आज का प्रश्न आपके लिए यह है कि आपने अपने हाथों से कोई पौधा कब लगाया था और वो पौधा कौन सा था। तो आपके जो जवाब है उनकी हमें प्रतीक्षा है। आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर अपने उत्तर, और हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, वो है fmgoldga@gmail.com। तो यहाँ पर आप अपने उत्तर भेज दीजिए और तब तक सुनिए आप ये मीठा मीठा सा गीत प्यार किए जा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

दोस्तों, आप पुकारते हो और हम घरांगन कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो जाते हैं। और आज मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आपको देना है। आज का प्रश्न मैं दोबारा से बता देती हूँ कि कौन सा पौधा आपने अपने हाथों से लगाया था और वो किस चीज़ का पौधा था। तो ये आपको लिख भेजना है। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो जल्दी से लिख भेजिए। और आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज निकाली जा रही है। इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा भव्य रथों में विराजमान होकर श्री मंदिर यानी जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक नगर भ्रमण करते हैं। ये रथ यात्रा भगवान के भक्तों के बीच स्वयं आने का प्रतीक है। साथ ही यह उत्सव प्रेम, समानता, सेवा और लोक कल्याण का संदेश देती है। और कहते हैं कि जन सेवा में भी ईश्वर की सेवा होती है। तो आइए हम भी दूसरों की मदद करने का संकल्प लें, यही इस पर्व की सार्थकता होगी। और यदि आप दिल्ली में हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी है, क्योंकि श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर नई दिल्ली में 16 जुलाई से 27 जुलाई तक भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। रथ यात्रा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी और 12 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। तो अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए। और भगवान जगन्नाथ के बहुत सारे स्वरूप हैं और उनका एक स्वरूप है श्याम का। तो आइए हम भी श्याम रंग में रंग जाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत येसुदास की आवाज़ में अपनी पराई फिल्म से।

दोस्तों, और देख रही हूँ कि हमारे बहुत से श्रोता जुड़े हैं और हमें ईमेल भी भेज रहे हैं। उनके ईमेल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी आपको देनी है कि भाई देखो, एक बात है कि हर दिन है खूबसूरत, हर दिन नया फसाना, वाकिफ रहे ज़माना ये हमने मन में ठाना। इसलिए सबसे पहले अपने दोस्तों को बताएंगे कि भाई आज क्या खास है। आज है जयंती भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता अरुणा आसफ अली की। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका तथा ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहा जाता है। उनके जनहित संबंधी कार्यों और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार, पद्म विभूषण तथा मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अरुणा आसफ अली का व्यक्तित्व हमें देशभक्ति, साहस, त्याग और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके लिए ये शेर कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही आज है एक और जयंती हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार जगदीश चंद्र माथुर की। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में आकाशवाणी नाम का आधिकारिक नामकरण इनके द्वारा ही किया गया था। महानिदेशक के पद पर रहते हुए देश की सभी भाषाओं और कला साहित्य की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को उन्होंने मंच दिया और हिंदी भाषा के विकास पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जयंती पर भी हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये गीत आप महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमराज फिल्म से सुन रहे हैं।

और दोस्तों देखिए, बहुत सारे हमारे पास ईमेल आ गए हैं। हमने अपने श्रोताओं से आज प्रश्न पूछा था कि भाई आपने कौन सा पौधा लगाया था और कब लगाया था। तो हमारे बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है ईमेल। तो पहला ईमेल है नवीन भाटिया का। नवीन भाटिया जी हमारे नियमित श्रोता हैं। वो लिखते हैं कि लास्ट 1 मंथ पहले उन्होंने गुलाब का पौधा लगाया था। अरे वाह, आप तो खुशबू बिखेरने का काम कर रहे हैं। और साबिर सिद्दीकी जी लिखते हैं कि मैंने जामुन का पेड़ लगाया था 1993 में, और ये बहुत ही लाभदायक होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन इतना समय पहले लगाया था, अब और भी लगाइए। इतनी योजनाएं हमारी चल रही हैं, एक पेड़ माँ के नाम, देश के नाम, तो और भी आप पेड़ लगाएं, हमारा तो यही कहना है। और चरणदास जी लिखते हैं कि हम खेती करते हैं, पूरा दिन पौधों का एक काम है। अपने पैसे से 8 साल पहले 700 पौधे लगाकर गांव में बांट दिए, तथा घर में खाली डिब्बे में पौधे तैयार करके गांव में दे देते हैं। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ बहुत बड़ी दौलत है। तो हमारा जो FM गोल्ड है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है, और पेड़ तो हमारे लिए दौलत है ही। तो मैं पेड़ लगाता भी हूँ और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करता हूँ। बहुत अच्छी बात है चरणदास जी। और राधा शुक्ला का एक ईमेल है, वो कहती हैं कि बचपन में बड़ी सुंदर सी घास थी, उसे लगाया था और हमारे बड़े भैया ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। फिर हम बहुत गुस्सा हुए कि भैया खुद तो पेड़ लगाते हैं और हमारा उखाड़ के फेंक दिया। तो भाई आपने घास का पेड़ लगाया था ना, कुछ ऐसा यूज़फुल सा लगाती तो वो शायद नहीं फेंकते उखाड़ के। और बहुत टाइम हो गया बचपन के बाद, अब तो अगर आप बड़ी हो गई हैं तो फिर आप और भी वृक्ष लगाइए। तो ऐसे ही सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये भी हमारी नियमित श्रोता हैं, और इन्होंने भी कहा है कि भई उन्हें ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और वो सुन रही हैं और वो ज़रूर पेड़ लगाएंगी। तो ये तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम कार्यक्रम में। और अब आपके लिए एक जानकारी, क्योंकि मनोरंजन ही नहीं जानकारियों का खजाना भी है हमारा घर आंगन कार्यक्रम। तो अब हम समय समय पर अपने श्रोताओं को अनेक उपयोगी योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज जानकारी लेकर आई हूँ दिल्ली लक्ष्मी योजना की। ये योजना दिल्ली सरकार की एक महिला कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें हर महीने 2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ये योजना पहले महिला समृद्धि योजना के नाम से प्रस्तावित थी, जिसे बाद में दिल्ली लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया। योजना के लिए पात्रता मानदंड तय हो चुके हैं, जिनके अनुसार महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच हो और कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली की वो निवासी हो। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक ना हो। एक परिवार से केवल एक महिला को लाभ मिलेगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया संबंधी जानकारी आपको इन सरकारी वेबसाइट पर मिलेगी, दिल्ली सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग की जो वेबसाइट है वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। और इतनी अच्छी जानकारी के बाद आपको सुनवाती हूँ ये प्यारा प्यारा सा गीत, और दूसरा आदमी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

शहर का तब्दील होना, शाद रहना या उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं। आज हर क्षेत्र में खुद को साबित कर चुकी भारतीय महिलाएं वैसे तो स्वयं में संतुष्ट रहती हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें सबको साथ लेकर चलने की आदत होती है और कुछ उम्मीदें भी होती हैं इस समाज से, जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। महिलाएं समाज से किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि समान सुरक्षा और समान अवसर की अपेक्षा रखती हैं। वे चाहती हैं कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का बराबर अवसर मिले, उनके विचारों को सुना जाए, उनकी मेहनत की सराहना हो और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ तो मैं समझती हूँ कि महिलाएं क्या चाहती है। हर महिला का सपना होता है कि वो बिना भय के अपने जीवन के निर्णय ले सके, अपने परिवार और समाज के विकास में बराबरी से योगदान दे सके और उसकी पहचान केवल रिश्तों से नहीं बल्कि उसकी योग्यता और व्यक्तित्व से भी हो। और इसी पर ये सटीक पंक्तियाँ याद आती हैं कि देवी नहीं मानो मुझे, नहीं भगवान मानो, नारी हूँ नारी का मान होना चाहिए, काहे थाम लेते बागडोर अपने हाथ में तुम, मेरा भी तो अपना स्वाभिमान होना चाहिए। अब जब समाज महिलाओं को सम्मान, विश्वास और अवसर देता है तो केवल एक महिला ही नहीं बल्कि पूरा परिवार और राष्ट्र आगे बढ़ता है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहाँ हर बेटी, बहन, माँ और महिला सुरक्षित, सम्मानित और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सके। तो सहयोगी बनिए, साथ दीजिए, तारीफ कीजिए।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप जो सुन रहे थे, ये सुन रहे थे अभिमान फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। और इससे पहले आपको जो गीत सुनवाया था मैंने, आँखों में काजल है, ये दूसरा आदमी फिल्म से, इसे भी लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब ने गाया था। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ते हैं अपने श्रोताओं के ईमेल। हमने श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा था कि भई आपने कौन सा पौधा लगाया था और कब लगाया था अपने हाथों से, हमें लिखकर भेज दीजिए। तो भास्विता का मैसेज आया है हमारे पास, वो लिखती हैं, ईमेल आया है इनका कि मेरी याद में पहला पेड़ मैंने शादी के बाद नाशपाती का लगाया था, जिसमें अब मीठे फल आते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मिठास बांट रही हैं। गौरी शंकर जी लिखते हैं, कल्पना बेटा राम राम, राम राम आपको। पौधों का शौक तो बचपन से ही रहा है, बाहर तो नहीं घर में ज़रूर लगाते हैं, जैसे तुलसी है, ग्वार पाठा है, गुलाब है, गेंदा है, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि घर में भी पौधे लगाने चाहिए। बहुत लोग पार्क में लगाते हैं, लेकिन अपने घर में भी इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। भूमिका लिखती है, मैंने तो अपनी शादी के बाद तुलसी का पौधा लगाया है बस। मेरे पापा को पेड़ लगाने का बहुत शौक है, वो बहुत तरह के पौधे लगाए भी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पौधे हम सबको लगाने चाहिए, क्योंकि भाई पौधे हमारा जीवन है, हमारी जो प्राणवायु है हमें वहीं से प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छे अच्छे ईमेल्स के लिए आपका धन्यवाद, और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिलाओं की। हम महिलाएं कुछ भी बेकार नहीं जाने देती, कभी चावल बच गए तो फटाफट मौसमी सब्जियां मिलाकर फ्राइड राइस तैयार कर देती हैं, और कभी रोटी बची

सब्जियां भरकर स्वादिष्ट रोल बना देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बची हुई या पुरानी चूड़ियां मिल जाएं तो महिलाएं क्या करती हैं? मुझे पता है सब श्रोता जानना चाहते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। पहला उपाय वो है वॉल हैंगिंग। चूड़ियों को रंगीन धागों, मोतियों और घंटियों से सजाकर आकर्षक दीवार सजावट तैयार की जा सकती है, या फिर चूड़ियों पर धागा लपेटकर पंख और मोती लगाकर सुंदर ड्रीम कैचर तैयार करें। इसके अलावा कैंडल होल्डर भी बनता है और चूड़ियों को एक के ऊपर एक चिपकाकर आकर्षक मोमबत्ती स्टैंड भी बनाया जा सकता है। पुराने फोटो फ्रेम पर चूड़ियाँ और छोटे मोती चिपकाकर नया लुक दे सकती हैं। घर में कोई पूजा या उत्सव हो तो चूड़ियों को रंगीन धागों और फूलों के साथ जोड़कर दरवाजे पर बंधनवार की तरह सजाया जा सकता है। साथ ही जो पौधों के गमले हैं ना घर पे, जैसे हम पौधे लगाते हैं, हम पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने पौधे लगाए हैं तो उनको इस तरह से आप डेकोरेट कर सकती हैं कि भाई उन पौधों के गमलों पर चूड़ियाँ चिपकाकर उन्हें नया और सुंदर रूप दिया जा सकता है। इसके साथ ही त्योहारों की जो सजावट की बात आती है, तो जैसे दीपावली हो गया, तीज, करवा चौथ या रक्षाबंधन जैसे जो अवसर होते हैं ना, इन पे कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, कुछ अलग तरह की सजावट करना चाहती हैं, तो चूड़ियों से आकर्षक सजावटी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। याद रखिए, पुरानी चीज़ें बिल्कुल बेकार नहीं होती, बस उन्हें नए नज़रिए और थोड़ी सी रचनात्मकता की ज़रूरत होती है। और बात चूड़ियों की हो रही है तो आपको सुनाती हूँ ये प्यारा सा शेर कि हाथ मलवाती हैं हूरों को तुम्हारी चूड़ियाँ, प्यारी प्यारी है कलाई प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। हरे कांच की चूड़िया फिल्म से अब आपको एक मीठा सा गीत भी सुनवा देती हूँ इसी बात पे, जिसे गाया है आशा जी ने, यानी कि आशा भोंसले ने।

यूं लगता है सारी दुनिया बंद है मेरी मुट्ठी में, जिस पल मेरी उंगली थामे मेरा बेटा चलता है। और ये हर माँ का दायित्व भी होता है दोस्तों, जीवन के हर वय में यानी कि हर उम्र में बेटों को सही गलत बताएं। देखिए, बेटियों की बात तो बहुत होती रहती है, लेकिन आज बेटों के लिए भी कुछ बेहद ज़रूरी सीखें हैं मेरे पिटारे में, जो उन्हें सिर्फ एक माँ समझा सकती है। पहली बात ये कि हर स्त्री का सम्मान करना।

चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी, मित्र या कोई अनजान महिला हो, सबसे भला और उचित व्यवहार करना। उनसे बात करते समय अपनी शब्दावली बेहद सोच समझ कर चुनना। गलती अगर हो जाए तो माफ़ी मांग लेना। इसके अलावा बेटों को ये भी बताएं कि कभी भी बिना खटखटाए किसी महिला, भले वो मित्र ही क्यों ना हो, उसके कमरे में नहीं जाना है। उसके पर्स बिना अनुमति नहीं खोलें, अलमारियाँ और दराजों में भी ना झांकें। कुछ ज़रूरत हो तो स्पष्ट बोलकर मांग लें। याद रखें, सही व्यवहार और बातचीत से हर महिला आपके साथ सहज महसूस करती है और आपसे कोई भी बात बताने में नहीं हिचकती। इसके अलावा माएँ अपने बेटों को घर के काम करना भी सिखाएं, खाना बनाना, सफाई करना और अन्य जिम्मेदारियां निभाना। ज़रूरत पड़ने पर अपने घर की या बाहर की महिला की जो है वो हेल्प कर सके उनके कामों में, ताकि आपका जो बेटा है, अगर आप घर के काम सिखाएंगे तो वो बड़ा होकर एक अच्छा जीवन साथी बनेगा और अच्छी तरह से साथ दे पाएगा। साथ ही अपने बेटों को अपनी भावनाएं व्यक्त करना भी सिखाएं। हम कहते हैं ना कि बच्चे रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें सिखाएं कि भाई रोना, दुख या डर बताना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये मनुष्य होने के आवश्यक गुण हैं और उन्हें व्यक्त किया जाना चाहिए। उन्हें हर मानवीय भाव के साथ तालमेल बिठाना सिखाएं। इसके साथ ही उन्हें समय की कीमत भी सिखाएं, रुपयों का उचित उपयोग भी सिखाएं, सच्चरित्रता सिखाएं, कृतज्ञता, स्वावलंबन और सहयोगी बने रहना भी सिखाएं। याद रखें कि एक माँ अपने बेटे को केवल चलना नहीं सिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन की राह पर सिर ऊंचा रखकर दूसरों का सम्मान करते हुए और अच्छे इंसान बनकर कैसे चलना है, क्योंकि हर बच्चे के व्यवहार में उसकी माँ परोक्ष रूप से शामिल होती है। माँ ही वो कलम होती है जो बच्चे के कोरे कागज जैसे मन पर अच्छी अच्छी बातें लिखती है। और इसी बात पर आपके लिए प्यारा सा गीत आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: आप घूमने के शौकीन हैं तो दिल्ली में भी घूमने का एक बहुत अच्छा अवसर है। आप जा सकते हैं राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय दिल्ली में। यूँ तो हमेशा एक पारंपरिक हस्तशिल्प का बाज़ार वहाँ पे लगा रहता है, लेकिन 10 जुलाई से 19 जुलाई तक इस बार एक खास बाज़ार लगा हुआ है जिसका नाम है इंडी हाट। ये ऐसा हस्तशिल्प बाज़ार है जहाँ देश भर के स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित उत्पाद, पारंपरिक कलाकृतियाँ, टिकाऊ वस्तुएँ और अनूठी रचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये स्थान भारतीय संस्कृति, रचनात्मकता और शिल्प कला का सुंदर संगम है जहां आगंतुकों को खरीदारी के साथ साथ सांस्कृतिक अनुभव भी प्राप्त होते हैं। तो यदि आप मन बना रहे हैं यहां जाने का तो जानकारी नोट कर लीजिए कि ये बाज़ार 10 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक लगा रहेगा, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। स्थान है राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी और भैरव मार्ग प्रगति मैदान नई दिल्ली। प्रवेश जो है वो निशुल्क है। यहाँ देश भर के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, पारंपरिक कलाकृतियाँ, लाइव क्राफ्ट डेमो, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको लोक नृत्य और लोक धुन पर आधारित गीत भी देखने सुनने को मिल जाएंगे। और आइए फिर, जब लोक गीतों की बात हो रही है तो आपको एक लोक धुन वाला ये प्यारा सा गीत सुना देती हूँ अपना देश फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।
1: कजरा लगा के, गजरा सजा के,

और दोस्तों देखिए, हमारे पास एक और ईमेल आ गया है। हमारे श्रोता हैं नवीन कुमार जी, वो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तब दादाजी ने कहा था, बेटा अपने जन्मदिन पर एक पेड़ ज़रूर लगाना। उसी दिन हमने आम का एक छोटा सा पौधा लगाया, रोज़ उसे पानी देते, उसकी देखभाल करते और मन ही मन सोचते कि ये कब बड़ा होगा। और सुदर्शन मुखी जी का भी एक ईमेल आया है, उन्होंने लिखा है कि हमने अपने घर में राम और श्याम तुलसी के पौधे लगाए हैं। आपका दिन और जीवन बहुत मंगलमय हो। आपका दिन भी और आपका जीवन भी बहुत मंगलमय हो।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं एक फूल दो माली फिल्म से, जिसे रफ़ी साहब और आशा भोसले गा रही हैं। उनकी आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे हैं। और आज के घर आंगन कार्यक्रम से मुझे यानी अपने रेडियो सखी को अनुमति दीजिए, कल्पना का स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

0: जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है दिल पर रखकर हाथ ये।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी।

0: एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Defense Minister Rajnath Singh has said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. He emphasized that the government's endeavor is to build an India where borders are secured and connected. Addressing the Border Road Organization Tech Symposium in New Delhi, Mr. Singh highlighted that advanced infrastructure has always been the hallmark of a developed civilization.

श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे वो वर्ष 1997 में बनी भारतीय रोमांटिक संगीतमय फिल्म दिल तो पागल है, जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित और निर्मित किया था। पटकथा लेखन यश चोपड़ा, पमिला चोपड़ा और तनुजा चंद्र का है। इस फिल्म की कहानी, नृत्य और इसके सदाबहार संगीत ने इसे भारतीय सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दी। फिल्म में शाहरुख खान यानी राहुल, माधुरी दीक्षित यानी पूजा, करिश्मा कपूर यानी निशा मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही अक्षय कुमार यानी अजय कैमियो करते नजर आए हैं। तो चलिए, बातें तो और भी होंगी, फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, 1997 में रिलीज हुई फिल्म दिल तो पागल है, इसे राहुल, पूजा और निशा के बीच लव ट्रायंगल को खूबसूरती और शानदार गानों के साथ दिखाया गया है। फिल्म का कुल बजट 9 करोड़ था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 71.86 करोड़ की कमाई की और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें निर्देशक, कहानी, पटकथा, संगीत, छायांकन और अभिनय को खूब सराहा गया। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते। फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को मिला, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार यश चोपड़ा को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार माधुरी दीक्षित को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार करिश्मा कपूर को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार उत्तम सिंह को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार आदित्य चोपड़ा को प्राप्त हुए। साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करिश्मा कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के लिए और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन श्यामक डावर को प्राप्त हुए।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, फिल्म दिल तो पागल है में कुल 10 गीत हैं। संगीतकार उत्तम सिंह उस वक्त तक कई वर्षों से सक्रिय थे, लेकिन सफलता उन्हें इस फिल्म से मिली।

उन्होंने लगभग 100 धुनें तैयार की थीं, जिनमें 9 धुनों को चुना गया। बोल आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। जारी होने पर गीत बहुत लोकप्रिय हुए और ये साल 1997 की सर्वाधिक बिकने वाली एल्बम रही। फिल्म की सफलता के लिए इसके संगीत को प्रचुर श्रेय दिया जाता है। उत्तम सिंह की धुन और आनंद बख्शी के साधारण भाषा में रचे गए बोल का युवाओं से जुड़ना इसकी सफलता के मुख्य कारण रहे।

श्रोताओं, फिल्म दिल तो पागल है में निशा के किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद करिश्मा कपूर नहीं थी। जी हाँ, इनसे पहले जूही चावला, मनीषा कोइराला, उर्मिला और काजोल को रोल ऑफर किए गए थे। इन सब ने उस रोल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनकी ऑपोजिट माधुरी दीक्षित थी, जो ऑलरेडी एक स्टार थी, साथ ही बेहतरीन डांसर भी। तब ये रोल करिश्मा कपूर को ऑफर हुआ, जिन्होंने किरदार को बखूबी निभाया। नतीजा ये निकला कि उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार मिला, साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्र पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

श्रोताओं, फिल्म दिल तो पागल है का गीत ले गई में बतौर बैकग्राउंड डांसर शाहिद कपूर नजर आए थे। उस वक्त शाहिद कपूर इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे। करिश्मा कपूर के साथ डांस स्टेप मैच वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से करिश्मा कपूर को गाना शूट करने के लिए करीब 15 रीटेक लेने पड़े।

दिल तो पागल है एक ऐसी फिल्म रही जिसने ना केवल हमारे दिलों को छुआ बल्कि बॉलीवुड में रोमांस और डांस की परिभाषा ही बदल दी। श्रोताओं, इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट रिया को दीजिए अनुमति।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने विश्व पूर्व सियासी टकराव दरमियान नजदीकी खेत

0: वाराणसी विच सीर गोवर्धनपुर संत रविदास जी का जन्म स्थान है। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरिया नवी रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से वजो दौलतपुर चौक कटौली नवी रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे अते कटौली अंबाला रेल सेवा नूं भी हरी झंडी विखाउणगे जो पंजाब हरियाणा अते हिमाचल प्रदेश विचकार रेल संपर्क नूं महत्वपूर्ण तौर ते मजबूत करेगी। नवी रेल लाइन श्री आनंदपुर साहिब अते मान चिंतपूर्णी मंदिर वर्गे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानां नूं संपर्क प्रदान करेगी जदों कि यात्रियों नूं आवाजाई दा तेज सुरक्षित अते वधेरे भरोसेमंद साधन प्रदान करके दूर दराडे खेतरां तक पहुंच वधाएगी। राज विच सड़की बुनियादी ढांचे नूं होर मजबूत करदे होए प्रधानमंत्री 30 किलोमीटर तों वध लंबे 4 लेन वाले ग्रीन फील्ड दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रेस वे समेत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्टां दा उद्घाटन करनगे अते 25 किलोमीटर तों वध लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड दखनी लुधियाना बाईपास दा नींह पत्थर भी रखनगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ विच सड़की बुनियादी ढांचे तों इलावा PGI अते होर विद्यक संस्थावां विच 4700 करोड़ रुपए तों वध दे सेहत संभाल दे कई प्रोजेक्टां दा उद्घाटन अते नींह पत्थर भी रखनगे। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहला हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगड्डी नूं भी हरी झंडी दिखाउणगे। ए रेलगड्डी जींद अते सोनीपत विचकार चलेगी अते हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनालोजी राही संचालित है जो रेलगड्डी नूं चलाउण लई हाइड्रोजन नूं बिजली विच बदलदी है। ए प्रक्रिया उप उत्पाद के रूप में सिर्फ पानी की भाफ पैदा करती है जिसके नतीजे वजों कार्य दौरान 0 कार्बन निकासी हुंदी है। भारत विच डिजाइन इंजीनियरिंग अते असैम्बल की गई इस रेलगड्डी नूं स्वदेशी तकनालोजी की वरतों करके विकसित किया गया जो कि आधुनिक रेलवे इंजीनियरिंग विच देश दियां वध रहियां समर्थावां नूं दर्शाउंदा है। ए खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो, साडा XHandle @AIRRNJalandhar। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने अज कथित तौर ते दहशतगर्दी लई रकमा जुटाउण अते गैर कानूनी घुसपैठ ते नेटवर्क दे संबंध विच 13 ठिकाणियां ते छापेमारी कीती ए। इह मामला उत्तर प्रदेश दे दहशतगर्दी विरोधी दस्ते वल्लों दर्ज कीती गई FIR नाल संबंधित ए। इस विच इक संगठित गिरोह ते रोहिंजा ते बांग्लादेशी नागरिकां दी भारत विच गैर कानूनी घुसपैठ कराउण, फर्जी भारतीय पछाण पत्र तैयार करन अते देश दे वख-वख हिस्सेयां विच उन्हां दे मुड़ वसेबे विच सहायता करन दे इल्जाम ने जांच विच इक व्यापक माली नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सारे राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं वड्डी उम्र वाले जां गंभीर रूप विच बीमार कैदियां दी समय तों पहला रिहाई लई इक व्यापक नीति तैयार करन ते लागू करन लई कहा है। अदालत ने निर्देश दित्ता है कि देश भर विच अजिहे मामलियां ते विचार करन लई इक सर प्रणाली नूं यकीनी बनाउण वास्ते 3 महीनियां दे अंदर अंदर नीति तैयार करके इस नूं नोटिफाई कीता जावे। सरकार ने ईंधन बालण की बरामद की अपनी 15 दिना समीक्षा विच पेट्रोल डीजल अते हवाबाजी टरबाइन ईंधन की बरामद ते विशेष वादू कस्टम ड्यूटी च बदलाव कीता। सोधियां हुई दरां तहत डीजल बरामद ते टैक्स वधा के 15 रूपये 50 पैसे फी लीटर कर दिता गया जदों कि ATF बरामद ते टैक्स वधा के 14 रूपये 50 पैसे फी लीटर कर दिता गया। पेट्रोल बरामद ते टैक्स घटा के 2.5 रूपये फी लीटर कर दिता गया। सोधियां दरां अज तो लागू हो गई ने। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र ते देवी सुभद्रा दी रथ यात्रा अज ओडिशा दे पुरी विच शुरू हो गई है। खेडां च फीफा फुटबाल विश्व कप दे दूजे सेमीफाइनल विच मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड नूं 2-1 नाल हरा दित्ता है। हुण फाइनल विच ऐतवार नूं अर्जेंटीना दा मुकाबला स्पेन नाल होएगा। 2 बार दे ओलंपिक तमगा जेतू PV सिंधु शानदार कारगुजारी दा विखाला करदिआं जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट दे क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गई है। उन्हां ने विश्व दी 5वें नंबर दी खिडारन चीन दी हान युए नूं सिद्धे सट्टा विच हराया। आखिर च खास खबरां। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने विश्व भू सियासी टकरावां दरमियान नजदीकी खेतरी सहयोग दी जरूरत ते जोर दित्ता है। रक्षा मंत्री दा कहना है कि सरकार सुरक्षित ते सब तों वध जुड़ियां सरहदां वाले भारत दा निर्माण करन लई यतन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच 22,640 करोड़ रूपये दे वख-वख प्रोजेक्ट राष्ट्र नूं समर्पित करनगे तिन्हां दे नींह पत्थर रखणगे। इस दे नाल ही साडा ई बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत ने जोग्राफियाई और सियासी महाजराई के दरमियान सिक्योरिटी और इक्तिसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक पर जोर दिया है।

0: कार्बन का बिल्कुल भी इखराज नहीं होता। भारत में ही डिजाइन करता और तैयार की गई इस रेलगाड़ी में मुल्क की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ी का आगाज रेलवे के शोबे में माहौल के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी की जानिब मुंतकली के सिलसिले में एक अहम संगे मील है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच होंगे जो अब तक तैयार की गई हाइड्रोजन पर मबनी मुसाफिर रेलगाड़ियों में सबसे ज्यादा हैं। इस रेलगाड़ी में 3200 हॉर्स पावर प्रोपल्जन सिस्टम है जो इसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। ये रेलगाड़ी जींद सोनीपत सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से जेर जमीन ईंधन पर मबनी थर्मल पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली बिजली पर इन्हिसार भी कम होगा, जिससे पायदार ट्रांसपोर्ट की जानिब भारत की मुंतकली में मदद फराहम होगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ भारत जर्मनी जापान चीन और अमरीका जैसे उन चुनिंदा ममालिक के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जो माहौल के लिए साजगार रेल खदमात के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल के इम्कान तलाश रहे हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी हुकूमत ने ईंधन की बरामद से मुतालिक टैक्सों के अपने 15 रोजा हालिया जायजे के हिस्से के तौर पर पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में नजरसानी की है। नजरसानी शुदा शरहों के तहत डीजल पर बरामदाती महसूल बढ़ाकर 15.50 रुपये फी लीटर कर दिया गया है, जबकि ATF बरामद पर ड्यूटी बढ़कर 14.50 रुपये फी लीटर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हुक्काम को हिदायत दी है कि वो सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक की सेहत का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लें। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि जिंदगी कीमती है। जनाब वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर हैं। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की एक बेंच ने जोर देकर कहा कि जनाब वांगचुक की अदालत की हालत सरकारी डॉक्टरों से रोजाना चेक कराई जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो मरकज और दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए, कहा कि हर शख्स की जिंदगी कीमती है और जनाब वांगचुक की रोजाना तिब्बी जांच कराने पर कोई एतराज नहीं है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीत चुकी भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने इस सीजन की अपनी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आलमी नंबर 5 खिलाड़ी चीन की हान यूई को सीधे सेटों में हराया और वो जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। PV सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को महज 35 मिनट में 21-16, 21-14 से शिकस्त दी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले एक रोजा मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जुग्राफियाई और सियासी महाजराई के दरमियान सिक्योरिटी और इकतसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक पर जोर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती में शाना बशाना पेशरफ्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को तजवीज किया है कि वो 5वीं या 6ठी जमात से तीसरी जबान मुतारिफ कराए। भारत में पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन का आगाज हो रहा है, जिसका मकसद माहौल के लिए साजगार और पायदार रेल मोबिलिटी को फरोग देना है। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical

0: benefit, a win-win situation. Now we have finalized the MOU with all BRIC countries, and today it will be signed.
1: This is the fifth BRICS Heads of National Standardization Bodies meeting being held in Bengaluru under the India chair. India and Belgium have agreed to deepen cooperation in areas including trade and investment, green energy transition, innovation and technology, connectivity, defence, security, regional and global issues, as well as people-to-people exchanges. The first meeting of the India-Belgium Strategic Dialogue was held in Brussels yesterday, marking a significant step towards strengthening bilateral relations. The United States has launched a new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. U.S. military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. President Donald Trump is also weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. The Rath Yatra of Lord Jagannath will begin today at Puri in Odisha. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. Two-time Olympic medalist P.V. Sindhu produced one of her best performances of the season to outclass world number 5 Han Yue of China in straight games and storm into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. PV Sindhu needed just 35 minutes to register a commanding 21-16-21-14 win over the higher-ranked Chinese shuttler in their second-round contest. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in the first ODI at Edgbaston, Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. Argentina will now play against Spain in the final on Sunday night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open badminton tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़ें। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक

0: कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There's an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1 अरब 70 करोड़ लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार

0: एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3,200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथ

0: की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: ताकि हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें और अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकें। इसी के मद्देनज़र आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर शेख यासिर खान साहब को मदऊ किया है। वो हमें ज़्याबितीश यानी शुगर यानी डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए और अगर हम उसकी जद में आ चुके हैं तो उसे कैसे कंट्रोल करें, इस बाबत वो हमें जानकारी देंगे। तो लीजिए समाप्त कीजिए प्रोग्राम हिफ्जान सेहत के तहत डॉक्टर शेख यासिर खान की ये कार आमद गुफ्तगू। उनसे महवे गुफ्तगू हैं जनाब नौमान शौक।
1: प्रोग्राम हिफ्जान सेहत के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी नौमान का आदाब। हिफ्जान सेहत में हम गाहे गाहे वक्त, हालात और मौसम के मुताबिक आपकी सेहत और आपके जिस्म के हवाले से जो मसाइल होते हैं, जो अमराज होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनके बारे में गुफ्तगू करने के लिए, आपको मशवरे देने के लिए, आपको समझने और समझाने के लिए गाहे गाहे ऐसे मुआलिज, ऐसे डॉक्टर, ऐसे हकीम हजरात को बुलाते रहते हैं जो अपने मैदान में माहिर हैं और जिनका खासा लंबा करियर डॉक्टरी और उससे जुड़े शोबों में रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बार फिर डॉक्टर शेख यासिर इस्लाम। आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं और कंसल्टेंट फिजिशियन हैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। हम आपका इस्तकबाल करते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: डॉक्टर साहब, आपके पास तो जो आपका बिल्कुल खुला मैदान है, आपका फिजिशियन है, हर तरह के मरीज आपके पास आते हैं जिनको ये मालूम नहीं होता कि उन्हें किस शोबे में जाना है, किससे राबता करना है, कौन उन्हें सही मशवरा देगा। तो बहुत सारे अमराज को लेकर आपके पास वाकफियत भी होती होगी, आप उन्हें अपडेट भी करते होंगे, लेकिन आज मैं जिस मखसूस बीमारी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो है ज़ियाबीतस यानी डायबिटीज़। इसके कुछ बुनियादी अलामत इसकी क्या हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, हम बात यहीं से शुरू करते हैं।
0: देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि डायबिटीज़ मेलाइटस इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी कॉमन बीमारी क्यों है। अगर मैं ये आपको बताऊं कि मेरे पास जो ओपीडी में आजकल हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो हर तीसरा या चौथा मरीज़ में से एक मरीज़ शुगर का ज़रूर होता है। जो कॉमन लैंग्वेज में डायबिटीज़ को शुगर
1: शुगर
0: बोलते हैं,
1: बोलते हैं जी।
0: तो हर तीसरा या चौथा मरीज़ डायबिटीज़ होता है। तो इतनी कॉमन हो गई है, इसका इंसिडेंस और प्रिवेलेंस इंडिया में बहुत कॉमन है। और ये मैं गलत नहीं हूँगा अगर ये मैं बात बोलूँ कि ये सबसे कॉमनेस्ट नॉन कम्युनिकेबल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इस टाइम डायबिटीज़ ही हो चुका है। तो डायबिटीज़ बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर समझा जाए तो पर से डायबिटीज़ का कोई साइंस एंड सिम्टम नहीं होता, मतलब बॉडी में इमिडिएटली उसका कुछ इफेक्ट पता नहीं चलता है। इसीलिए मरीज़ बेफिक्र होता है, उसको पता नहीं होता मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कि शायद वो शुगर वाली बीमारी से मुब्तला है। बहुत सारे केसेस में उसको पता तक नहीं रहता है। लेकिन जो कॉमन सिम्टम जिसे शुगर हाई होने से बॉडी पे असर आ जाता है, वो कॉमन सिम्टम्स हैं कि प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब बार बार आता है, भूख ज़्यादा लगती है, तो ये हम एक कॉमन सिम्टम बोलते हैं। और कई बार वेट लॉस भी होता है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, एक वेट लॉस जिसका कुछ रीज़न नहीं मिल रहा है।
1: समझ में नहीं आ
0: तो
1: रहा जी।
0: ये तीन चार और कॉमन सिम्टम है जिससे हमें हमेशा सोचना चाहिए कि कहीं आपकी बॉडी में शुगर हाई तो नहीं है। ये तो रही सिम्टम्स की बात, लेकिन डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बिना कोई सिम्टम्स के हमें रूटीन स्क्रीनिंग में पता चलता है कि इस मरीज को डायबिटीज की शिकायत है, हाई शुगर है। तो अगर हम ये समझेंगे डायबिटीज ज्यादातर डायग्नोज कैसे होता है, आजकल ज़्यादातर डायग्नोज होता है जब रूटीन टेस्ट एक इंसान कराता है और तब उसको पता चलता है कि उसको शुगर है। तो ये ज़्यादातर इंसिड पेशेंट्स हमारे पास एक रूटीन चेकअप में आते हैं कि उन्होंने चेकअप कराया और पता चला कि उनका शुगर हाई है। तो ये है जो इससे हमारे पास पेशेंट्स कॉमनली प्रेजेंट करते हैं। सिम्टम्स, अगर आपको प्यास ज़्यादा लग रही हो, भूख ज़्यादा लग रही हो, पेशाब बार बार आ रहा हो, या वेट लॉस हो रहा है आपका, थकान हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं शुगर हाई तो नहीं है। तो आपको एक रूटीन चेकअप शुगर का ज़रूर कराना चाहिए।
1: जी, और इसके बारे में बहुत सी चीज़ें मिथ भी हो सकती हैं, बहुत से साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे आमतौर से ये समझा जाता है कि जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं उन्हें शुगर होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसका खाने से फिल वक्त कोई ताल्लुक नहीं होता। आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में?
0: देखिए, पहले तो हम समझे कि डायबिटीज़ क्या होता है।
1: जी
0: देखिए, डायबिटीज़ दो किस्म का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बेसिकली यंग लोगों में, बच्चों में देखा जाता है, जिसमें एक सेल्स होते हैं बीटा
1: जी
0: सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, वो काम करना बंद हो जाते हैं। उनकी वजूहत क्या होती है अलग चीज़ है, बट वो शुरू से ही पेशेंट इंसुलिन पे रहते हैं और

0: को हमें इंसुलिन स्टार्टिंग से ही देना पड़ता है, और अक्सर ये यंग पेशेंट्स में, बच्चों में, यंग एडल्ट्स में ये बीमारी देखी जाती है। बट जो कॉमन बीमारी है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, वो कॉमनली हम एडल्ट्स में देखते हैं, वो
1: जी
0: उसका इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ज़्यादा है। बेसिकली ये आपकी बॉडी में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो पैनक्रियाज रिलीज़
1: जी
0: करते हैं वो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन तो होता है लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, और उसका सबसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। ये एक फैक्टर नहीं है कि जो ज़्यादा मीठा खाए उसको डायबिटीज़ होगा,
1: जी
0: सिर्फ एक रिस्क फैक्टर नहीं है, ये पॉलीजेनिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। पॉलीजेनिक रीजंस हैं इसके, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो एक तो जेनेटिक हेरिडिटरी फैक्टर है कि अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, एक को है तो रिस्क रहता है, दोनों को
1: जी
0: है तो रिस्क बढ़ता है। तो एक हेरिडिटरी फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपका एक रिस्क हमेशा बना रहेगा कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है।
1: यानी वालिदैन को या
0: जी,
1: वालिदैन में से किसी एक को भी है तो
0: तो
1: चांसेस
0: आपका
1: इस बात के
0: चांसेस
1: ज्यादा
0: है कि
1: होते हैं।
0: आपका डायबिटीज़ होने का रिस्क है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो आजकल देखा जाता है वो है मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा, जब इंसान का वज़न बढ़ता है तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जो बॉडी में इंसुलिन काम करना चाहिए वो प्रॉपरली काम नहीं करता, जिसकी वजह से शुगर हमारा बढ़ जाता है। अब मोटापा बढ़ने के रीजंस सिर्फ एक नहीं है। मोटापे होने का रीज़न सबसे बड़ा हमारा हाई कैलोरी इंटेक, जब हम खुराक ज़्यादा खाते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जैसे हमारा आजकल लाइफस्टाइल। इसलिए डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला
1: जी
0: जाता है,
1: जी बिल्कुल
0: क्योंकि जब हमारी कैलोरी इंटेक हो ज़्यादा होती है और आउटपुट कम होता है तो हमारा वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ेगा, विसरल फैट बढ़ेगा, पेट के आसपास जो जिसको सेंट्रल ओबेसिटी हम बोलते हैं वो बढ़ता है, तो उससे डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अब मोटापा बढ़ना सिर्फ हाई शुगर से नहीं होता। मोटापा आप अगर ज़्यादा खाना खाएंगे, वो नॉन जो स्वीटेंड फूड है वो भी अगर आप
1: जी
0: ज़्यादा खाएंगे, कैलोरी इंटेक ज़्यादा करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और आउटपुट कम होगा, तो फिर आपका मोटापा होगा, वज़न बढ़ेगा, तो वज़न बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जिससे डायबिटीज़ का चांस ज़्यादा है। ओवरऑल भी अगर खुराक ज़्यादा खाएं जिसमें आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो आपको शुगर होने का चांसेस ज़्यादा है।
1: आपकी बातों में ये भी एक पोशीदा इशारा था कि
0: जी
1: ज़्यादा खाना भी उतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके जिस्म को उस खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती
0: जी
1: है।
0: बेशक बेशक,
1: इसलिए आमतौर से जो जिम जाने वाले बच्चे होते हैं, उस तरह के लोग होते हैं जो कसरत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उनकी डाइट अच्छी खासी होती है, लेकिन देखने में भी फिट होते हैं और फिट अदरवाइज भी फिट होते हैं। तो ये इसके पीछे का सबब गालिबन यही होगा
0: यही
1: जो
0: है
1: आप कह रहे
0: जी।
1: हैं,
0: देखिए, अगर आप खुराक ज़्यादा ले रहे हैं और उतना आउटपुट नहीं आ रहा है
1: नहीं आ रहा है।
0: तो वो बॉडी में आपका लीवर में, जो लीवर हमारा जो स्टोरेज ऑर्गन होता है बेसिकली, वो लीवर में फैट की तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि फैटी लीवर भी एक शुरुआती, मतलब जिसको शुगर बेशक उसका नॉर्मल आ रहा है, बट अगर फैटी लीवर है तो एक चांस होता है कि लॉन्ग टर्म में इस मरीज़
1: डेवलप हो
0: को
1: जाए।
0: डायबिटीज़ होने का रिस्क है, क्योंकि एक्स्ट्रा खुराक ही आपके लीवर पे जाके फैट एक्यूमुलेट करके फैटी लीवर कर देती है। तो बेसिकली अगर आपकी खुराक ज़्यादा है, आउटपुट कम है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस हो जाता है कि बॉडी से जो इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है, जिससे शुगर जो मसल्स में जाना चाहिए, आपके टिश्यूज़ में जाना चाहिए, वो सिर्फ आपके ब्लड में रहता है। तो जब ब्लड में रहता है तो फिर शुगर हाई हो जाता है और उसी से कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है।
1: शुगर अपने आप में सेहत के लिए एक मसला तो है ही, और कई बार इसकी हदें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो दूसरे कई मरज़ को पैदा कर देता है। तो इस तरह के कौन कौन से इससे जुड़े हुए अमराज हैं कि जो अगर शुगर पर वक्त पर ध्यान नहीं दिया गया या उसका इलाज नहीं कराया गया, तो किन दूसरी बीमारियों के होने के इम्कानात हैं?
0: डायबिटीज़ ये मत समझिए कि कोई बीमारी है, लेकिन इसको हमें कंट्रोल इसलिए करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर शुगर हाई रहता है तो आपके जो एंड ऑर्गन, जो ऑर्गन्स का डैमेज होगा, वो ख़तरनाक बीमारियां होती हैं। हमारा जो मकसद होता है शुगर को कंट्रोल करने का, वो यही होता है कि इससे होने वाले जो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, जो मैं बताता हूँ क्या क्या हैं, वो हमें रोकना है। तो ये मकसद होता है हमें कि हम शुगर को एक नॉर्मल रेंज में इसलिए रखें ताकि जो इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाली हैं वो उनसे हम रोकें। तो सबसे कॉमन जो इन्वॉल्वमेंट ऑर्गन्स

0: होता है वो है सबसे पहले तो आइस, आपकी आइस को बहुत डैमेज करता है, जो हमारी रेटिना होता है, जो पर्दा होता है आँख का पर्दा, वो सबसे पहले और कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो जब भी अगर आपके आँखों में कोई नज़र कमज़ोर हो रही है या चश्मा फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं आप क्या, तो हमेशा अपना शुगर ज़रूर चेकअप
1: जरूर
0: कराएं।
1: सर,
0: और कई मरीज़ तो हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो आई स्पेशलिस्ट के पास गए हैं, उनको तो पता भी नहीं था कि शुगर है। जब
1: जी
0: आई डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि इनके तो पर्दे पे शुगर की वजह से काफ़ी असर आया है, तो फिर वो हमारे फिजिशियन के पास भेजते हैं कि आप शुगर चेकअप करा लीजिए और अपना इलाज कराइए। तो आइज़ का इन्वॉल्वमेंट कॉमनली होता है। सेकेंड है नर्व्स का, नसें, जो नर्व्स जो हमारी
1: जी
0: होती हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो पेशेंट को नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट, सुनपन, बेसिकली ये सब सिम्टम होते हैं। तो नर्व्स का डैमेज होता है, ये भी हाई शुगर से होता है। और दो कॉमनली सिम्टम जो ड्रेडिड, जिसको हम खतरनाक सिम्टम बोलते हैं, जिसकी वजह से
1: जी
0: मरीज़ की एक डेथ का रीज़न भी बनता है, वो है किडनी का और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम डायबिटिक्स नेफ्रोपैथी बोलते हैं, और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट जो हार्ट अटैक का एक रीज़न, जो डेथ का रीज़न बन जाता है। तो हमें जो पेशेंट को बेसिकली प्रिवेंट करना है वो इन चार मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ की, ये मरीज़ को ये चार कॉम्प्लिकेशंस, इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, बट जो चार जो कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, इससे प्रिवेंट करना है। तो वो कैसे प्रिवेंट होगा? जब हम अर्ली डायग्नोस करें, कि पहले ही पता चले कि इसके इस पेशेंट को, इस इंसान को शुगर इसका हाई जा रहा है और इसको हम अभी से कंट्रोल करें। अगर एक इंसान जिसका शुगर पता चला है और उसने लाइफ में कभी शुगर उसके बाद बढ़ने नहीं दिया, नॉर्मल रखा, उसको ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम शुगर अभी से कंट्रोल करें, ताकि मरीज़ इन सब कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास ना आए। अगर कोई मरीज़ जिसका शुगर अनकंट्रोल है और उसने दवाई नहीं ली, कोई अपना ध्यान नहीं रखा, तो अल्टीमेटली ये कॉम्प्लिकेशंस लेके पेशेंट हमारे पास आएगा ही आएगा। और ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमनली हमारे पास प्रेजेंट करके आता है। मतलब बेसिकली पेशेंट को कई बार शुगर का पता भी नहीं होता है, वो पता चले कि उसका किडनी भी ख़राब हो गया है, उसके हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, उसकी आँखों की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और हैरानगी की बात ये होती है कि मरीज़ को ये तक नहीं पता है कि उसका शुगर हाई था।
1: जी
0: तो इसीलिए डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस, कि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमें एक रूटीन चेकअप करना ज़रूरी है। इसलिए पहले गाइडलाइंस होते थे कि बियॉन्ड 40 ईयर्स ऑफ एज आप अपना शुगर चेकअप ज़रूर कराएं, लेकिन अब जो देखा गया है यंगर एज में भी डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। तो हम कब चेकअप कराएं? पहले तो अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला
1: जी
0: था कि अगर आपको पेरेंट्स में एक को या दोनों को है, तो आप यंगर एज ग्रुप में, मैं तो ये कहूँगा 20 साल के बियॉन्ड ही एक रूटीन चेकअप ज़रूर करा लिया करें, शुगर का चेकअप ज़रूर करा करें। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है लेकिन आपका वज़न बढ़ रहा है, तो शुगर का चेकअप ज़रूर कराएं। और अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है तो बियॉन्ड 30 और 40, तो आप एक रूटीन डायबिटीज़ का चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि हमें इसको जल्दी कंट्रोल कर सकें और जो इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकें।
1: जी उम्दा बातें, ख़ास तौर से जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, नौजवान हैं, आम तौर से उन्हें लगता है कि अभी तो हमारी उम्र ही उछलने कूदने की है, भागने दौड़ने की है, तो उनके जहन में कभी ये बात आती ही नहीं गुमान में कि उन्हें भी इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे आमतौर से पढ़ने वाले हैं, हॉस्टल में हैं, कहीं बाहर हैं, तो उनको खाने पीने की न तो वक्त की पाबंदी होती है, न वो क्या खा रहे हैं उन्हें इसका पता होता है, बाहर से वो जो मंगा रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, वो उन्हें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है उसका पता नहीं होता। कई बार बच्चों की फिजिकल इनएक्टिविटी का एक जस्टिफिकेशन उनके पास ये था कि हम पढ़ रहे होते हैं, हमें स्टडी करना है, अभी हमारे पास उछलने कूदने के लिए, बाहर खेलने भागने दौड़ने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन उनका वेट बढ़ता जाता है, उन्हें पता नहीं होता। ये अब आपकी बातें सुनकर ये लगता है कि ऐसे बच्चों को भी बहुत केयरफुल रहना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा था, क्योंकि पहले एक ट्रेडिशनली एक 40s बियॉन्ड हम बोलते थे, बट आजकल जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा यंग लोगों में, आपको यकीन नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि
1: जी
0: टाइप 1 डायबिटीज़ यंग में देखा जाता है, बट अब टाइप 2 डायबिटीज़ में लाइट है, जो इन मोटापे से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है, वो यंग लोगों में देखा जा रहा है। और यंग लोगों से मेरा मतलब 16, 17, 18 एज ग्रुप,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उनमें मोटापा बढ़ रहा है, फिजिकल इनएक्टिविटी, कैलोरीज इनटेक का ज़्यादा है और फिजिकल इनएक्टिविटी हो रही है, जिससे वज़न बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और यंग लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का इंसिडेंस देखा जा रहा है।
1: खास तौर से बड़ों में तो नहीं, लेकिन बच्चों में ये बात आम होती है कि वो बहुत सी चीज़ें जैसे फल, साग सब्जी, ये तमाम चीज़ें उन्हें आम तौर से खाने में बहुत पसंद नहीं आती, तो क्या इनका नल

0: देना भी एक सबब होता है उनके जिस्म को उस तरह बिहेव करने का।
1: जी, हम जो भी खाने को दो हिस्सों में तोलते हैं कि इसका कैलोरी इंटेक कितना है, जब आप कुछ चीज़ खाते हैं तो वो कितनी कैलोरीज आपको देती है। आजकल ज़्यादातर तो जो फूड यूज़ होता है, जैसे मैदे की चीज़ें, फास्ट फूड, ये टेस्ट के हिसाब से बच्चों को यंग एज में बहुत पसंद आता है, लेकिन ये साथ साथ आपको कैलोरीज बहुत ज़्यादा दे देता है। जैसे अगर आप एक बर्गर खाएं या एक पिज़्ज़ा खाएं, आपको कॉमनली आजकल आप जाएंगे कहीं पे
0: जी
1: भी
0: जी
1: ज़्यादातर
0: जी
1: यही चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये इनका कैलोरीज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ना और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इंसिडेंस बढ़ जाता है। जितने भी हाई फाइबर डाइट होती है, चाहे वो फ्रूट्स हैं या सैलेड्स हैं, इससे पेट भरता है लेकिन ये कैलोरी कम देता है। तो हाई कैलोरी और लो कैलोरी, जैसे जितने भी सब्जियां, फल फ्रूट हैं, इनसे आपकी कैलोरी बहुत कम मिलती है एज़ कंपेरिजन टू फास्ट फूड और बाकी मैदे की चीज़ें जो कॉमनली यूज़ होती हैं, या फास्ट फूड, उनसे कैलोरी ज़्यादा मिलती है। तो चूंकि आजकल इनसे फल फ्रूट और फाइबर का इंटेक कम हो गया है,
0: कम हो गया है
1: फास्ट
0: बहुत।
1: फूड इंटेक बढ़ गया है, क्विक शुगर इंटेक, इनफैक्ट जैसे शुगरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपके बॉडी में कैलोरी देंगी, आपकी बॉडी में वज़न बढ़ाने में हेल्प करेंगी, और जिससे डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाएगा।
0: जी, ये तो हमने आमतौर से बातें जो अभी की उसमें एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मरतकज था। हम एक खास एज को जब क्रॉस करते हैं तो उसके बाद वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, हमें बहुत सारे ऐसे मसाइल से दोचार होना पड़ता है जिसके बारे में हम आमतौर से नहीं सोचते, और अपने प्राइम में या 40s 50s तक हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन उसके बाद उसको हमें संजीदगी से लेना होता है। आपने खुद बताया कि वो टेस्ट कराते रहना चाहिए, ये एक रूटीन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए खास एज के बाद। और खाने पीने में आपने बताया कि जो लो कैलोरी है वो लेना चाहिए अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं,
1: जी
0: तो अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहिए ताकि एटलीस्ट इंसुलिन के जो मसाइल पैदा हो
1: जी
0: रहे हैं उसकी वजह से वो ना पैदा हों। तो आप किस तरह से सजेस्ट करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स और जो यंग हैं दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों के डायबिटीज़ में, वो आपने बताया भी है पहले, दोनों को खाने पीने में अपने मामूलात में किस तरह का फ़र्क करना चाहिए?
1: देखिए, जहाँ तक जो डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो शुगर वैल्यू से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ से पड़ता है। जितना लंबा शुगर की बीमारी है, उतना कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब कोई पेशेंट सबसे पहले जब हमारे पास आता है, हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि आपको शुगर कितने सालों से है। जितना लंबा डायबिटीज़, उतना कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। यंग लोगों में अगर डायबिटीज़ हो रहा है, तो इतना हमें पता है कि इसको हमें अभी कंट्रोल
0: चेक किया
1: करना
0: जा
1: बहुत
0: सकता है।
1: ज़रूरी है, ताकि जब ये पेशेंट बियॉन्ड 40s, बियॉन्ड 50 और बियॉन्ड 60s हमारे पास आए, तो इसके जो डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना हो। तो इसलिए अर्ली टारगेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उसको कॉम्प्लिकेशंस से रोकें। जो एल्डरली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अक्सर अमूमन ये देखा गया, वो ज़्यादातर इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा शुगर का। तो ये लोग ज़्यादातर हमारे पास आइज, नर्व्स, किडनी या हार्ट का डैमेज लेके आते हैं। ऐसे पेशेंट्स में और भी बीमारियां होती हैं, किडनी की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी हो चुकी होती है, तो उनमें हमें फिर उसके अकॉर्डिंग डायबिटीज़ से रिलेटेड हमें एडवाइस देनी पड़ती है। पहले तो जो कॉमन एडवाइस है वो सबके लिए सेम रहती है, कि आपको कैलोरीज को ध्यान देना है, कि कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करें आप, कैलोरीज को बढ़ने ना दें, और फिज़िकल एक्टिविटी, क्योंकि एल्डरली में फिज़िकल एक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू यंग थोड़ा डिफरेंट रहेगी, क्योंकि उस एज में फिर आपके घुटनों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, तो हम वो वाली फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनको एडवाइस नहीं कर सकते जो यंग को कर सकते हैं। तो हम यही बोलते हैं कि आप जो रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी है, उसी में आप फिज़िकल एक्टिविटी ऐसे इनकॉर्पोरेट कर दीजिए कि आपको, ज़्यादातर आजकल प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं है अलग से।
0: जी
1: तो जो मैं एडवाइस करता हूँ एज ए डॉक्टर, हम ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने रूटीन में वो चीज़ें लाएँ जो आप डेली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मरीज़ ये बोलते हैं कि एक दिन आएगा जहाँ मैं जब मैं जिम जाऊँगा, एक दिन जब आएगा जब मैं वॉक करने जाऊँगा, बट वो दिन कभी नहीं आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी रूटीन में वो चीज़ें लाएं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हैं। जैसे कॉमन चीज़ें क्या कर सकते हैं हम, एक तो जैसे आप लिफ्ट अगर यूज़ करते हैं, तो लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स यूज़
0: जिम
1: कर रहे हैं।
0: यूज़ कीजिए।
1: अगर आप गाड़ी से जाते हैं, तो गाड़ी से हर कोई जाता है, तो आप पार्किंग थोड़ा दूर करें, ताकि आप थोड़ा चल के अपने ऑफिस तक जाएं। और अगर

0: हो सके तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। जब आप मेट्रो से जाते हैं तो आप चल के जाते हैं मेट्रो तक, रिक्शा का यूज़ कम से कम करें। तो अगर, और ख़ासकर जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, जो जिनका प्रोलॉन्ग सिटिंग रहता है, तो उनको हमेशा बोलते हैं कि आप प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लें। जैसे आप 1 घंटे बैठे हैं तो थोड़ा टहल के आइए आप। तो ये चीज़ें और इनकॉर्पोरेट कीजिए, जिससे आपका फिज़िकल एक्टिविटी डेली एक रूटीन बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आधा पौना घंटा डेली ब्रिस्क वॉक करें, जो अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि एक इंसान को 30 से 45 मिनट्स फिज़िकल एक्टिविटी 5 दिन हफ्ते में काफ़ी होता है एक फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए। तो अगर यही चीज़ हमने कर ली, तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है अलग से कि आप एक दिन मैं जिम
1: बिल्कुल
0: जाऊंगा, वो एक जो हमेशा माइंड में रहता है कि, तो आप जस्ट एक इनको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट कीजिए जो आप फॉलो कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म बीमारी है। ये एकदम ऐसे नहीं होगा कि आपने 10 दिन किया फिर 20 दिन नहीं किया। तो एक इसको रूटीन बनाना पड़ता है जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, आजकल हर एक के पास स्मार्ट वॉचेज़ होते हैं, तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ पेशेंट्स को कि मिनिमम 10,000 स्टेप्स आप ज़रूर एक डे में करिए। 10,000 नहीं भी हो सकता है, तो 5 से 10,000 के बीच में स्टेप्स आप ज़रूर करिए। उससे आपका डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम होता है, और इनफैक्ट शुगर भी कंट्रोल होता है अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाते हैं तो।
1: जी, अभी आपने बहुत उम्दा मशवरे दिए जो यकीनन बहुत सूदमंद हैं, हर कोई जानता है। ये और बात के उस पर अमल न कर पाए,
0: जी
1: और जैसा कि आपने कहा, हम सोचते हैं हम अब ये करेंगे, अब
0: जी
1: ऐसे रहेंगे, अब जिम जाएंगे, वगैरह वगैरह। समाज का एक तबका हमारे ऐसा भी है जो हमें सेहतमंद रखने के लिए, हमें तंदुरुस्त रखने के लिए बड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसे खुद अपना ख्याल नहीं रहता। और वो तबका है औरतों का,
0: जी
1: वो सबकी सेहत का ख्याल रखती हैं, लेकिन जब उनसे अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है तो उनके पास वक्त नहीं होता। कई बार वो दूसरों के पीछे इतनी दीवानी रहती हैं, उनका जो मकसद होता है, जो टारगेट होता है, उसके पीछे बच्चों को स्कूल जाना है सुबह में, हस्बैंड को दफ्तर जाना है, फिर उनको बच्चों को ट्यूशन जाना है, वो उन्हीं में लगी रहती हैं। तो आमतौर से उनमें भी अब इस तरह की जो बीमारियां हैं वो होती हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाती। तो औरतों के लिए क्या कुछ अलग तरह से कोई हिदायतें हैं, या उनके सिम्टम्स हैं, या उनको कैसे इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जो सेहत है, ख़ास तौर से डायबिटीज़ के लिए बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डायबिटीज़ का इंसिडेंस मेल्स और फीमेल्स में अगर देखा जाए तो फीमेल्स में ज़्यादा देखा जा रहा है। की वजह यह है कि जो मेल्स हैं, चूँकि घरों के बाहर जाते हैं, थोड़ा
1: जी
0: फिज़िकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा रहती है, और फीमेल्स चूँकि घर पे रहती हैं और फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है, तो उसकी वजह से मोटापा फीमेल्स में ज़्यादा देखा है, और उसी वजह से डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी फीमेल्स में ज़्यादा देखा जा रहा है। तो उसमें भी यही ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, एक वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें जहाँ वो वॉक ज़रूर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी कहा, कि जिम जाएं। आप घर पे भी, अगर आपका फ्लैट है या घर है, और गर्मी में चूंकि अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर पे भी वॉक कर सकते हैं। और अगर वॉक ना भी करें, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे योगा है, वो भी आपका हेल्प करता है वेट लॉस में, आपकी डायबिटीज़ को इंसिडेंस को कम
1: जी
0: करने में। तो आप एरोबिक एक्सरसाइजेस घर पे भी कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्क में ही जाना है, आपको धूप में जाना है। आप एक अपने कमरे में भी कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कर सकती हैं जिससे आपका वेट कम होगा और आपका डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम होगा। दूसरा खुराक है, खुराक पे सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने कैलोरीज़ को हमेशा देखिए, चेक कर लीजिए कि वैसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपका वज़न बढ़े, क्योंकि जब वज़न बढ़ेगा तो डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़रूर बढ़ता है, और एक यही एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है अल्टीमेटली, जो आपका किडनी और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है।
1: जी, आपने बड़े अच्छे मशवरे दिए, कई लोगों को बहुत सूट करता है। मैं तो बहुत खुश हुआ कि मैं भी घर में टहल लेता हूँ कभी
0: जी
1: कभी, अपनी काहली को छुपाने के लिए मैं कहता हूँ कि हाँ मैं टहल रहा हूँ। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, 4-5 दोस्त होते हैं, वो बातें करते हुए बहुत लंबा चक्कर लगा के लौटते हैं। लेकिन कई माहरीन का ये कहना है कि ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपको ब्रिस्क वॉक करनी है कि आपको पसीना आए, आप चलने में आपकी सांस तेज़ हो, आपके लंग्स की कुव्वत पता चले।
0: देखिए,
1: आप क्या
0: इसमें
1: कहना चाहेंगे?
0: एक तो होता है कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है।
1: जी
0: एक तो डेफिनेटली ब्रिस्क वॉक सबसे हेल्पफुल रहता है, कि ब्रिस्क वॉक करना है और आपको थकान हो, हल्का हल्का सांस फूले, पसीना आए, तो वो आइडियल होता है।
1: आइडियल होता
0: लेकिन
1: है।
0: अगर इंसान ये सोचे कि मैं

0: ब्रिस्क वॉक नहीं कर पा रहा हूँ और मैं सिर्फ बेड पे बैठूँ, चेयर पे बैठूँ, तो
1: जाहिर है।
0: उससे बेहतर सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि आप टहलें, क्योंकि चाहे वो 5,000 स्टेप्स है उसका भी फ़ायदा होता है, चाहे
1: जी
0: 10,000 स्टेप्स है उसका भी, तो आप फिजिकली एक्टिव रहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है आजकल,
1: जाहिर
0: इतना
1: है बात,
0: वो
1: बिल्कुल।
0: हमारी प्रेफरेंसेस बहुत बदल जाती हैं, जॉब, घर का काम, उसमें आपको टाइम अलग से अपने लिए, चाहे कुछ भी वॉक करें वो भी कर सकते हैं। मैं तो ये तो एडवाइस करता हूँ पेशेंट को, जैसे अगर आप कहीं लॉन्ग टर्म के लिए किसी का वेट कर रहे हैं, जैसे
1: जी
0: एयरपोर्ट पे हैं,
1: तो
0: स्टेशन पे
1: टहलते
0: हैं,
1: रहें,
0: तो चेयर पे मत बैठें, आप टहलिए, वो
1: बिल्कुल
0: भी आपके लिए
1: निश्चित।
0: फ़ायदेमंद होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से एक प्लान वर्क करके रहना, आप कहीं किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप टहल टहल के इंतज़ार करिए। तो
1: बेहतर
0: एक
1: है,
0: बेसिक चीज़ है, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप फ़ोन पे बात बैठ के ना करके आप वॉक करके बात करिए, क्योंकि आज इंसान एक एक घंटा फोन पे बिजी होता है,
1: जी
0: और ये
1: जी
0: बेस्ट
1: जी
0: टाइम होता है कि आप टहल टहल के बात करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि
1: बहुत
0: आप वॉक
1: उम्दा,
0: कर रहे हैं।
1: बहुत उम्दा। क्या क्या क्या गुर आपने बता दिए, और ऐसे मौके कम आते हैं कि लोग बहुत संजीदगी से अपनी सेहत के बारे में सोचें और उन्हें ये भी पता हो कि उनकी सेहत के किस मसले का हल क्या है। आपने बहुत कम वक्त में, आपने बहुत मुख्तसर और थोड़े वक्त में बहुत काम की बातें बताई, और मेरी दुआ है कि हमारे जितने सामईन हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, वो आपके मशवरों पर अमल करें और सेहतमंद रहें, अपने फैमिली, अपने बच्चों को सेहतमंद रहने की सलाह दें, उन्हें तरीके बताएं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, नवाजिश।
0: जी शुक्रिया। बस लास्ट पे एक चीज़ बोलूँगा, जैसे हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। शुगर से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना वेट मेंटेन रखें, डाइट पे फोकस करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। अगर ये चीज़ों पे फोकस करेंगे तो शायद आपको डायबिटीज़ नहीं होगा और ना ही डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होंगी।
1: बहुत शुक्रिया।
2: सामईन, अभी आप डॉक्टर शेख यासिर ख़ान से ये सैर हासिल गुफ्तगू समाप्त कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे जनाब नौमान शौ। तो सामईन, हमें यकीन है कि हम सब के लिए ये गुफ्तगू और डॉक्टर साहब का मशवरा बहुत मुफीद साबित होगा। सामईन, हम ऐसे ही मेहमानों को आपकी बज्म में शामिल करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप उर्दू मजलिस कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, फिल्म है दो गलियां।

0: को नहीं कहना था, उसके नजर से भी तू दिल से नहीं जाता।
1: अरे प्यार हुआ है जब से।

0: This is Akashvani. We now take you over to the Mahaprabhu Jagannath Ji Dham, Pavan Chetra Puri in Odisha for the live broadcast of the celebration of Rath Yatra. Our commentators are Sri Mohan Lal Majithia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English.
1: Ye Akashvani hai. Ab hum aapko punah Mahaprabhu Jagannath Ji ke Dham ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी लिए चलते हैं, जहां से आप वहां आयोजित हो रही रथ यात्रा का आंखों देखा हाल सुनेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में। आइए श्री जगन्नाथ धाम पुरी चले।
2: जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को पुरी से भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के आंखों देखा हाल का दूसरा चरण अभी शुरू हो रहा है। जब हम पहला चरण पूरा करके ब्रेक में गए थे, तब जगन्नाथ जी उनकी पहंडी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, वो रथ पर आसीन नहीं हुए थे। लेकिन इस बीच जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हो चुके हैं। उनके बाद तीनों रथों में जो पार्श्व देवी देवता उनको स्थापित किया जाता है, जैसे कि पंचमुखी महावीर, हरिहर, मधुसूदन, गिरि गोवर्धनधारी, पांडु नरसिंह, लक्ष्मण, अंगद, नरसिम्हा, कार्तिकेय, नटराज, नृत्यरत गणेश आदि ये देव तथा माँ बिमला, वनदुर्गा, वराही, चामुंडा, भुवनेश्वरी, हरचंडी, जयदुर्गा, सर्वमंगला, उग्रतारा आदि देवियों को भी सहायक देवी देवता के रूप में रथों पर विराजमान कराया जाता है। ये प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और इस तरह पहंडी का क्रम संपूर्ण हो चुका है। उसके बाद विधि अनुसार जो परंपरा रही है सदियों की, पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य महाराज श्री श्री निश्चलानंद सरस्वती वो अपनी सेवा देने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए

0: वो पधारे हैं, एक के बाद एक तीनों रथों पर वो भगवान की आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और भगवान से समूचे जगत के लिए कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये क्रम अभी चल रहा है। उनका जो ये सेवा है ये पूरी हो जाने के बाद फिर वहाँ से आज्ञामाल आएगी और गजपति महाराजा के पास संदेश लेकर कि आपका अब समय हो चुका है, इसके लिए अभी समय है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं, लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं, भीड़ इतनी है। इस बीच किसी किसी मूर्छित श्रद्धालु को स्वयंसेवी संस्थाएं उनकी सहायता करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के लिए पास ही जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाते हैं, एम्बुलेंस की सेवा मौजूद है, अग्निशम विभाग वो लोग भी मौजूद हैं और पुलिस, आरपीएफ और ये सारी सशस्त्र सेनाएं ये भी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। सब कुछ सकुशल चल रहा है। घंट ध्वनि, जय घोष, जय जगन्नाथ, हरि बोल की गूंज के बीच ये वातावरण एक मानो एक अद्भुत लहर उठ चुकी है और मेरे सामने तीनों रथ जो सुसज्जित हैं, अभी गजपति महाराजा के पास संदेशा आएगा। इस बीच हमारे सामने हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी, वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
1: ये खूबसूरत नज़ारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्यौहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज़ की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
0: धन्यवाद अंजलि जी। आप लोगों ने जैसे सुना, अंजलि जी बहुत ही भावुक हो गई हैं। ये समय ऐसा है, ये माहौल ऐसा है, ये वातावरण ऐसा है कि जगन्नाथ जी के बड़े बड़े चक्राकार नयन को देखकर कोई भी भक्त, कोई भी श्रद्धालु भाव विभोर हो जाता है। वो अपने आप को भुला देता है। वो यही देख रहा है कि वो दुनिया में सिर्फ वो अकेला है और उसके सामने उसके आराध्य देव भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, आसपास कोई और नहीं है। ये भक्त और भगवान के बीच के मिलन का दृश्य बहुत ही मनभावन है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है। आप पहली बार आई हैं रथ यात्रा में?
1: हाँ, मैं पहली बार आई हूँ।
0: इससे पहले आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन में आई?
1: नहीं, मैंने कभी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए।
0: तो देखिए, ये अंजलि जी का सौभाग्य है कि उन्हें भगवान जगन्नाथ स्वयं दर्शन देने के लिए आज के इस अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के तिथि में उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें दर्शन दिया। और जैसा कि अंजलि जी ने वर्णन किया, उनके पास शब्द की कमी पड़ रही है, वो अपने भाव प्रकट करने में अक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजलि जी। आपका जीवन सुखमय हो, जगन्नाथ जी आप पर यही आशीर्वाद करें। धन्यवाद।
1: जय जगन्नाथ।

0: Eddie, that would trace the maker of the Jagannath temple to be Jajati I. That is the first Jajati. Why? But there is a classic text on Jagannath cult, which is mentioned in the Purushottama Khetra Mahatmya. They would like to credit the making of the mandir to Indradyumna, who is named so because he is a king powerful like Indra, or the king of the gods. He was a Somavansi ruler and ruler of Avanti. That's why he is taken to be a mythical king, and he is taken to be the chief architect of the temple, though there existed another temple earlier. And this earlier temple, a later day emperor called Galamadava, when he was going on his horse, the hoofs of his horse are supposed to have rubbed against the tip of the temple, and thereafter he knew that the obstacle meant that there was something which was hidden under the ground, and this was excavated, and the mandir came up as it was. So like I was telling you, the nature of Lord Jagannatha is such that he is taken to be a mysterious god. You can never predict anything about Lord Jagannatha, excepting perhaps only one thing, that he is very fond of his bhaktas, and he comes out of his jewel altar along with his siblings and his divine caretaker, that is Sudarsana, once a year to go on an annual pilgrimage to his Janmabedi or birthplace, at least for once. This is and that is called Rath Jatra, or the car festival as we know. And the god is so mysterious that he is described this way in Sanskrit: Sarvam Rahasya Purushatamascha Deva Na Janati Kuto Manushya. And the Jagannath, as we see him, carries so many tales with him, which we'll be talking about by and by. With this, I'll request my fellow commentator to continue with commentary in Hindi.
1: धन्यवाद प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी. अभी रथ खींचने में काफ़ी समय है, क्योंकि रथ खींचने से पहले जो शंकराचार्य महाराज की नीति है वो संपन्न हुई है, इसके बाद संपन्न होने को जा रही है. फिलहाल शंकराचार्य महाराज भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ पर विराजमान हैं, वहाँ पूजा आरती कर रहे हैं. थोड़ी देर में वो यहाँ से अपना कार्य संपन्न कर विदाई लेंगे, उसके पश्चात गजपति महाराजा यहाँ आएंगे अपनी सेवा प्रदान करने के लिए. पुरी के गजपति महाराजा भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माने जाते हैं, इसलिए रथों पर छेरा पहरा की नीति संपन्न करने की जो परंपरा है, इसका जो हक है ये उन्हें प्राप्त है. छेरा पहरा क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा. छेरा और पहरा ये दो शब्दों का मिश्रण है. छेरा यानी चंदन का गाढ़ा घोल, और पहरा यानी झाड़ू से साफ करना. तो छेरा पहरा ये मिलकर झाड़ू से साफ करना और चंदन मिश्रित जल का सिंचन करना, ये होता है छेरा पहरा. तो गजपति महाराजा जब ये आएंगे, बारी बारी से तीनों रथों पर ये सेवाएं प्रदान करेंगे. फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये रथों के निर्माण के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा. परंपरा के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया रथ निर्माण की शुभ तिथि मानी जाती है. प्रतिवर्ष पुरोहित यज्ञादि अनुष्ठान पूर्वक श्री नर यानी कि भगवान गजपति राजा के जो महल है उसे श्री नर कहा जाता है, उसके सम्मुख रथशाला की स्थापना करते हैं. ये रथशाला स्थानीय भाषा में रथ खड़ा कहा जाता है. इसके उपरांत श्री मंदिर से तीन रथों के लिए तीन आज्ञामाल लाए जाते हैं, और तीनों रथों के निर्माण हेतु रखी गई पहली लकड़ियों को

0: that gods are within touchable distance of human beings. The Lord's Leela or divine game is at its best during the Kar festival. This is the occasion where the Supreme Lord or Purushottama Jagannatha comes to meet his bhaktas in the open. The enthusiasm of millions of bhaktas of his to have a glimpse of their favorite deity can be said to be the best spiritual show on earth. And faith is supposed to be the greatest healer, and at no other juncture in human history the time was more appropriate for man to repose his faith in the Almighty Lord, as we have heard in recent times when we had the corona pandemics, or for the last so many years, about 155 years in the history of the temple, Jagannath worship has not been able to be done because of foreign aggression. With this, I will like to hand over the mic to Majithia ji for commentary in Hindi.
1: धन्यवाद प्रोफेसर नायक. जैसा कि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, शंकराचार्य महाराज तीनों रथों पर भगवान के दर्शन करने के साथ साथ जनता के लिए, समूचे विश्व के लिए प्रार्थना की है भगवान से कि विश्व का कल्याण हो, धर्म का जय हो और अधर्म का नाश हो. उसके पश्चात वहाँ से आज्ञा माल लेकर गजपति महाराजा के निवास पहुँचे और गजपति महाराज कुछ ही देर पहले हमारे सामने से एक विशेष रूप से बनी पालकी पर विराजमान होकर रथों पर अपनी सेवा प्रदान करने के लिए पहुँचे हैं. वो बारी बारी से तीनों रथों पर सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करेंगे. जैसा कि हम देख रहे हैं, आगे आगे एक सेवक श्वेत फूल वहां डालते जा रहे हैं और झाड़ू से महाराजा उसकी सफाई करते हैं. इसके बाद वो तीनों रथों पर ये सेवा करने के बाद वो सुगंधी जल से, चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे. ये उनका पारिवारिक हक है. भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक होने के नाते उन्हें यह अधिकार प्राप्त है. यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु जगन्नाथ श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ चक्रराज सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता रथों पर विराजमान हो जाने के बाद, शंकराचार्य की नीति समापन होने के बाद गजपति महाराजा आते हैं. अभी अभी वो आए हैं. पहले दाऊ जी बलभद्र जी के रथ पर वो जाएंगे, फिर सुभद्रा जी के रथ पर और अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर जाकर वो अपनी सेवा प्रदान करेंगे. इस छेरा पहरा जो विशेष नीति है और जिसका अधिकार गजपति महाराजा को प्राप्त है, ये सदियों पहले गजपति कपिलेंद्र देव के समय से इस परंपरा का प्रारंभ हुआ था. तब से लेकर आज तक वही परंपरा चली आ रही है. पहले मंदिर के अंदर से जहां भगवान रथ पर आने के लिए निकलते हैं, पूरे रास्ते पर छेरा पहरा की नीति होती थी. परंतु एक समय ऐसा आया जब गजपति मुकुंद देव रुग्ण होने के कारण ये परंपरा सीमित कर दी गई और सिर्फ रथों पर छेरा पहरा की नीति का प्रारंभ हुआ और यही नीति आज तक चली आ रही है. फिर भी राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, प्रतीक है विनम्रता का, प्रतीक है समानता का. जहां अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर राजा स्वयं सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर होते हैं, सभी

चामर सेवा करेंगे। उसके बाद उनकी सेवा संपन्न होगी और फिर से वो पालकी में सवार होकर अपने राजमहल वापस आएंगे। इसमें अभी समय है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो यहां पुरी धाम जो ऐसा है, इसकी महिमा ऐसी है, यहां जो भी आए वो जगन्नाथ जी में अपने इष्ट का दर्शन कर पाए और अपने आप को धन्य मानने लगे। जैसे कि संत कबीर का जब श्री क्षेत्र पुरी में आगमन हुआ तो दूर से ही श्री मंदिर की चुड़ा पर, श्री मंदिर के शिखर पर नील चक्र और पतितपावन ध्वज को देखकर भावुक हो उठे, अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा, नील चक्र पर ध्वजा बिराजे, मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, गाए दास कबीरा। अब आप सोच रहे होंगे ठाकुर आगे दासी नाचे, इसका क्या अर्थ होता है? जगत के नाथ जगन्नाथ, उनके दरबार में पहले नृत्य हो रहा था, पारंपरिक ओडिसी नृत्य, जो देवदासियां होती थी जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में अर्पण कर दिया था, वो नृत्य करती थी। आज के जमाने में वो परंपरा अब रही नहीं, लेकिन कबीर जी ने वो जो दोहा कहा, नील चक्र पर ध्वजा बिराजे, मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, गाए दास कबीरा। उसी प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा का युग्म अवतार माना जाता है। 16वीं सदी के महान संत श्री चैतन्य अक्सर जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर नाचते थे, गाते थे। रथ यात्रा के समय वह अपने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर, जहां भगवान की रथ यात्रा पूरी होती है, उस मंदिर को साफ करते थे। इससे पता चलता है, हर काल कहा जाता है वो 15 दिन ऐसे होते हैं अपने भक्तों के लिए बहुत ही पीड़ादायी कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय पूरी आए हुए थे, उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन न पाकर विरह के दर्द में पूरी छोड़कर 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में जा पहुंचे और वहां चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनके मन को शांत किया। आज भी अनवसर काल में हजारों भक्त ब्रह्मगिरी जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के विष्णु रूप के दर्शन के लिए और वहां का प्रसिद्ध खीर का प्रसाद पाकर धन्य होते हैं। जब तुलसीदास जी पुरी आए थे, उन्हें लकड़ी से बनी जगन्नाथ जी के इस अधूरे रूप में अपने इष्ट यानी भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हुए, उन्हें भी दुख हुआ, उनके मन को भी ठेस पहुंची। तब भगवान ने उन्हें रात में सपने में दर्शन देकर अपनी महिमा बताई। फिर अगले दिन सुबह मंदिर में तुलसीदास जी को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता के भव्य दर्शन हुए। इसके अलावा भगवान राम के एक अन्य भक्त रघुदास को भी जगन्नाथ मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए थे। ऐसी दंत कथाएं बहुत हैं, हम कहने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई, जगन्नाथ के भक्तों से जुड़ी हुई कई ऐसी कथा हैं। एक कथा है दासिया बाउरी की, जो उस समय प्रचलित नीच जाति के थे, लेकिन जगन्नाथ जी के बहुत ही परम भक्त थे। उन्होंने सोचा, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ को श्रीफल देना चाहता हूं, तो ये कैसे दूं? भगवान ने अपना हाथ लंबाया और उनके हाथ से श्रीफल स्वीकार कर उसे भी धन्य किया। जब कांची अभियान की बात हुई, कांची के महाराजा से युद्ध हुआ उत्कल के गजपति महाराजा का, उसमें उत्कल के राजा की ओर से स्वयं भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र काले और सफेद घोड़े में सवार होकर युद्ध किया, कांची के महाराजा को परास्त किया और गजपति महाराजा को धन्य किया। ये
संक्षेप में,

0: ये कहानी है जगन्नाथ रथ यात्रा की। अब समय हो चला है आप लोगों से विदाई लेने का। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति कर रहे हैं, अभी सुभद्रा जी के रथ पर हैं। जैसा कि क्रम है, पहले सोने की मूठ वाली झाड़ू से वो साफ करते हैं और फिर सुवासित चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, फिर आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष पर वो सवार होंगे और उसी क्रम में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। रथ पर चढ़ने के लिए ताल के जो वृक्ष के लकड़ी होती है उससे बनी हुई एक विशेष प्रकार की जो सीढ़ी होती है उसे चारमाल कहते हैं। तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी सेवा पूरी कर ले, उसके बाद वो चारमाल निकाल लिए जाएंगे और अश्वों को बांधा जाएगा और उसके बाद सारथी को बिठाया जाएगा, फिर रथों को खींचने का काम शुरू होगा, जिसका समय 4 बजे निर्धारित किया गया था। और जैसा कि लग रहा है कुछ देर में है अभी ये प्रक्रिया पूरी होगी, तो वहां रथ को खींचने का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका आंखों देखा हाल हम आपको सुना नहीं पाएंगे, हम आपको कुछ ही देर में दिल्ली ले चलेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केंद्र द्वारा प्रस्तुत हुआ और श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का पुरी से सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप लोग सुन रहे थे। मुझे आशा है आप सभी को आनंद आया होगा, भगवान जगन्नाथ जी का आपको आशीर्वाद मिले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जय किशोर नागर जी, विनय कुमार सामंतराय जी, तकनीकी सहायता में मिहिर कुमार सामल और शंभुनाथ बेहरा थे। इसी के साथ मैं मोहन मजीठिया, मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से उनके साथ मिलकर आपके साथ ये जो समय बिताया इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए विदाई लेते हैं और अब आप लोगों को ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली को। जय श्री जगन्नाथ।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में।
2: You are listening to the live broadcast of the Rath Yatra being celebrated at Pavan Kshetra Puri, Odisha. Our commentators were Sri Mohanlal Majithia in Hindi and Professor Rajnikant Nayak in English. Originated by Akashvani Katak, this broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
3: डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
4: There is an urgent need for us.
5: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
4: 22% of the world population.
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न सिर्फ सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICARA के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी की कल शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा है कि उड़ान योजना के अगले चरण का उद्देश्य 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना और अगले 10 वर्ष में 4 करोड़ लोगों को यात्रा करने में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में आज उड़ान के अगले चरण पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संशोधित योजना में व्यवहार्यता अंतर्निधि के लिए पात्रता का विस्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 के मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्गिम के एडजबेस्टन में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से पराजित किया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer regional cooperation to tackle evolving security challenges amid global geopolitical conflicts. He said BIMSTEC member states need to work together and take decisive actions for the mutual benefit. He was speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today.
2: Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions to mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing.
1: Defence Minister Rajnath Singh has emphasized that the government's endeavour is to build an India where borders are not only secured but also the most connected. He said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. Mr. Singh was addressing the Border Road Organization BRO Tech Symposium in New Delhi. The Supreme Court today voiced concern over the introduction of a third language in Class 9 under the CBSE curriculum, observing it would increase the stress level of students. The Apex Court has suggested that it be introduced in Class 5 or Class 6 so that students can cope with it. Hearing another case, the Apex Court today directed all states and union territories to formulate and implement a comprehensive policy for the early or premature release of prisoners who are of advanced age or are terminally ill. The court ordered that the policy be framed and notified within 3 months to ensure a uniform mechanism for considering such cases across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. The launch marks a significant milestone in the country's transition towards clean and sustainable mobility in the railway sector. With the introduction

0: नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल. आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल. प्रस्तुत है आकाशवाणी का कार्यक्रम युववाणी. इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं मीरा.
1: और मैं हूँ अभिषेक. उम्मीद है आपका दिन शानदार बीत रहा होगा. आइए उसे थोड़ा और बेहतर बनाते हैं. जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज बात होगी आपकी, हमारी और उस युवा भारत की जो हर दिन कुछ नया सीख रहा है, कुछ नया बना रहा है, कुछ नया कर रहा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, खुद को बेहतर बना रहा है.
0: बिल्कुल. और हर गुरुवार की तरह आज का हमारा थीम भी युवाओं की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है. आज बात होगी स्पोर्ट्स की और साइबर सिक्योरिटी की. सुनने में शायद ये दोनों बातें अलग अलग लगें, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है.
1: एग्जैक्टली मीरा, मज़ेदार बात यह है कि आज का युवा लगभग हर दिन दो मैदानों में खेल रहा है, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड और दूसरा डिजिटल वर्ल्ड. मैदान में अगर आप अपना गार्ड नीचे करते हैं तो शायद मैच हार जाएंगे, लेकिन अगर डिजिटल वर्ल्ड में गार्ड नीचे हुआ तो गेम थोड़ा महंगा पड़ सकता है.
0: और अगर कोई खिलाड़ी बिना प्रैक्टिस किए सीधे मेडल जीतने की उम्मीद करे
1: तो फिर वही होगा जो OTP बताकर बैंक बैलेंस बढ़ने की उम्मीद करने से होता है. इम्पॉसिबल.
0: तो मतलब जीरो चांसेस.
1: एग्जैक्टली. और दोनों केसेस में डिसअपॉइंटमेंट गारंटेड है. लेकिन सीरियसली, लाइफ में कुछ चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ना फिटनेस का और ना ही सेफ्टी का.
0: बिल्कुल सही कहा अभिषेक. कई चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन आज के प्रोग्राम के बारे में मैं ज़रूर शॉर्टकट में बता सकती हूँ. आज की बात में हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स एंड साइबर सिक्योरिटी की इन क्विक बस. मन से माइक्रोफोन तक में हम जानेंगे DU एंड CUET एडमिशंस के बारे में प्रोफेसर आनंद सोनकर जी से, और सुनेंगे साइबर सिक्योरिटी फॉर यूथ माइंड्स श्री सार्थक शर्मा के.

और फाइनली फाइनली हम जानेंगे कि आज हिस्ट्री में क्या हुआ इन टुडे इन हिस्ट्री। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत इस गाने के साथ।

0: नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, और कभी-कभी अलार्म बंद करके फिर से सो गए। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी आसान बनाई है, लेकिन हर सुविधा अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लेकर आती है।
1: अभिषेक, मुझे हमेशा लगता है कि आज की दुनिया में दो पासवर्ड्स कभी वीक नहीं होने चाहिए। एक आपके मोबाइल का और दूसरा आपके कॉन्फिडेंस का। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी लीक हो गया तो मुश्किलें शुरू हो सकती हैं।
0: क्या बात कही मीरा, और शायद यही वजह है कि आज साइबर सिक्योरिटी सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर्स का विषय नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना टीचर्स, डॉक्टर्स, बिजनेस ओनर्स या फिर पेरेंट्स के लिए है।
1: एग्जैक्टली। और जानते हैं अभिषेक, स्कैमर्स की सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी नहीं होती, साइकोलॉजी होती है। ज़रा इमेजिन कीजिए, दोपहर का समय है, आप अपने ऑफिस में हैं या शायद कॉलेज के कैंटीन में हैं, फ़ोन बजता है, आप कॉल उठाते हैं और सामने से आवाज़ आती है, हेलो, मैं साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। बस यहीं से गेम शुरू होता है। ओटीपी बाद में मांगा जाता है, पहले आपका कॉन्फिडेंस चुराया जाता है और हाईजैक किया जाता है।
0: बिल्कुल सही, डर, घबराहट और जल्दबाजी इंसान से वो गलती करवा देती है जो वो सामान्य हालत में कभी नहीं करेगा। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है, अगर कभी ऐसा कोई कॉल आए तो घबराइए मत, रुकिए, सोचिए, वेरीफाई कीजिए और उसके बाद ही ट्रस्ट कीजिए।
1: बिल्कुल करेक्ट अभिषेक, स्कैम फोन में नहीं होता, स्कैम उस मोमेंट में होता है जब हम सोचना बंद कर देते हैं। और यू नो द फनी थिंग इज, स्कैमर्स आपका मोबाइल हैक करने से पहले आपका कॉन्फिडेंस हैक करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और यही बात स्पोर्ट्स भी हमें सिखाता है। हर खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले घंटों नहीं, सालों तैयारी करता है। मेडल सिर्फ पोडियम पर नहीं जीतते, वो तो सुबह 5 बजे की प्रैक्टिस में धीरे धीरे बनता है।
1: अभिषेक, तुमने वो लाइन सुनी है, एक्सरसाइज इज द मेडिटेशन ऑफ द बॉडी। स्पोर्ट्स आपकी बॉडी के साथ साथ आपका कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस दोनों को ही मजबूत कर देता है।
0: और साथ साथ आपके फोकस और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। स्टेडियम में हजारों लोगों की भीड़ होने के बावजूद खिलाड़ी का ध्यान सिर्फ अपने खेल पर होता है, उसके दिमाग में शोर नहीं चलता। चलती है तो सालों की प्रैक्टिस, प्रेशर हमेशा प्रिपरेशन के सामने हार जाता है। प्रिपरेशन बीट्स पैनिक, मैदान में भी और डिजिटल वर्ल्ड में भी। और हमारा अगला फोकस है वो सॉन्ग जो हमने आप सभी के लिए चुना है। गाने की बात करेंगे आज के मन से माइक्रोफोन तक की शख्सियत से मुलाकात, और अब सुनते हैं हमारा अगला सॉन्ग पानी दा रंग।

0: गाने से पहले जिस स्ट्रॉन्ग फोकस और कंसंट्रेशन की बात हम कर रहे थे, उसी की मिसाल चुनकर लाते हैं हम आपके लिए युववाणी के इस सेगमेंट में, जिसका नाम है मन से माइक्रोफोन तक। आइए जानते हैं मन से माइक्रोफोन तक के आज के एडिशन में हम आपकी मुलाकात किससे करवाने जा रहे हैं।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, हम जानते हैं कि आप सभी के बहुत से सवाल क्वेरीज होंगे, जिन्हें दूर करने के लिए हम आपको सुनवाएंगे प्रोफेसर आनंद सोंगकर, जॉइंट डीन एडमिशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिनसे बातचीत की है हमारी ही साथी राखी त्रिपाठी ने।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त राखी त्रिपाठी। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय जॉइंट डीन एडमिशंस प्रोफेसर आनंद सोनकर जी। सर, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद राखी जी।
2: आप ये जानते हैं कि सीट अलॉटमेंट के बाद बच्चों को आगे क्या करना है, इसे लेकर उनके मन में काफी सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन गलतियों से उन्हें बचना है, इस पर हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन कीजिए।
3: अक्सर फॉर्म भरने के बाद बच्चों के मन में यही कशमकश होती है कि हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर सीट मिलेगी तो क्या करना है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप वहाँ उस शेड्यूल को देखें, आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करें, वहाँ देखें, अगर आपको कोई सीट आवंटित की गई है तो आप उस सीट को एक्सेप्ट करें, वो आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद कॉलेज उसको प्रोसेस करेगा और आप फीस पेमेंट कर पाएंगे।
2: सर, कई बार ये प्रेफरेंसेस भरना ही बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, छात्रों को आप एक सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने सही कॉलेज का चयन कैसे करें?
3: देखिए राखी जी, ये भी अक्सर देखा गया है कि बच्चे इस कश्मकश में रह जाते हैं कि मैं कॉलेज को वरीयता दूं या प्रोग्राम को वरीयता दूं, और ये प्रश्न अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या करें। तो मेरा पर्सनली सुझाव यही रहता है कि आप प्रोग्राम को वरीयता दें, कॉलेज को नहीं, क्योंकि कई बार आप अच्छे कॉलेज को पाने की चक्कर में एक ऐसे प्रोग्राम में दाखिला ले लेते हैं जिसमें बाद में आप पढ़ ही नहीं पाते। 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 सेमेस्टर के बाद आपको लगता है कि मैं तो ये प्रोग्राम कर ही नहीं सकता, उस समय आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अभी समय है, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जिन प्रोग्राम्स को आप मन से करना चाहते हैं उनको ऊपर रखें, पहले क्रमवर लगाएं, 1, 2, 3 प्रेफरेंस में लगाएं, और जो प्रोग्राम जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उनको आप नीचे रख सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट हमारी लोअर से हायर की तरफ चलेगी।
2: एक सर, जो हमारे श्रोता दोस्तों को दिक्कतें आ सकती हैं, कई बार बच्चों की ये समस्या होती है कि जैसे उन्होंने अपना 8th प्रेफरेंस इस बार पहली सीट अलॉटमेंट में उन्हें मिला है, और वो चाहते हैं कि अब सीट अलॉटमेंट 8th वाली मिलने के बाद वो 16वें प्रेफरेंस को पाना चाहते हैं। ऐसी समस्या में कई बार बच्चों से गड़बड़ी हो जाती है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरने में ही, चाहे आप उन्हें समय भी देते हैं बदलने का। इस तरह की दिक्कतों में मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो इन दिक्कतों में ना फंसे।
3: देखिए, जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं उसको सेव कर देते हैं, तो आपने जिस ऑर्डर में प्रेफरेंस बनाई है वो आप चेंज नहीं कर

0: सकते हैं पहली और दूसरी लिस्ट के एलोकेशन तक। तो अगर आपको, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया, आपको 16वीं प्रेफरेंस मिल गई है, तो आपको 16वीं से ऊपर ही जाना पड़ेगा, आप नीचे नहीं जा सकते। तो ये ध्यान आपको रखना है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को सेव करते हुए। अगर आपको पहली दूसरी लिस्ट में कोई एलोकेशन नहीं मिलती है, तो आप मिड एंट्री विंडो में जब फॉर्म दोबारा खुलेगा तो आप प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करें, लेकिन ध्यान से करें, जान के करें और सेव करना ना भूलें।
1: सर, सीट अलॉटमेंट लिस्ट बनाने की SOP क्या होती है? लिस्ट तैयार कैसे किया जाता है और किन
0: देखिए,
1: बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है?
0: इसमें काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखिए आप कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं, फिर आप ये देखिए किस किस कॉलेज में वो प्रोग्राम अवेलेबल है। ये सारी डिटेल दिल्ली यूनिवर्सिटी में दी गई है कि किस कॉलेज के किस प्रोग्राम में किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, जिसको हम सीट मैट्रिक्स कहते हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की साइट पे जाएं और देखिए, वहाँ पे ये सारा ब्यौरा दिया गया है। उसको देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे स्कोर क्या हैं, और अगर आप पिछले वर्षों के स्कोर भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ऑल्दो उनसे कोई खास आपको शायद फ़ायदा ना हो, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा बहुत अनुमान मिल जाएगा कि लास्ट ईयर इस प्रोग्राम में इतने नंबर तक दाखिला हुआ था। उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस बनाएं। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको कैंपस नहीं मिल रहा तो आप ऑफ कैंपस में पढ़िए, पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पढ़िए।
1: सर, इसका मतलब ये है कि हमारे CUET के नंबर ही तय करते हैं कि हमें कौन सी प्रेफरेंस और कौन सा कॉलेज मिलने वाला है।
0: बिल्कुल सही राखी जी।
1: सर, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कोटे में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए क्या सिर्फ उपलब्धियां और ट्रायल ही मायने रखता है या CUET के मार्क्स भी? इसे थोड़ी आसान भाषा में समझाइए।
0: राखी जी, ऐसा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके कई रास्ते हैं। एक, जैसे कि आपने अभी हमने से डिस्कस किया कि CUET स्कोर के माध्यम से, दूसरा स्पोर्ट्स और ECA। स्पोर्ट्स और ECA में काफ़ी चीज़ें इसमें हमारे को एक साथ लेनी होती हैं। जैसे पहला है CUET स्कोर, उसके बाद है आपने जो जो भी सीखा है, अगर ECA है तो किसी गुरु के साथ अध्ययन किया है, स्पोर्ट्स है तो किसी कंपटीशन में भाग लिया है, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने पंजीकरण के समय दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ज़रूर अपलोड कर दिए होंगे। उनका आकलन किया जाएगा, उनका एक ग्रेडिंग का तरीका है, उनको मार्क्स दिए जाएंगे और एक आपका स्कोर वो बनेगा। फिर आपको ट्रायल में अपीयर होना है, फिर आपके ट्रायल का एक स्कोर बनेगा। तो आपके तीन स्कोर्स आ जाएंगे, एक CUET का स्कोर है, एक सर्टिफिकेट का स्कोर है और एक ट्रायल का स्कोर है। इन तीनों स्कोर्स को जोड़ा जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो तीनों की अपनी अपनी एक अहम भूमिका है। CUET स्कोर भी इम्पॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट है और ट्रायल तो सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
1: एक सबसे ज़रूरी सवाल और है कि पहले फीमेल्स को रेगुलर कोर्स एडमिशन की कट ऑफ लिस्ट में रिलैक्सेशन दिया जाता था, पर शायद हाल के कुछ वर्षों में इसे बंद कर दिया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये सुविधा अभी जारी है या फिर इसे बंद कर दिया गया है?
0: जो सवाल आप पूछ रहे हैं राखी जी, वो उस समय होता था जब हम कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर किया करते थे। जो कोएड कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ अलग होती थी, और जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ 1 या 2% नीचे रखी जाती थी, जिससे हम ज़्यादा अपनी जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको एनरोलमेंट बढ़ा सकें। पर CUET आने के बाद ये चलन अब ख़त्म हो गया है, अब कट ऑफ नहीं आती है। आप CUET का एग्ज़ाम देते हैं, उसका स्कोर आता है, आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं और आपका एलोकेशन स्कोर के हिसाब से होता है। तो ऐसा मौका अब नहीं
1: अब
0: रहा,
1: फीमेल्स के पास नहीं रहा।
0: लेकिन फिर भी फीमेल्स के लिए हमारे पास जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के लिए हैं, कैंपस में कॉलेजेस हैं, जैसे मिरांडा हाउस है, दौलत राम है, IP कॉलेज है, और ऑफ कैंपस में भी आपको बहुत से कॉलेजेस मिलेंगे, गार्गी कॉलेज है, मैत्री कॉलेज है। ये कॉलेजेस एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज़ तो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर सकते।
1: सर, पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि टॉपर स्टूडेंट्स की पहली पसंद आर्ट्स और कॉमर्स बन रही है। क्या आपने DU में BA, BSc, BCom एडमिशन्स के दौरान ऐसा कोई रुझान देखा है?
0: काफ़ी वर्षों से ये देखने को मिल रहा है कि बच्चों की ज़्यादा पसंद ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के प्रोग्राम्स बन रहे हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो पता लगता है कि ये वो अपने जॉब ओरिएंटेशन के हिसाब से कर रहे हैं। उनको लगता है कि BCom ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके काफ़ी जल्दी उनको जॉब प्लेसमेंट मिल जाता है, और साइंस में ये रास्ता थोड़ा लंबा है।
1: सर, क्या नई शिक्षा नीति के तहत जो नए कोर्स शुरू किए गए हैं उनमें दाखिला लेने को लेकर छात्रों की रुचि आप किस तरह से देख रहे हैं?
0: जो नई शिक्षा नीति है हमारी, जिसको हम NEP 2020 कहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी उसको इम्प्लीमेंट किया है। हमने उसको वर्ष 2022 में इम्प्लीमेंट किया UGCF के अंतर्गत। इसमें सारे प्रोग्राम्स अब 4 साल तक बच्चा पढ़ सकता है। पहले जो ग्रेजुएशन 3 साल में हो जाती थी, अब उसके पास 4 साल का मौका है। पर इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि बच्चा अगर चाहे तो 1 साल के बाद भी छोड़ सकता है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद छोड़ेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद छोड़ेगा तो डिग्री मिलेगी, और 4 साल के बाद

0: डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ फैमिली कंडीशंस के चलते उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, कोई जॉब लेनी पड़ती है, तो अब ये मौका है, आप 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कुछ समय जॉब कर सकते हैं और फिर आप वापस आके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले इस तरह का मौका नहीं था।
1: सर, एडमिशन लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या जो हमारे छात्र हैं वो इस तरह जो नए कोर्सेज शुरू हुए हैं इनमें रुचि ले रहे हैं?
0: अगर आप हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखें तो हाँ, हमें काफ़ी जो हमारा एनरोलमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया है। 4 ईयर का तो पहला बैच ही अभी इस साल निकला है, अब आने वाले वर्षों में देखेंगे हम ये नंबर बढ़ता हुआ।
1: सर, एक सवाल हमारे बाहरी राज्यों से आने वाले बच्चों के लिए, कुछ स्टेट कॉलेजेस में ये अपने ही स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्वेशन होता है, क्या डीयू में भी ऐसा कुछ है? क्योंकि डीयू में तो देश भर से बच्चे आकर पढ़ना चाहते हैं।
0: ये सवाल भी अक्सर हमसे पूछा जाता है राखी जी कि क्या दिल्ली में जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनको कोई फ़ायदा मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सो हमारे लिए भारतवर्ष के किसी भी कोने से जो भी छात्र आता है वो सब एक समान है। ऐसी किसी को कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है। आप CUET में अपीयर हों और उसके स्कोर से आपका दाखिला होगा।
1: जाते जाते सर, आपका एक छोटा सा मैसेज हमारे उन दोस्तों के लिए जो कल अपनी पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट में अपना नाम देखने वाले हैं।
0: मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अपना शाम को डैशबोर्ड पे लॉगिन करें, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो CSAS पोर्टल है जिसको हम कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम बोलते हैं, उस पर आप लॉगिन करें, डैशबोर्ड पे सीट देखें। अगर आपको सीट मिली है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, कॉलेजेस आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव करेगा, आप वहाँ पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद आपको वहाँ 2 बटन दिखाई देंगे, फ्रीज और अपग्रेड। अगर आपको पहली प्रेफरेंस नहीं मिली है, आपको कोई नीचे की प्रेफरेंस मिली है, तो आप अपग्रेड का बटन दबाएं। अगर आप हायर प्रेफरेंस के इच्छुक हैं, अगर आप जो आपको एलोकेशन हुआ है उससे संतुष्ट हैं, तो आप फ्रीज का बटन दबा सकते हैं। फ्रीज का बटन दबाने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, आपने अगर एक बार फ्रीज कर दिया तो फिर आप ऊपर नहीं जा पाएंगे।
1: थैंक यू सो मच सर फॉर दिस फ्रूटफुल सेशन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी।
2: दोस्तों, आप सुन रहे थे आनंद सोनकर जी को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व हो गए होंगे।
3: दोस्तों, जब भी हैकर शब्द सुनाई देता है तो अक्सर दिमाग में साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड या डेटा थेफ्ट जैसी बातें आने लगती हैं। लेकिन हर हैकर अपराधी नहीं होता। कुछ लोग उसी हुनर का इस्तेमाल लोगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं यंग प्रोफेशनल इन साइबर सिक्योरिटी सार्थक शर्मा, जिनसे बात की है हमारे साथी विजेंद्र ने, इन साइबर सिक्योरिटी फॉर यंग माइंड्स।
4: श्रोताओं, आपके पसंदीदा सेगमेंट मन से माइक्रोफोन में आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी यूथ प्रोफेशनल सार्थक शर्मा जी से। सार्थक जी, नमस्कार।
5: नमस्कार विजेंद्र जी।
4: सार्थक जी, सबसे पहला सवाल तो ये, एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आम आदमी के लिए साइबर सिक्योरिटी का अर्थ क्या है?
5: साइबर सिक्योरिटी एक शब्द समझने से पहले हम शब्द का विभाजन कर लेते हैं। साइबर और सिक्योरिटी दो शब्द आते हैं। कुछ भी चीज़ जो हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो हमारी नेटवर्क से रिलेटेड है, लाइक हमारा जो सोशल मीडिया है वो भी साइबर के अंदर आता है। साइबर हमारा ये सब चीज़ों से मिला के बनता है। धीरे धीरे बढ़ते टाइम के साथ जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, उसमें हमारा डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, हमारा डेटा भी बढ़ रहा है, हमारा उस डेटा का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ओवरऑल हमारा साइबर का जो पार्ट है हमारी ज़िंदगी के अंदर, चाहे हम एक इंडिविजुअल की बात करें, चाहे हम एज अ कंपनी बात करें, तो वो चीज़ें हमारी धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। अब हम इन दोनों शब्दों को इकट्ठा मिलाएं तो बनता है साइबर सिक्योरिटी, जो कि हो गया आपका डिजिटल स्पेस, या जो डिजिटल आपका वर्ल्ड है, जो डिजिटल आपका नेटवर्क है, जो आपके कंप्यूटर्स हैं, जो आपके मोबाइल फोन्स हैं, उनकी सुरक्षा।
4: डेटा आपके नजरिए में क्या है, डेटा एनालिसिस क्या है, और डेटा चोरी करना क्या होता है?
5: डेटा आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका एक नाम हो गया वो भी एक डेटा है, आपका मोबाइल नंबर हो गया वो भी एक डेटा है
4: जी,
5: आपका जन्म तिथि हो गई यानी डेट ऑफ बर्थ वो भी एक डेटा है
4: जी।
5: आज की डेट में सभी चीजें एक डेटा है। डेटा क्या होता है? डेटा आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपके पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ट्रैवलिंग
4: जी
5: से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड चीज़ों पे जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है वो डेटा है। और जो डेटा होती है वो बहुत ही ज़्यादा रॉ फॉर्म में होती है। अब आप मान लीजिए आप किसी संस्था में काम करते हैं, संस्था में 100 लोग आपके साथ काम करते हैं जो आपके सहकर्मी हो गए, उन सब की भी जो डिटेल्स होगी, उनके मोबाइल नंबर हो गए, उनकी जन्म तिथि हो गई, उनके नाम हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेटा के अंदर आती हैं।

0: अब इस टॉपिक पे आते हैं कि डेटा एनालिसिस क्या होगा।
1: जी हमें
0: अब
1: बताइए।
0: आप मान लीजिए जो हमने संस्था वाला उदाहरण लिया है उस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे करते हैं। हम बोलते हैं कि आपके संस्था में सार्थक नाम का कोई व्यक्ति काम करता है या नहीं, या कभी आपके स्टूडियो में आपके ऑफिस में सार्थक नाम का व्यक्ति आया है या नहीं। आपके लिए ये चीज़ पता करनी कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होगी, आपके पास किसी प्रकार की का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो इसी चीज़ का एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव होता है कि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज़ करें। जब हम अपने डेटा को जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में यूटिलाइज़ करते हैं, तो उस चीज़ को हम डेटा एनालिसिस कहते हैं।
1: तो सार्थक जी, जैसे आपने डेटा एनालिसिस बताया, आप हमें ये भी बताइए कि आम आदमी के लिए डेटा चोरी करना क्या है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है।
0: विजेंद्र जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेटा जो है हमारा आजकल डिजिटल वर्ल्ड में स्टोर हो रहा है। आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई, आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन हो गई, बैंकिंग के पासवर्ड्स हो गए। तो अब आप ये समझिए, पहले चोरी क्या होती थी? पहले चोरी ये होती थी कि आपके पास लॉकर में हार्ड कैश या नोटों के फॉर्म में रुपये रखे रहते थे। उसके बाद कोई चोर आपके घर में घुसता था, वो लॉकर तोड़ता था और फिर वो पैसे चुरा के ले जाता था। इसको हम चोरी बोलते हैं। अब यही चीज़ डिजिटल वर्ल्ड में हो रही है। डिजिटल वर्ल्ड में एक सर्वर है जो कि आपकी तिजोरी की तरह है, जिसके अंदर आपका महत्वपूर्ण डेटा पड़ा है। आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, वो सारी चीज़ें आपकी डिजिटल सेफ में पड़ी है। सेफ अगर डिजिटल है तो चोर को भी डिजिटल ही आना पड़ेगा। जो चोर होता है वो डिजिटल ही आपकी जो सेफ होती है उसको तोड़ता है विभिन्न प्रकारों से, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन का आपका अटैक हो गया या और विभिन्न प्रकार के अटैक्स हो गए, ट्रोजन हॉर्सेस हो गए जैसे। तो इन सब चीज़ों को कवर करते हुए चोर जो है, जो साइबर सिक्योरिटी का जिसको हम हैकर बोलते हैं, तो
1: जी
0: वो आपके सिस्टम को, आपकी डिजिटल वर्ल्ड को तोड़ता है, इन्वेड करता है और उसमें पड़ा जो डेटा होता है, उसमें पड़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लेकर वहाँ से गायब हो जाता है या चला जाता है आप कह लीजिए।
1: चोर बड़े ही शातिर हो गए। तो इस पर आप हमें कुछ टिप्स दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए भी कि कैसे बचाव किया जा सकता है सर।
0: सबसे पहली चीज़, अपने पासवर्ड को बिल्कुल सरल ना रखें। अपने पासवर्ड जितना मुश्किल हो सके उतना मुश्किल रखें। उसके पश्चात टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें दो स्टेप्स में आप किसी भी चीज़ के लिए ऑथेंटिकेट होते हो। आप ऐसे समझिए कि आपके पास दो दरवाजे हो गए सेफ से पहुंचने से पहले।
1: जी
0: एक आपका पासवर्ड हो गया और एक जनरली ओटीपी रहता है। कोई भी अगर आपसे ये बोलता है कि मैं बैंक से फ़ोन कर रहा हूँ और मेरे को ओटीपी बता दीजिए, तो आप डायरेक्ट ओटीपी ना बता के उस चीज़ की पुष्टि करें। हमें अपना ओटीपी किसी को बताना ही नहीं चाहिए।
1: जी
0: अननोन यूज़र से आपके पास कोई भी अगर लिंक आए तो आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लिंक किसने भेजा है और किस अंदेशे से भेजा है।
1: जी ये तो बहुत कॉमन है। आजकल बहुत लोग हैं जो अनचाहे लिंक को क्लिक कर लेते हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है।
0: हाँ
1: ये
0: जी,
1: आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है।
0: तो यही कुछ अपने अब जागरूकता के पैमाने हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को काफ़ी हद तक साइबर की दुनिया में, साइबर की इस ये जो हमारा एक नेटवर्क है उसके अंदर अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे।
1: श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे सार्थक। उन्होंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे हम खुद को अवेयर कर सकते हैं और दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं और इससे बचाव कर सकते हैं। सार्थक जी, आपके बहुमूल्य समय का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
2: दोस्तों, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान उसे सही या गलत बनाता है, और शायद आज की कहानी की सबसे बड़ी सीख भी यही है।
3: और अभिषेक, यही एक ऐसा पासवर्ड है जो कभी हैक नहीं होता। चलिए इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं हमारा अगला गाना।

0: अब वक्त आ गया है हमारे कार्यक्रम के सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट का, क्विक बज। आज हम शुरुआत करेंगे स्पोर्ट्स से।
1: फुटबॉल की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल काफी ज्यादा रोमांचक रहा, जहां स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। वहीं आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला गया और अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-0 से हराया। और इसी के साथ सबकी नज़रें टिकी हुई हैं वर्ल्ड कप फाइनल की ओर, जो कि होगा 20 जुलाई सोमवार को।
0: क्रिकेट फैंस के लिए भी एक्साइटिंग अपडेट है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने जीत लिया है और सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 5:30 PM IST हमारे शो के बाद शुरू होगा। देखना होगा कि टीम इंडिया अपनी बढ़त बरकरार रख पाती है या इंग्लैंड वापसी करती है।
1: टेनिस में विंबलडन 2026 का सफर भी यादगार रहा। यानिक सिनर ने अपना जेंटलमैन सिंगल्स टाइटल सफलतापूर्वक डिफेंड किया, जबकि लिंडा नोस्कोवा ने पहली बार लेडीज सिंगल्स चैंपियनशिप जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम किया।
0: और अभिषेक, अब सबकी नज़रें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पर हैं, जो 23 जुलाई से ग्लासगो में शुरू होने वाला है। दुनिया भर के एथलीट्स तैयार हैं और इस बार भारतीय कंटिजेंट से भी काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी फील्ड की जो आज के डिजिटल ज़माने की असली सुपर हीरो बन चुका है, साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे हम ऑनलाइन होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं और इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है।
1: इंडिया में इस वक्त लगभग 39,000 साइबर सिक्योरिटी पोजीशंस अभी भी खाली हैं, खासकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन जैसे नए और एक्साइटिंग एरियाज में। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं ना, तो ये फील्ड अपॉर्चुनिटी से भरी हुई हैं।
0: नए डिजिटल रेगुलेशंस और बढ़ते साइबर अटैक्स की वजह से हर कंपनी को स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। AI जरूर मदद कर सकता है, लेकिन स्मार्ट ह्यूमन एक्सपर्ट्स की जगह अभी भी कोई नहीं ले सकता। साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्विक थिंकिंग और क्रिएटिविटी सबकी जरूरत पड़ती है।
1: तो अगर कोडिंग, टेक्नोलॉजी या डिजिटल वर्ल्ड आपको पसंद है, तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा करियर हो सकता है जहां लर्निंग भी है और ग्रोथ भी, और देश के डिजिटल फ्यूचर को सिक्योर रखने का मौका भी। शायद अगला साइबर हीरो आप में से ही कोई एक हो।
0: अभिषेक, साइबर सिक्योरिटी का तो पता नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि मुझे अगले कुछ मिनट में कौन सा गाना लॉक करना है। तो आइए सुनते हैं क्विंटेसेंशियल फुटबॉल सॉन्ग वाका वाका।

0: आज ही है 16 जुलाई और इस दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। साल 1929 में आज ही के दिन ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना हुई, जिसने भारतीय कृषि अनुसंधान को नई दिशा दी।
1: आज ही के दिन 1917 में प्रसिद्ध साहित्यकार और नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य रंगमंच और आकाशवाणी के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। और 16 जुलाई 1972 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया, जिसने आगे चलकर भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का मार्ग प्रशस्त किया।
0: और इसी दिन 1909 में स्वतंत्रता सेनानी अरुणा असफ अली का जन्म हुआ, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में उनके साहसिक योगदान के लिए याद किया जाता है। टुडे इन हिस्ट्री में आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आज हमने स्पोर्ट्स की बात की, साइबर सिक्योरिटी की बात की, एक ऐसे युवा की कहानी सुनी जिसने टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी के साथ समाज की सेवा का माध्यम बनाया। और शायद हर कहानी हमें एक ही बात सिखा रही है, तैयारी, जागरूकता और विश्वास।
1: मीरा, अगर मैं बताऊं तो आज की पूरी बातचीत में से मुझे बस दो ही बात याद रह जाती हैं। मैदान में चैंपियन वही बनता है जो चांस पर नहीं बल्कि मेहनत और प्रैक्टिस पर भरोसा रखता है, और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित वही रहता है जो अवेयरनेस पर भरोसा रखता है।
0: और याद रखिए, डर हमेशा जल्दबाजी पैदा करता है, जबकि जानकारी सही फैसला।
1: बिल्कुल सही कहा मीरा। और दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी बात। आज हमने साइबर सेफ्टी की बात की, स्पोर्ट्स की बात की, लेकिन असल जीत तभी है जब हम अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं। और याद रखिएगा, जाते जाते दो पासवर्ड्स जरूर चेक कर लीजिए, एक अगर वीक है तो मोबाइल वाला, और दूसरा अगर कमजोर पड़ रहा है तो अपना कॉन्फिडेंस।
0: क्योंकि अभिषेक, ये वही पासवर्ड होते हैं जो आपको हर मैदान में हर चुनौती का सामना मजबूत बनाए रखेगा। और शायद यही एक पासवर्ड है जो जितना शेयर करेंगे उतना और मजबूत होगा।
1: इसी खूबसूरत सोच के साथ हमें दीजिए अनुमति, कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय, एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का, और खास करके अपनी डिजिटल सुरक्षा का भी ध्यान रखिए।
0: मैं मीरा,
1: और मैं अभिषेक आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति VB नागरत्ना और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। यह टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने बताया कि उन्होंने सतत विमानन ईंधन को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ अर्थात जमीन से सीधे उड़ान और लैंडिंग के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में चर्चा की। विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। M1 श्रेणी के अंतर्गत वे मोटर वाहन आते हैं जो यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और जिनमें ड्राइवर के अलावा 8 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता नहीं होती है। मंत्रालय ने 6 अगस्त तक इस मसौदा मानदंडों पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इस खंड पर ये अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। भारतीय नौसेना 20 से 23 जुलाई तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 की मेजबानी करेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 4 दिवसीय बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाला संयुक्त कार्यबल 154 संयुक्त समुद्री बलों CMF के साथ मिलकर कर रहा है। यूक्रेन की संसद ने आज एक बड़े सरकारी फेरबदल में सर्ही कोरित्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कोरित्स्की को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। कोरित्स्की मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा विस्तृत अनुष्ठानों और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साई मुजतबा। National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer regional cooperation to tackle evolving security challenges amid global geopolitical conflicts. He said BIMSTEC member states need to work together and take decisive actions for their mutual benefit. He was speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today. Mr. Doval said BIMSTEC member nations have significantly advanced cooperation in combating terrorism, transnational organized crime, cyber threats, and maritime security challenges. He added that BIMSTEC countries are poised to combat new and emerging threats together. Supreme Court today voiced concern over the introduction of a third language in Class 9 under the CBSE curriculum, observing it would increase the stress level of students. The Apex Court has suggested that it be introduced in Class 5 or 6 so that students can cope with it. Hearing another case, the Apex Court today directed all states and union territories to formulate and implement a comprehensive policy for the early or premature release of prisoners who are of advanced age or are terminally ill. The court ordered that the policy be framed and notified within 3 months to ensure a uniform mechanism for considering such cases across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. The launch marks a significant milestone in the country's transition towards clean and sustainable mobility in the railway sector. In Odisha, the world-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath is being celebrated today amidst elaborate rituals and unprecedented security arrangements. Despite incessant rain since morning, lakhs of devotees have remained undeterred, witnessing the sacred spectacle along the Baradanda. The ceremonial Mahani BJ has concluded with Lord Jagannath, Lord Balbhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan being ceremonially escorted to their respective chariots amid reverberating chants of Jai Jagannath. President Draupadi Murmu today prayed to Mahaprabhu Jagannath to provide protection to the country and the entire world. In an article written on the occasion of Rath Yatra, the president recalled her childhood days when she used to sing the bhajans of Mahaprabhu and felt happy. President Murmu said Mahaprabhu is the protector of the universe and the savior of those forsaken by everyone. She added that he is always there to alleviate the sorrows of the people of the entire world. Prime Minister Narendra Modi today extended greetings to the Kachhi community on the occasion of Ashadhi Beej, the Kachhi New Year. In a social media post, Mr. Modi invoked a traditional Kachhi song and said that wherever a

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं लोक रंजनी कार्यक्रम लेकर के।
1: बिल्कुल अतुल भाई। और देखिए, कहते हैं ना, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, कोई जुबान नहीं होती, संगीत दिलों में बसता है, जैसे कि लोक संगीत।
0: बिल्कुल
1: और भाई, भावों से उत्पन्न होता है, मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, उसी को अगर हम शब्दों में पिरो दें तो वो हमारा प्यारा सा बन जाता है लोकगीत।
0: लोगे
1: तो आइए, अपने इस प्यारे से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुनीता पांचाल के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

0: देखिए अतुल भाई, इस लोकगीत में देखिए घूमने की और भाई सैर करने की और खाने पीने की, देखिए सारी बातें, देखिए मन के जो भाव हैं ना
1: वो प्रकट हुए
0: वो
1: हैं।
0: प्रकट हो जाते हैं। और भाई इसी तरीके से लोकगीतों का कहीं ना कहीं जन्म होता है और इतने ही प्यारे लोकगीत हम लेकर आते हैं अपने सभी श्रोताओं के
1: बिल्कुल,
0: लिए।
1: तो सुनवाते हैं रचना शर्मा की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत, हमरा गुलाबी दुपट्टा हमें तो लग जाएगी नजरिया।

गोपाल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे रचना शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत, और अब सुनवाते हैं अपने भाइयों को कोमल चौधरी से ये प्यारा सा लोकगीत।

0: तो अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे कोमल चौधरी उर्फ कनिका की आवाज़ में ये लोकगीत मेरी सासू करे बढ़ाई रे। तो भाई भावों की बात चल रही थी और लोकगीतों की बात चल रही थी, भाई लोकगीत भी अपने आप में एक दर्पण है और ऐसा ही, क्योंकि हर भाव हर रंग बिखेरते हुए ये लोकगीत हमें मिलते हैं, तो ऐसा ही एक लोकगीत हम सुनवाते हैं महेंद्र शर्मा की आवाज़ में अपने सभी बहन भाइयों को।
1: बिल्कुल, हरी भरी रहे धरती।

0: तो अतुल भाई, महेंद्र शर्मा के इस प्यारे से लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये लोक रंजनी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर एक बार हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं विजेता चतुर्वेदी और मेरे साथ है मेरे साथी
3: धर्मेंद्र।
2: जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे खेलों की। सबसे पहले बात करेंगे हम फीफा 2026 की, जो रोमांच जो है चरम पर आ चुका है और अब लोगों को इंतजार है फाइनल मैच का। और आज क्या कुछ होने वाला है फीफा में, ये भी जानने के लिए हमारे श्रोता उत्सुक होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चल रहे सेकेंड ODI मैच की, मैदान पर क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आज जानेंगे जूडो और स्विमिंग के बारे में और कैसा रहा है इतिहास इस खेल का हमारे भारत के नज़रिए से, इसके भी इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और जापान ओपन बैडमिंटन में क्या कुछ हो रहा है, साथ ही साथ एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जकार्ता में क्या कुछ हमारे हाथ लगा है इस पर भी होगी चर्चा। और आइए अब सबसे पहले हम चलते हैं फीफा की तरफ और जानते हैं वहां पर क्या कुछ हो रहा है।

0: कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।
1: कुछ ऐसी ही कहानी रही अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेले गए फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की। अटलांटा में खेले गए मैच के 85वें मिनट तक सब कुछ इंग्लैंड के पक्ष में दिख रहा था। टीम एक गोल से आगे भी थी और विरोधी टीम पर लगातार दबाव भी बना रही थी। फाइनल में जगह बनाने की तैयारी भी पूरी थी, लेकिन अंतिम 7 मिनट में सब कुछ पलट गया। पहले अर्जेंटीना की टीम को 86वें मिनट में शॉर्ट कॉर्नर मिला। कप्तान लियोनेल मेसी ने शॉर्ट कॉर्नर लिया और गेंद एंजो फर्नांडिस की तरफ बढ़ाई। फर्नांडिस ने करीब 25 गज की दूरी से दंदनता शॉट लगाया और गेंद इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति के साथ साथ गोलकीपर को चीरती हुई सीधे नेट में जा समाई। गोल भले ही मेसी के जरिए नहीं आया, लेकिन उनके बेहतरीन पास पर हुए इस गोल के साथ स्कोर 1-1 हो गया। इस गोल ने वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना के खेमे में जैसे नई जान फूंक दी और इंग्लैंड के हौसले को पस्त कर दिया। गोल का स्वाद चखने के बाद अर्जेंटीना का खेल और ज्यादा आक्रामक हो गया। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी इंजरी टाइम के 90+2 मिनट में मेसी ने फिर कमाल कर दिखाया। इस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक गोल करने वाले इस खिलाड़ी ने दाईं ओर से गेंद को सटीक निशाने पर बॉक्स में भेजा। सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर लोटेरो मार्टिनेज जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। वे तीर की गति से इंग्लैंड के डिफेंडरों से आगे निकले और सटीक हेडर के जरिए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया।

0: one's on target. This one's an absolute beauty.
1: इस तरह कप्तान मेसी के जादुई खेल से अर्जेंटीना ने 5 मिनट के भीतर मैच पलटते हुए 2-1 की बढ़त बना ली। इसके बाद इंग्लैंड के लिए वापसी के तमाम दरवाजे लगभग बंद हो गए। टीम ने बराबरी के लिए तमाम जद्दोजहद की, लेकिन अर्जेंटीना की डिफेंस ने उनकी एक नहीं चलने दी। हालांकि मैच की शुरुआत इंग्लैंड के लिए ज्यादा बेहतर रही थी। इस सेमीफाइनल मैच की शुरुआत से पहले ही ये साफ हो गया था कि मुकाबला सिर्फ फुटबॉल का नहीं, माइंड का भी होगा। इसी का परिणाम था कि मैच के 3rd ही मिनट में इंग्लैंड के इलियट एंडरसन पर टैकल के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने आ गए। रेफरी को बीच बचाव करना पड़ा। पहले हाफ में कोई गोल तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ी कई बार भिड़े और फाउल की भरमार रही। मैच के 33वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला मौका आया जब डेक्लन राइस की फ्री किक पर जॉन स्टोन्स ने हेडर लगाया। ये अलग बात है कि तब गेंद नेट में लगकर बाहर चली गई। इसके बाद 37वें मिनट में लियोनेल मेसी आगे बढ़े, लेकिन इलियट एंडरसन ने उन्हें रोकने के लिए फाउल किया। इस पर एंडरसन को येलो कार्ड मिला। एक बार फिर आक्रमण की बारी थी अर्जेंटीना की। इस बार जब एंजो फर्नांडेज ने 38वें मिनट में बॉक्स के बाहर से शॉट लगाया तो गेंद इंग्लैंड के गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई। रफ खेल जारी रहा। 42वें मिनट में जूड बेलिंगम की जर्सी खींचने पर अर्जेंटीना के लिसांड्रो मार्टिनेज को भी कार्ड दिखाया गया। हाफ टाइम तक मैच बिना किसी गोल की बराबरी पर था। हालांकि हाफ टाइम की सीटी के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ी रेफरी से बहस करते रहे। ब्रेक के बाद अर्जेंटीना ने तेज शुरुआत की। जूलियन अल्वारेज ने 48वें मिनट में पहला ऑन टारगेट शॉट लगाया, जिसे जॉर्डन पिकफोर्ड ने शानदार तरीके से रोक दिया। मैच का पहला गोल इंग्लैंड की तरफ से 55वें मिनट में आया। हैरी केन के लंबे पास पर अर्जेंटीना का डिफेंस पूरी तरह क्लियरेंस नहीं कर सका, जिसके बाद डेक्लन राइस ने गेंद मॉर्गन रोजर्स को दी। रोजर्स ने दाईं ओर से सटीक क्रॉस डाला, जिस पर एंथनी गार्डन ने बॉक्स से आसान फिनिश किया।
0: Rogers is cross. Gordon coming in. Anthony Gordon. Right place.
1: ये टूर्नामेंट में गार्डन का पहला गोल था और इंग्लैंड 1-0 से आगे हो गया। हालांकि ये गोल खाने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ी जैसे नींद से जागे और अटैकिंग गेम खेलना शुरू कर दिया। यह अलग बात है कि उन्हें पहले गोल के लिए मैच के 85वें मिनट तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक बार जो बढ़त बनाई तो फिर मुड़कर नहीं देखा।
0: 12th added minute and Argentina, the world champions, are going to the 2026 final. Messi inspired the comeback.
1: इस जीत से डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। खिताब के लिए 19 जुलाई को उसकी टक्कर अब स्पेन से होगी। ये अर्जेंटीना का 7वां वर्ल्ड कप फाइनल होगा। टीम इससे पहले 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 और 2022 में फाइनल खेल चुकी है। अर्जेंटीना ने 1978, 1986 और 2022 में विश्व कप का खिताब भी जीता है। अब उसके पास लगातार दूसरी बार और कुल 4th खिताब जीतने का मौका है। आइए जानते हैं कि अर्जेंटीना के सेमीफाइनल मैच और स्पेन के साथ फाइनल मुकाबले को लेकर क्या कहते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी अनादि बरुआ।
2: बहुत ही रोमांच का फुटबॉल मैच रहा और इतना अच्छा मैच हुआ। मैच जो होना चाहिए सेमीफाइनल में वैसे ही हुआ और दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली। देखिए गोल तो होगा, दो टीम खेलेगी, एक टीम तो हारेगी, लेकिन दोनों का मनोबल इतना फास्ट था, इतना अच्छा खेले तो दाद देना पड़ेगा दोनों टीमों के कोच को, प्लेयर्स को। एक बहुत अच्छा सेमीफाइनल हुआ।
3: अर्जेंटीना की टीम ने आखिरकार जैसा इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया है, अंत के लम्हे में बाजी मार ली। क्या कहेंगे अर्जेंटीना के खेल को लेकर और मेसी के खेल को लेकर?
2: मेसी तो एक ऐसे प्लेयर है, आइकॉन प्लेयर है, अगर आपको कहा जा सकता है ये एक भगवान है फुटबॉल के। सबसे बड़ी बात होती है कि जब उनके पास बॉल आती है तो उनके जो विजन है वो कहाँ पास देंगे, किसको पास देंगे, और बॉल का मूवमेंट जो होता है, उनके जो टचेस होते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उसी के असिस्ट से 2 गोल हुए हैं। अभी इंग्लैंड के कोच ने भी कहा कि हमने बहुत उनको टाइट कर रखा था, हमने अपने प्लेयरों को बोला था कि उसको मार करके रखें, फिर भी 84 मिनट तक 1 गोल जीते थे इंग्लैंड। लेकिन दाद देनी पड़ेगी मेसी की और मेसी की टीम के, उन्होंने ऐसे अच्छा गेम दिखाया। लास्ट मैच भी प्री क्वार्टर फाइनल भी वो हारने के बाद फिर जीते हैं और अभी कल भी हारने के बाद फिर जीते हैं। ये बहुत बड़ी बात है फुटबॉल में, अगर हारने के बाद आप जीतते हैं तो इसे कहते हैं कि टफ कंपटीशन, बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं हो पाता है
3: जी। और कल के जो खेल रहा उसमें अर्जेंटीना के खेल की क्या खासियत रही?
2: पहले हाफ में 15 मिनट में तो इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली, एकदम अटैकिंग फुटबॉल खेली, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इनके जो जितने मिडफील्डर डिफेंडर जो भी है अर्जेंटीना के, इन्होंने बॉल को मिडफील्ड पहले खेला, क्योंकि रणनीति थी कि पहले हाफ क्वार्टर में पानी वानी पीने के बाद सेकेंड क्वार्टर में हम खेलेंगे फास्ट, और सेकेंड हाफ में उन्होंने फुटबॉल

0: बढ़ गया, पासिस बहुत अच्छे रहे लेकिन गोल नहीं हो पाया। खेल के अंदर गोल बहुत जरूरी है लेकिन मैच का जो मिडफील्ड प्लेयर था ज्यादातर मिडफील्ड में हुआ और थोड़ा रफ एंड टफ भी हुआ
1: जी। और अब फाइनल है स्पेन के साथ, अर्जेंटीना को फेवरेट मान रहे हैं, स्पेन को फेवरेट मान रहे हैं?
0: ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछा धर्मेंद्र जी आपने, लेकिन फेवरेट तो मेरी फेवरेट तो अर्जेंटीना है क्योंकि अर्जेंटीना टीम एक ऐसी टीम है जो हारने के बाद गोल मारती है। रही बात स्पेन की, वो अभी तक अजय रहे पता नहीं कितने मैचेस, 37 मैच खेल चुके एक भी और 25 मैच जीते और 4 वो ड्रॉ किया, तो वो एक टीम ने एक भी गोल नहीं खाया, तो वो एक टीम बहुत अच्छी टीम है। तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा सेमीफाइनल ये फाइनल, और ज्यादा रफ एंड टफ ना हो क्योंकि काफी येलो कार्ड मिल चुके हैं, 14 येलो कार्ड मिल चुके हैं और बहुत सारे 14 रेड कार्ड मिल चुके हैं और येलो कार्ड, लेकिन गोल काफी देखने को मिला इस वर्ल्ड कप में, 297 गोल देखने को मिला। तो जितने टीमें आ रही है 48 टीम्स आई तो गोल देखने को मिला, तो लोगों का मन, जो लोग होते हैं वो मैच में गोल देखने आते हैं, उसके जो मैच का जो होता है आपका एक्सपीरियंस होता है गोल देखने का या गोल मारने का, तो वो लोगों के जहन में रहता है, तो इसलिए फुटबॉल बहुत बढ़िया फुटबॉल हो रहा है।
2: हम आपको बता दें कि सेमीफाइनल मैच के दौरान कई नए रिकॉर्ड भी बने। अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कोलेनी अपनी टीम को लगातार दूसरे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाने वाले इतिहास के 7वें कोच बन गए। उनसे पहले ये उपलब्धि विटोरियो पोजो, हेलमुट शॉन, मारियो जागालो, कार्लोस बिलार्डो, फ्रांस बेकेनबाउर और डिडियर डेंशा के नाम रही है। अर्जेंटीना की टीम इतिहास में पहली बार लगातार 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगी। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप इतिहास में अपना 6ठा सेमीफाइनल खेला और हर बार जीत हासिल की। इंग्लैंड को हराकर अर्जेंटीना ने लगातार 14वीं जीत दर्ज की। टीम सितंबर 2025 में इक्वाडोर से हारने के बाद एक भी मैच नहीं हारी है। अर्जेंटीना ने मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक 19 गोल किए हैं, ये टीम का एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का नया रिकॉर्ड है। अर्जेंटीना ने लगातार 14 वर्ल्ड कप मैचों में कम से कम 2 गोल किए हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 39 साल के लियोनेल मेसी इस वर्ल्ड कप में अब तक कुल 8 गोल कर चुके हैं और वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। अब दुनिया को इंतजार है जब ये तय हो जाएगा कि अगले 4 साल तक दुनिया का फुटबॉल बादशाह कौन बनेगा, वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना या एक बार वर्ल्ड कप जीतने वाला स्पेन।

0: और अब आइए बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। भारत इस सीरीज का पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है और टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वो दूसरा मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बना इस सीरीज को अपने नाम कर लें। और इस वक्त की अगर बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है। स्कोर की अगर बात करें तो इस वक्त 12 रन बना चुके हैं बिना किसी नुकसान पर। और इस मैच के अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो केएल राहुल गेम में नहीं है और उनकी जगह पर आए हैं ईशान। अब देखना ये होगा कि आज के मैच में क्या स्थिति रहती है, क्या ये मैच इंडिया जीतता है या फिर इंग्लैंड अपनी कोशिश बनाए रखता है।
1: बात चली है तो हम आपको ये बता दें कि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप और 2028 का T20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट में होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के अनुसार वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमों के साथ नया 3-स्टेज फॉर्मेट लागू होगा जिसमें सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 राउंड से चुने जाएंगे। अब तक ये सुपर 6 से चुने जाते थे। दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की जगह सुपर 10 स्टेज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दो नए एलिमिनेटर मुकाबले भी जोड़े गए हैं। ICC ने कल नए फॉर्मेट में बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए नया क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है। इनका ऐलान एडिनबर्ग में ICC की सालाना AGM के बाद किया गया। वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमों के मुकाबले के फॉर्मेट को 3-स्टेज में बदल दिया गया है। नए फॉर्मेट में सबसे पहले सुपर सीरीज खेली जाएगी। इसमें रैंकिंग की आखिरी 3 टीमें यानी 12, 13 और 14 राउंड रॉबिन फॉर्मेट में आमने सामने होंगी। इन मुकाबलों के बाद एक टीम दूसरे राउंड में पहुंचेगी। दूसरे राउंड में 12 टीमें ही होंगी। यहां 6-6 टीमों के दो ग्रुप होंगे जिनमें कुल 30 मैच खेले जाएंगे। दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमें और दोनों ग्रुप को मिलाकर एक बेस्ट यानी 7वीं टीम तीसरे राउंड यानी सुपर 7 में पहुंचेगी। सुपर 7 के सभी

0: साथी में आपस में राउंड रॉबिन फॉर्मेट में कुल 21 मैच खेलेंगी। इसके बाद टॉप फोर टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जहां नंबर एक टीम का सामना नंबर चार से और नंबर दो का मुकाबला नंबर तीन से होगा। इनकी विजेता टीमें फाइनल खेलेंगी और फिर नया चैंपियन सामने आएगा। हम आपको बता दें कि दो मेजबान साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे तो सीधे एंट्री लेने में सफल रही हैं, जबकि रैंकिंग के आधार पर 8 टॉप टीमें भी क्वालिफाई करेंगी। इसके अलावा वर्ल्ड कप क्वालिफायर से आने वाली टीमें भी 14 में शामिल होंगी। तीसरे होस्ट नामीबिया को भी क्वालिफायर खेलना होगा। उधर T20 वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट में ग्रुप स्टेज में 4-4 टीमों के 5 ग्रुप होंगे। इनके बीच कुल 30 मैच खेले जाएंगे। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी, जिसके बाद कुल 10 टीमें सुपर 10 स्टेज में खेलेंगी। सुपर 10 में 5-5 टीमों के 2 ग्रुप होंगे और कुल 20 मैच खेले जाएंगे। दोनों ग्रुप की टॉप टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बाकी 2 स्थानों के लिए एलिमिनेटर मुकाबले होंगे, जिसमें एक ग्रुप की दूसरे स्थान की टीम का सामना दूसरे ग्रुप की तीसरे स्थान की टीम से होगा। दोनों एलिमिनेटर के विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और इसके बाद फाइनल खेला जाएगा। तो क्रिकेट की ये थी बात, और अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की।
1: The Commonwealth Games.
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ते का समय रह गया है। आज हम आपको बता रहे हैं इन खेलों में तकनीक और ताकत के खेल जूडो के साथ साथ चुस्ती, चपलता और स्टेमिना के खेल, तैराकी में भारत के अब तक के प्रदर्शन के बारे में, और इस बार इन 2 खेलों में देश के लिए पदक जीत कर लाने की जिम्मेदारी किन कंधों पर होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत जिन प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहा है, उनमें जूडो भी शामिल है। इसमें भारत के कुछ मेडल जीतने की भी प्रबल संभावना है। हाँ, देखना होगा कि भारत का कोई जूडोका स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास लिख पाता है या नहीं। इतिहास की बात चलिए तो कॉमनवेल्थ गेम्स के पन्नों को पलटने पर हमें ये पता चलता है कि जूडो में हमें पहले गोल्ड मेडल का इंतजार अब तक जरूर है, लेकिन इस खेल में हमने 11 पदक अब तक जीते हैं। इसमें 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। जूडो को 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 1990 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार जूडो को पदक वाले खेलों में जगह मिली। इस पहले अवसर पर ही भारतीय जूडोकाओं ने 2 कांस्य पदक जीतकर अपनी छाप छोड़ी। नरेंद्र सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम और राजेंद्र कुमार धांगर ने पुरुषों के 86 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर यह बता दिया कि जूडो में हम सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि कड़ी चुनौती पेश करने और पदक जीतने आए थे। इसके बाद बारी थी इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2002 की, जहां भारत के जूडो खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन को और निखारा। वैसे तो इस आयोजन में भी भारत की झोली में 2 पदक आए, लेकिन इस बार एक रजत पदक भी शामिल था। अक्रम शाह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में जूडो में देश के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का पहला रजत पदक जीता। साथ ही भूपिंदर सिंह ने पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। हालांकि इसके बाद जूडो के अगले पदक के लिए भारत को 12 वर्ष का लंबा इंतजार करना पड़ा। बारी आई ग्लासगो में ही 2014 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां जूडो में न सिर्फ इतिहास के सबसे अधिक 4 पदक आए बल्कि महिला वर्ग में भी इतिहास लिखा गया, जब पहला रजत पदक सुशीला देवी ने जीता। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच दूसरा स्थान हासिल किया था। साथ ही महिलाओं में ही राजेंद्र कौर ने 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग और कल्पना देवी ने 52 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने अपने नाम लिखाए। पुरुषों में नवजोत चाना ने 60 किलोग्राम में रजत पदक हासिल किया। अब बारी थी पिछली बार आयोजित बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की। इस संस्करण में भारत ने जूडो में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 3 पदक जीते थे। सुशीला देवी लिक माबम ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक पर कब्जा जमाया, तो तुलिका मान ने महिलाओं की 78 किलोग्राम से अधिक कैटेगरी में चांदी का तमगा जीता। इन दोनों के साथ ही विजय यादव ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए जूडो में पदकों की संख्या 3 तक पहुंचा दी। ये आंकड़े बताते हैं कि जूडो में भारत के लिए गोल्ड मेडल का कॉलम अभी भी खाली है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में अंदर बाहर होते रहे जूडो में इस बार भारत की संभावना और ज्यादा बेहतर है। इस बार महिलाओं में 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे, 52 किलोग्राम में श्रद्धा कडुबल चोपड़े, 57 किलोग्राम में यामिनी मौर्य, 63 किलोग्राम में उन्नति शर्मा, 70 किलोग्राम में इनुंगनबी ताखिल लंबम, 78 किलोग्राम में इष्टूप नारंग और 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में पिछले खेलों की रजत पदक विजेता तुलिका मान शामिल हैं। तो सुन लेते हैं तुलिका इस बार की संभावनाओं को लेकर क्या कह रही हैं।
2: बीइंग एन एथलीट, एलीट एथलीट, और ऑलरेडी आई प्लेड द कॉमनवेल्थ 22nd, तो मेरा अभी एम अलग है। मैं उन चीजों को प्रेशर को नहीं लेके चल रही हूँ। मेरा मेन ये है कि मतलब 22 में जो मेरा सिल्वर आया था उसे मुझे अभी कन्वर्ट करना है गोल्ड।
0: पुरुषों के वर्ग के 60 किलोग्राम में हर्ष सिंह, 66 किलोग्राम में रोहित बसीर मजगल,

0: 73 किलोग्राम में अरुण कुमार, 81 किलोग्राम में हर्ष टोकस, 90 किलोग्राम में करणजीत मान, 100 किलोग्राम में अवतार सिंह और 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में यश घंगस की चुनौती होगी। अगर तैराकी की बात करें तो अब तक के राष्ट्रमंडल खेलों में हमारी कोई दमदार चुनौती नहीं आई है। सामान्य वर्ग में अभी तक एक भी पदक भारतीय तैराकों के नाम नहीं है। यह हकीकत है कि इन खेलों के इतिहास में पैरा तैराकी में प्रसन्ना कर्मकार ने 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक S9 इवेंट में कांस्य पदक जीता था। हालांकि पिछले कुछ संस्करणों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। प्रमुख भारतीय तैराकों का प्रदर्शन अगर हम देखें तो साजन प्रकाश 2021 में ओलंपिक A8 हासिल करने वाले पहले भारतीय तैराक बने थे। साजन ने 2022 बर्मिंघम गेम्स में 200 मीटर बटरफ्लाई के फाइनल में जगह बनाई थी। श्रीहरि नटराज बर्मिंघम में 2022 में पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे थे, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। आर्यन नेहरा और अन्य युवा तैराकों ने लगातार अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय में सुधार किया है, तो इस बार तैराकी में भी पदक की उम्मीद है। इस बार स्विमिंग टीम में अनुभवी साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज के साथ साथ युवा आर्यन नेहरा, अनीश गौड़ा, दक्षियान शशि कुमार को 5 सदस्यों वाली टीम में जगह मिली है। तो आइए हम मिलकर दुआ करें कि जूडो टीम स्वर्ण पदक के साथ साथ अपने पदकों की संख्या बढ़ाए और तैराकी टीम भी पदक जीत कर आए। आमीन।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: और आइए लिए चलते हैं आपको मुक्केबाजों के रिंग में। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। जकार्ता में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के अंडर 23 महिलाओं के वर्ग की बात करें तो भारत के खाते में 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल शामिल हुए हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाली है 54 किलोग्राम की कैटेगरी में निशा, और अगर बात करें रजत पदक की तो निकिता चंद 60 किलोग्राम की कैटेगरी में, 65 किलोग्राम में काजल, मुस्कान 75 किलोग्राम और प्रियंका 80 किलोग्राम की। वहीं कांस्य पदक हाथ लगे हैं 80 किलोग्राम में नैना, शिवानी 70 किलोग्राम कैटेगरी, प्राची 57 किलोग्राम और 51 किलोग्राम में तनु ने कांस्य पदक जीता है। और अंडर 23 मेंस बॉक्सर्स की अगर बात करें तो 2 सोने के पदक हमारे हाथ लगे हैं, 1 चांदी और 3 कांस्य पदक। विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, गंगा 55 किलोग्राम की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, वंशज ने 65 किलोग्राम में सिल्वर पदक जीता है, हितेश नीरज और ईशान कटारिया ने कांस्य पदक जीता है। तो इस तरह से हमारी झोली में यानी कि बॉक्सिंग की अगर रिंग की बात करें तो इतने सारे पदक हमारे हाथ लग चुके हैं।
0: बॉक्सिंग के रिंग से अब चलते हैं कुश्ती के अखाड़े में, और हंगरी के बुडापेस्ट में पालिक इमरे वर्गा जानूस और कोजमा एस्तवान मेमोरियल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज के आज दूसरे दिन फ्री स्टाइल में भारत के लिए बहुत अच्छा परिणाम अभी तक नहीं आया है। पुरुषों के 92 किलोग्राम वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में कुमार पुनीत को हार का सामना करना पड़ा है। 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया जो ओलंपियन हैं, उनको क्वालिफिकेशन में ही इटली के बेंजामिन होमिस से शिकस्त मिली है, जो एक चौंकाने वाला परिणाम है। दीपक पूनिया से बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। 125 किलोग्राम की बात करें तो यहाँ पर भारत के लिए 2 पहलवान थे अखाड़े में, राजत रोहल और दिनेश दोनों को प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त मिली है। महिलाओं के फ्रीस्टाइल वर्ग में प्रियांशी प्रजापत क्वार्टर फाइनल में पराजित हो गई हैं 50 किलोग्राम कैटेगरी में, और 55 किलोग्राम वर्ग में हंसिका क्वार्टर फाइनल में तुर्की की पहलवान को पराजित करने में कामयाब रही। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जर्मनी के पहलवान से होगा और उनसे उम्मीद है कि वो पदक लाएंगे। इससे पहले कल प्रतियोगिता के पहले दिन अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साथ ही दीपक ने 61 किलोग्राम और विशाल कालीरमन ने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर पहले दिन भारत के पदकों की संख्या

0: चीन तक पहुंचा दी। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले 22 साल के भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने जॉर्जिया के निकोलोज बोचोरी शिवाली के खिलाफ 10-0 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत दर्ज कर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के ओलंपियन मेरामबेक कार्तबे को 10-3 से मात दी। सेमीफाइनल में अमन ने अजरबैजान के मौजूदा यूरोपियन चैंपियन इस्लाम बाजोर गानोव को 11-0 से हराया और फाइनल में जॉर्जिया के रॉबर्ट डिंगाश्विली को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 13-3 से शिकस्त दी। उनकी 4 जीतों में से 3 तकनीकी श्रेष्ठता से मिली। दूसरी तरफ दीपक ने मेंस फ्रीस्टाइल 61 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीतने के लिए शानदार वापसी की। कांस्य पदक मैच में अजरबैजान के नूरुद्दीन नोवरुजोव के खिलाफ 0-8 से पिछड़ने के बावजूद दीपक ने जबरदस्त वापसी की और 9-8 से रोमांचक जीत अपने नाम की। इससे पहले भारतीय रेसलर ने क्वार्टर फाइनल में जॉर्जिया के रामिज तुर्नानिज़े को 7-4 से हराया, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के असील एतकिन से 1-2 से हार मिली। दूसरी तरफ विशाल कालीरमन ने कजाकिस्तान के ओसुमजान दास्तानबेक को 8-2 से हराकर 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। वह सेमीफाइनल में ईरान के अहमद इब्राहिम जादे से निर्धारित मानदंड के आधार पर हार गए थे। अन्य मुकाबलों की बात करें तो 57 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में राहुल को हार का सामना करना पड़ा, जबकि एशियन चैंपियन अभिमन्यु मंडवाल पुरुषों की फ्रीस्टाइल 70 किलोग्राम प्रतियोगिता के क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर हो गए। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले पहलवान सागर जागलान 74 किलोग्राम, मुकुल दहिया 86 किलोग्राम और अमित 86 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में पोडियम पर जगह बनाने में नाकाम रहे। हम आपको बता दें कि पालिक इमरे वर्गा जानूस और कोजमा इस्तवान मेमोरियल 2026 इस सीजन का चौथा और आखिरी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW रैंकिंग सीरीज इवेंट है।
1: और अब चलते हैं जापान की राजधानी टोक्यो में, जहां 14 से 19 जुलाई तक आयोजित जापान ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों की बात करें तो टूर्नामेंट में भारत की स्टार शटलर पीवी संधू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में सिंधु ने चीन के विश्व नंबर 5 वाई हान को सीधे गेम्स में 21-16 21-14 से हराया। ये मुकाबला महज 35 मिनट तक चला, जिसमें सिंधु ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। मिक्स डबल्स में भारत का सफर राउंड ऑफ 16 में समाप्त हो गया है। भारत की ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डन और जूली मैकफर्सन से शिकस्त के साथ उनका सफर यहीं पर खत्म हुआ। इससे पहले पुरुष एकल में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी पहली दौर में ही बाहर हो गए, जबकि पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चोट के कारण अपना मुकाबला पूरा नहीं कर सके। वहीं रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी चीन के फेंग यांजे और हुआंग डोनपिंग से हार कर बाहर हो गई। अब क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा। भारत की ओर से सिंधु अब इस टूर्नामेंट में एकमात्र खिलाड़ी बची हैं। अब भारतीय प्रशंसकों की उम्मीद पीवी सिंधु पर टिकी है।

0: गोवा में खेले जा रहे अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 में मुकाबले लगातार रोमांचक होते जा रहे हैं। ताज़ा मैच में यू मुंबई टीम ने अपनी जीत दर्ज की है और 8-7 से दबंग दिल्ली को शिकस्त दी है। इसी के साथ यू मुंबई टीटी पॉइंट्स टेबल में 6वें स्थान पर आ गई है। पहले स्थान पर गोवा चैलेंजर 26 पॉइंट्स के साथ में है और आज मुकाबला होगा यू मुंबई टीटी बनाम पीबीजी पुणे जगुआर्स के बीच शाम 7:30 बजे।
1: और अब बात कर लेते हैं फिर से क्रिकेट की, क्योंकि इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरा वनडे मैच इस समय चल रहा है। भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है और आज शुरुआत भारत के लिए काफी अच्छी रही है। अब तक 39 रन बन चुके हैं, 6ठा ओवर चल रहा है, लेकिन भारत ने कोई विकेट नहीं गंवाया है। पिछले मैच में अनफिट होकर मैदान से बाहर जाने वाले कप्तान शुभमन गिल अभी भी मैदान पर हैं, 21 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे हैं, 6 चौके उन्होंने लगाए हैं, स्ट्राइक रेट भी कमाल की अभी उनकी है 136 की। और दूसरी तरफ अगर उनके जोड़ीदार रोहित शर्मा की बात करते हैं, वो भी आज लय में दिखाई दे रहे हैं, नजर लगे उनको, अभी तक 12 गेंदों का सामना किया है। अपनी जो रफ्तार उनकी या जो उनका अंदाज है उस तरह से तो बल्लेबाजी नहीं की है, लेकिन मैदान पर टिके हुए हैं, 12 गेंदों का

0: सामना करके उन्होंने 9 रन बनाए हैं जिसमें एक चौका शामिल है। इंग्लैंड को पहले विकेट का इंतजार है। अभी भी इंग्लैंड के गेंदबाज, तमाम तेज गेंदबाज, जोफ्रा आर्चर हों या शाकिब महमूद हों, संघर्ष कर रहे हैं भारत का पहला विकेट लेने के लिए और उनका इंतजार लंबा इस समय खिंच रहा है क्योंकि साझेदारी भारत की तरफ से 34 गेंदों में 42 रन की हो चुकी है, जो इंग्लैंड के लिए चिंता की बात है। पहले ही इंग्लैंड की टीम सीरीज में 1-0 से पिछड़ रही है। आज अगर भारत ये मुकाबला जीतने में कामयाब होता है तो निश्चित रूप से श्रृंखला उसके नाम हो जाएगी। इंग्लैंड नहीं चाहेगा कि श्रृंखला अभी ही भारत अपने नाम कर ले और वापसी की पूरी कोशिश करेगी इंग्लैंड की टीम। देखना होगा भारत कितना बड़ा लक्ष्य देता है और इंग्लैंड उसका किस तरह से सामना करता है। और अब श्रोताओं, समय हो चला है आज के खेल खिलाड़ी कार्यक्रम से अलविदा लेने का। तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र
1: और मुझे यानी विजेता चतुर्वेदी को
0: दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात

द्विवारम् ओलम्पिक पदक विजेत्री भारतस्य कीर्तिमयी क्रीडिका पीवी सिन्धुः अद्य स्वकीयम् एकं सर्वोत्कृष्टं प्रदर्शनं विहितवती। चीनदेशीयां क्रीडिकां हान युए इत्येतां पराजित्य जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचरणे ससंभ्रमं प्रविष्टा। भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये द्वितीया एकदिवसीय स्पर्धा अद्य साम्प्रतं कार्डिफ नगरे जायमाना वर्तते। इति वार्ताः। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के। और आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन होता है हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम।
1: बिल्कुल। और भाई देखिए, खास दिन होता है, खास कार्यक्रम होता है, और भाई दिवस भी आज का कुछ खास है, क्योंकि आज है ICAR स्थापना दिवस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस। हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। और अतुल भाई, यह कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के लिए भारत की शीर्ष संस्था है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
0: बिल्कुल। और देखिए, पहले इसे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जो है जाना जाता था, जिसकी स्थापना आपने बताई है कि 16 जुलाई 1929 को कृषि एवं रॉयल कमीशन के रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में पायल बहन की गई थी।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। और देखिए, आगे भी हम इसी तरीके से प्यारी प्यारी सी जानकारी अपने सभी बहन भाइयों को, सभी श्रोताओं को देते रहेंगे।
0: बिल्कुल, देखिए आज एक और जानकारी दे देते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। देखिए, प्रतिष्ठित जगन्नाथ रथ यात्रा गुरुवार 16 जुलाई को पुरी में शुरू हुई, जिसमें भक्तों की एक विशाल भीड़ ने पायल बहन पवित्र पहंडी अनुष्ठान को देखा, जिसके दौरान भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर में विधि पूर्वक बाहर निकाला गया।
1: अतुल भाई, ओडिशा के पुरी में हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा एक भव्य और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और इस 9 दिवसीय यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, जैसे कि आपने कहा, रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं।
0: तो
1: तो
0: ये तो
1: भाई
0: रही जानकारी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। और देखिए भाई, आज हमारा जैसा कार्यक्रम है भाई SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम, तो हम हाजिर हो गए हैं अपने सभी श्रोताओं की फरमाइश को लेकर के। और आज के जो हमारे पहले कलाकार हैं वो है ऋषिपाल खदाना और कौशिंदर खदाना, और इनके लिए भी हमारे पास में SMS आ गए हैं।
1: इनके लिए हमारे पास SMS आए हैं। ग्राम जो है वो है कुम्हार हेड़ा, और सहारनपुर से इन्होंने SMS किया है। भेजने वाले भाई हैं सैयद मसरूर और इनके परिवार के सभी सदस्य। चौधरीवास हिसार से हमें SMS भेजा है राजू अग्रवाल और इनके परिवार के सभी सदस्यों का। ये SMS हमारे पास आया है खैल बाजार पानीपत से। भेजने वाले भाई हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू और इनके परिवार के सभी सदस्य। जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भी हमें SMS भेजा है श्रवण कुमार प्रजापति और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
0: ये SMS में हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं तिलक राज अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। बेहरवाला खुर्द सिरसा से हमें SMS भेज रहे हैं बलवंत जाखड़ और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश भेज रहे हैं सुल्तान सिंह ताड़ और इनका पूरा परिवार। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं मोहम्मद

0: अब्बासी और इनका पूरा परिवार। दादरी गेट भिवानी से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं कृष्ण मेहरा और इनका पूरा परिवार। चक 5 MD पतरोड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं मंगल जनागल और इनका पूरा परिवार।
1: सले भाटा महासमुंद छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश भेजी है जीतू ध्रुव और इनके सभी परिवार के सदस्यों ने। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से हमें फरमाइश भेजने वाले भाई हैं कमलेश साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है कुगदा कुमरी कुम्हारी छत्तीसगढ़ से और भेजने वाले भाई हैं बलराम बया और इनके परिवार के सदस्य। संबलपुर कांकेर से भी हमें फरमाइश आई है फागुराम यादव और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से हमें फरमाइश भेजने वाले भाई हैं राधेश्याम शर्मा और परिवार के सभी सदस्य।
0: भटिंडा रोड मंडी डबवाली से फरमाइश भेज रहे हैं राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं मुकेश कश्यप और इनका परिवार। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे पास में SMS आया, भेजने वाले हैं स्वर्ण सिंह गिल और इनका पूरा परिवार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से फरमाइश भेज रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार। चंडीगढ़ से हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं सतीश अनेजा विमला अनेजा और इनका पूरा परिवार। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं वेद मिड्डा और इनका पूरा परिवार। पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से फरमाइश भेज रहे हैं संदीप मक्कड़ और इनका पूरा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा और इनका पूरा परिवार।
1: जमनिया गाजीपुर से ये फरमाइश भेजी है सुरेश जायसवाल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। रामगढ़ कैंट से फरमाइश भेजी है महेंद्र मोदी ठाकुर ने और ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से भेजने वाले भाई हैं राजेंद्र कुमार और उनके परिवार के सभी सदस्य। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमें फरमाइश भेजी है राजू मिगलानी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमें मिली है शिवाजी नगर बड़ाली देशमुख से और ये हमें फरमाइश भेजी है राजेश खोबर खेड़े और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास भेजी है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने और इन्होंने भेजी है ये नागौड़ा छत्तीसगढ़ से।
0: ये फरमाइश हमारे पास में ये है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से भेजने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये है GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से भेजने वाले हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और इनका पूरा परिवार। पलारी छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले नीतीश कुमार देवांगन और इनके पूरे परिवार के सभी सदस्य। ये SMS हमारे पास में आया है जटवाड़ा गाजियाबाद से भेजने वाले हैं शीशपाल अकेला और इनका पूरा परिवार। मेरठ से हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये फरमाइश हमारे पास में आई है भोपालगढ़ राजस्थान से, भेजने वाले हैं धर्मेंद्र छिपा और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर ऋषिपाल खदाना और कौशिंदर खदाना की आवाज़ में ये रागनी।
1: और अतुल भाई किस्सा रहेगा सरवर नीर का, तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: तो अतुल भाई, सरवर नीर के किस्से से ये रागनी हमने अपने सभी भाई बहनों को सुनवाई, और मौका वो जब रानी इमली भाई सौदागर के जहाज़ पर उसका खाना लेके जाती है भटियारी के कहने पर, और भाई उस मौके के दोनों के सवाल जवाब हमने इस रागनी द्वारा अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाए, और जो अगले हमारे कलाकार हैं उनके लिए भी हमारे पास SMS आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं इंद्रपाल शर्मा, उनके साथी, और ये SMS हमारे पास में आया है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं रोशन लाल देवांगन और उनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से हमारे पास में SMS आया, भेजने वाले हैं राष्ट्रपाल गजबीय और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में है भाई हितेंद्र दास का, आसाम से हमें मिला है, गांव फरांसी जिला हिसार से भी हमारे पास में SMS आया, भेजने वाले हैं राजकुमार डुड्डी और इनका समस्त परिवार। ये SMS हमारे पास में है गांव लहलौड़ा जिला बागपत से, भेजने वाले हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और इनका पूरा परिवार।
0: इंद्रपाल शर्मा को ही सुनना चाहा है गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से। ये SMS भेजने वाले भाई हैं सज्जन जांगड़ा और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें प्राप्त हुआ है।

0: राणा नरसान भिवानी से भेजने वाले भाई हैं जगदीश चुंडालिया और इनका समस्त परिवार। ये एसएमएस हमें भेजा है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, और भेजने वाले भाई हैं रामशरण विश्वकर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये एसएमएस हमें मिला है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, भेजने वाले भाई हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये एसएमएस हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पंचायत भटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से ये एसएमएस हमें भेजा है शंकरलाल जयसवाल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: रामलंगर दिल्ली से हमारे पास में एसएमएस आया, भेजने वाले हैं रामनाथ प्रजापति और इनका पूरा परिवार। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं रमेश कुमार कंबोज और इनका पूरा परिवार। आदर्श नगर मेलौट पंजाब से हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं राज शर्मा और इनका पूरा परिवार। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से फरमाइश भेज रही है मुसरत जहानाज और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, भेजने वाले हैं रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से, भेजने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू और इनका पूरा परिवार। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से फरमाइश भेज रहे हैं पंजाब रामटेक और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं नासिर शेख। गोविंदपुरा अहमदनगर से फरमाइश भेज रहे हैं जुनेद मुजावर और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है गाँव खोकरावली श्रीगंगानगर से, भेजने वाले हैं विनोद बारशा और इनका पूरा परिवार।
0: गांव गोविंदगढ़ माजीवाला से हमें राजस्थान से ये फरमाइश भेजी है राजू टुटेजा खुशदिल और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से भी हमें फरमाइश प्राप्त हुई है और भेजने वाले भाई हैं सत्येंद्र कुमार चंसौली और इनके परिवार के सदस्य। और ये हमें बलौद छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजी है देव शंकर तामूरिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं अभिजीत गवनकर राही और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर इंद्रपाल शर्मा उनके साथी की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा होगा महाभारत।

0: राधा रघुनाथ की कविताई और भाई कर्ण कुंती संवाद महाभारत के किस्से से बहुत ही मार्मिक रागनी, बहुत ही मर्म था इस रागनी में। हमने अपने सभी भाई बहनों को सुनवाई अतुल भाई इंद्रपाल शर्मा की आवाज़ में, और जो अगले हमारे आज के कलाकार हैं
1: वो है नीलम चौधरी, उनके लिए भी हमारे पास में SMS आ गए। पायल बहन, ये SMS मिला है हमें भोला कॉलोनी गरौड़ा जिला करनाल हरियाणा से भेजने वाले हैं विजेंद्र कुमार जयजान और उनका पूरा परिवार। और ये SMS हमारे पास में है गांव चोहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं संजय ढींगिया और उनका पूरा परिवार। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र SMS भेज रहे हैं PS नाहवकर और इनका पूरा परिवार। कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से SMS मिला है भेजने वाले ओम प्रकाश राय और उनका पूरा परिवार। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से भी हमारे पास में SMS आया भेजने वाले हैं प्रतीक राय और उनका पूरा परिवार।
0: ये SMS हमें प्राप्त हुआ है सदूल शहर राजस्थान से। भेजने वाले भाई हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। जसपुर उत्तराखंड से भी हमें SMS भेज

0: है रियासत हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने ये एसएमएस हमें भेजा है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने ये एसएमएस हमें प्राप्त हुआ है। कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से भेजने वाले भाई हैं सुरेंद्र संतूर और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये एसएमएस हमें जनकपुरी सहारनपुर से प्राप्त हुआ है। भेजने वाले भाई हैं जॉन डिकेस्ट्रो और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर नीलम चौधरी की आवाज़ में ये राग।

0: अतुल भाई चंद्र किरण के किस्से की इस रागनी के साथ ही हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत का एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंद्र शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक ने इस्तीफा दिया था। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण यह दुर्घटना हुई।

कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 820 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो पायल बहन, हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के, और अपने इस कार्यक्रम में आज हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं भाई बहुत सारी जानकारी, और भाई उन्हें साझा भी करेंगे। लेकिन हमारे ग्राम संसार कार्यक्रम में हमारे कुछ श्रोताओं के SMS रह गए थे, जिनमें हमें यह SMS जो है नीलम चौधरी के लिए मिला था, रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले थे अखिलेश कुमार साहू और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है, सूरतगढ़ राजस्थान से भेजने वाले थे भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से SMS मिला था विक्रम कडवासा और उनके पूरे परिवार का। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से फरमाइश भेज रहे सुनील पाठक और इनका पूरा परिवार। गांव चौधरीवास हरियाणा से फरमाइश भेज रहे थे मांगेराम सतौड़ और इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला था कनेरा मोहल्ला पटियाला से भेजने वाले थे मुकेश बत्ता और इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला था पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से भेजने वाले थे अनिल मोहन उनका पूरा परिवार। पटेल नगर मेलोड से भी हमारे पास में SMS आया था, भेजने वाले थे डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया और इनका पूरा परिवार। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी और सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी का भी हमें SMS मिला था। और ये फरमाइश हमारे पास में आई थी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से भेजने वाले थे निसार सलमानी और उनका पूरा परिवार। और ये समय समय मिला था गांव मायचा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से भेजने वाले थे कंची शर्मा, सतपाल शर्मा, मास्टर बनी सिंह, देवेंद्र सिंह, सर्विस गिरी महाराज, कुमारी तनु और पवन शर्मा का।
1: अतुल भाई, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में जितने भी हमारे श्रोता हैं हमें SMS भेजते हैं तो सबको हम शामिल कर सकें। और देखिए, हमारा आज का जो कृषि जगत कार्यक्रम है इसके अंतर्गत आज हम एक रेडियो रिपोर्ट अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाएंगे, जो कि है ICAR का 98वां स्थापना दिवस। और इसमें स्वर जो है वो कमल किशोर का है, सहयोग दिनेश कुमार और संयोजक जो हैं वो है शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
0: तो लेते हैं ये जानकारी।
2: 16 जुलाई 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना 98वां स्थापना दिवस नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर NASE में उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्री, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ और किसान मौजूद रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98वें स्थापना दिवस समारोह में सबसे पहले ICAR में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अपर सचिव डॉक्टर ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा,
3: नमस्कार। आज जब हम यहाँ पर ICAR के 98वें स्थापना दिवस पर एकत्रित हुए हैं तो इस गौरवशाली अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों, वैज्ञानिक साथियों और देश के अन्नदाता किसानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि यह उस यात्रा का उत्सव है जिसमें भूख की समस्या से जूझते भारत को अन्न निर्यातक भारत बनाने का एक लंबी कहानी जो है बनी हुई है, और यह उत्सव उस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है। हरित क्रांति के जनकों से लेकर आज की प्रयोगशालाओं तक ICAR के हर वैज्ञानिक ने इस देश की मिट्टी में सपनों की फसल बोई है। 2029 में ICAR अपना जन्म शताब्दी वर्ष मनाएगा।

100 साल की तपस्या, और यह अवसर एक बड़े राष्ट्रीय संकल्प से भी हमें जोड़ता है जो कि है विकसित भारत 2047। और जब देश 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब एक आशा रखी गई है कि कृषि और प्राथमिक क्षेत्र $6 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी में देगा। इस

0: इंजन बनेगी। आईसीआर का शताब्दी वर्ष और भारत विकसित भारत का लक्ष्य दोनों एक ही धागे से बंधे हैं। जब हमारा संस्थान आत्मनिर्भर होगा तभी हमारा किसान समृद्ध होगा, और जब किसान समृद्ध होगा तभी 2047 का 6 ट्रिलियन डॉलर का स्वप्न साकार होगा।
1: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एमएल जाट ने परिषद की 98 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि
2: 97 साल की जर्नी काफी अद्भुत है। यदि हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं जिसमें कृषि का बहुत बड़ा अहम योगदान, 6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें जाने के लिए पहले हमने चिंतन मनन करना होगा कि हमारी समस्याएं क्या हैं, हमारे चैलेंजेज क्या हैं, और उन्हीं चैलेंजेज को ध्यान में रखते हुए हमारा सारा अनुसंधान का कार्य होना चाहिए। और उसके लिए डिमांड ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन, दूसरा है कि टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है कि सस्टेनेबल ट्रांजिशन, कि ट्रांजिशन करें, ग्रोथ हो हमारी लेकिन सस्टेनेबल हो, और एक पॉलिसी एंड मार्केट का जो इश्यू है उसको हम एड्रेस करें। यदि इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश ने कितनी प्रगति की है, साइंस ड्रिवन इंक्रीमेंटल रेजिलियंस। और मैं सेक्टर वाइज बताना चाहता हूँ, यदि क्रॉप सेक्टर को देखते हैं तो 2001-2 से 2014-15 जहाँ पे 40 मिलियन टन का उन 12 साल में इजाफा हुआ था जो 19% है, 14-15 से लेके 25-26 मतलब अब तक का वो 49% जिसका बेस भी हाई था वो 124 मिलियन टन है, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा पिछले 12 साल में अचीव किया है देश ने। और ये इसमें विज्ञान का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और पिछले एक साल की हम बात करते हैं तो 19 मिलियन टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा है जिसकी वैल्यू 60,000 करोड़ है। दूसरा हॉर्टिकल्चर का सेक्टर, पिछले 12 साल में लगभग 97 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस बढ़ा है, और पिछले एक साल की बात करें तो 7 मिलियन टन जिसका वैल्यू 20,000 करोड़ है। तीसरा हम डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर की हम बात करें तो चाहे मिल्क का प्रोडक्शन हो, मीट का प्रोडक्शन हो, एग का प्रोडक्शन हो, काफी तेजी से बढ़ा है, और पिछले एक साल का यदि इकोनॉमिक टर्म में कंट्रीब्यूशन देखें इस सेक्टर का तो 50,000 करोड़ है। फिशरी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है, 2014 से यदि हम कंपेयर करें तो डबल से भी ज्यादा हो गया, और यदि पिछले एक साल का प्रोडक्शन इंक्रीज की इकोनॉमिक वैल्यू देखें तो 40,000 करोड़ है। तो इन 4 सेक्टर का सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज का जो कंट्रीब्यूशन देखते हैं देश में तो 1,70,000 करोड़ है, बाकी कंट्रीब्यूशन अलग है। पिछले एक साल में हम यदि क्रॉप सेक्टर में बात करें तो 44 क्रॉप की 386 वेराइटीज ये हमने डेवलप की है, जिसमें लगभग 94% क्लाइमेट रेजिलियंट है, 29 वेराइटीज हमारी बायोफोर्टिफाइड है, नया साइंस करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए 111 जेनेटिक स्टॉक रजिस्टर किए हैं, जितना ब्रीडर सीड की डिमांड थी उससे कहीं ज्यादा ब्रीडर सीड प्रोडक्शन किया है हमने। हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो 117 वेराइटीज 57 हॉर्टिकल्चर क्रॉप की हमने रिलीज की है, उसका प्लांटिंग मटेरियल, उसका सीड, सारी चीजों में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। यदि एनिमल सेक्टर की बात करें तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, एनिमल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, और पशुपालन मंत्रालय के साथ में आईसीआर का एनिमल साइंस डिवीजन साथ मिलकर ये काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी को किसान तक ले जाना, एक्सटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट माइल डिलीवरी। और मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि 1 जून से 30 जून जो खेत बचाओ अभियान चला, उस अभियान के दौरान 1657 टीम 728 जिलों में 1,31,000 से ज्यादा कार्यक्रम करके, 90,000 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके, और 5 करोड़ किसानों तक सीधा पहुंचना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 38 नई फसल किस्में और बागवानी क्षेत्र की 5 नई किस्में जारी की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा,
3: मेरा अपना सौभाग्य कि देश की प्रतिष्ठित संस्था आईसीआर के 98 स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला। देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से होकर जाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री भारत विकसित राष्ट्र जो 2047 का संकल्प लिया है वो कृषि और कृषि से जुड़े हुए अन्य माध्यम के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता है। और इसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने जो किसान की आय दुगना करने का संकल्प लिया है वो पुरानी परंपरागत तरीके से यदि खेती से आय दुगनी हो रही होती तो ये अरबपतियों का देश होता, हम वर्षों से खेती ही कर रहे हैं। खेती के ऊपर संकट कितने होते हैं, हम उन्नत किस्म के पशुपालन

0: मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, नैनो यूरिया, नैनो DAP का इस्तेमाल करके लागत भी कम कर सकते हैं। और इसके पीछे अनुसंधान का बड़ा महत्व है।
1: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने कृषि विकास में वैज्ञानिक अनुसंधान की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा,
2: सबसे पहले मैं 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से कृषि विभाग के सभी वैज्ञानिक भाइयों को, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को लाख लाख बधाई देता हूँ। दूसरी बधाई मैं देना चाहता हूँ, जो हताश हो गए थे वो कर्मचारी भाई, जिसको आज नियुक्ति पत्र मिलने का काम किया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अंतिम समय में उन्होंने इस पर ध्यान दिया, उसको निराश से की तरफ से खुशहाली का पत्र दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। कृषि विभाग में और यहाँ के वैज्ञानिकों ने और किसानों ने जो मिलके उन्नति और प्रगति का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अन्न के बिना भी लोग सहते थे, ये मुसीबत था, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ इसके लिए भारत के 145 करोड़ लोगों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लाख बधाई देना। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है आगे बढ़ते रहना चाहिए, और हमारे दिल में न सही तेरे दिल में है आग, जहां आग जलनी चाहिए। और श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 1947 में, इसको आगे बढ़कर इनके हिम्मत को आगे बढ़ाने का काम करें।
1: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने मिट्टी के स्वास्थ्य संरक्षण और संतुलित पोषण प्रबंधन के महत्व पर अपने उद्बोधन में कहा,
3: आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 98वां ये स्थापना दिवस है, परंतु आज के दिन मैं हमारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी ताकत के पीछे आज हम अनाज में आत्मनिर्भर हो गए हैं। परंतु अभी भी चुनौतियां कम नहीं है। आज जलवायु परिवर्तन की बात हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हमें सोइल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के प्रधान मोदी जी ने सोइल हेल्थ कार्ड चालू किया था, परंतु आज भी हमारे किसान भाई और बहन सोइल हेल्थ कार्ड पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आज 98वें स्थापना दिवस पर हम सबको प्रण करना है कि हम सोइल हेल्थ कार्ड के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। अभी खेत बचाओ अभियान चल रहा है, वो पूरे देश भर में, क्योंकि किसान की कृषि और पशुधन, ये दो ही उसके आधार हैं। इसलिए हम सबको मिलकर, क्योंकि पहले जय जवान का नारा लगा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पहले जय जवान का, फिर जय किसान का नारा लगा, फिर अटल जी ने जय विज्ञान का नारा लगाया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जय अनुसंधान का नारा दिया। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये चार हमारे स्तंभ है। यदि ये मजबूत होंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और ये हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा।
1: केंद्रीय पंचायती राज तथा मत्स्य पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के योगदान की सराहना करते हुए कहा,
4: आज हमारा देश दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, मछली के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये टेक्नोलॉजी का और जो आपकी भागीदारी है उसका ये परिणाम है। ICAR और NFDB, हमारा जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वो दोनों मिलके कई काम कर रहे हैं, और उन कामों में साइंटिफिक एक्वाकल्चर, फिश हेल्थ मैनेजमेंट, सीवीड प्रोडक्शन, मैरीकल्चर, ऑर्नामेंटल फिश, ये सारे चीज कर रहे हैं। अब स्किल का डेवलपमेंट किया जाना, लॉजिस्टिक में सुधार करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट का एक पॉलिसी बना रहे हैं, फिशरी डिपार्टमेंट पूरे एक्सपोर्ट आधारित PMMSY2 का जो फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है वो पूरा एक्सपोर्ट आधारित।

0: आज एक्सपोर्ट 62,000 करोड़ रुपए का, 2024-25 में हमने 62,408 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। पशुपालन के क्षेत्र में आज अपने बहुत अच्छा काम किया है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का आपने वैक्सीन लॉन्च किया यहाँ से, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब अगर हम लोग इसका उपयोग करेंगे तो हम काफी करेंगे। आपके 18 पशु केंद्र हैं, आपके विश्वविद्यालय हैं, उसके करीब करीब 84 पशु चिकित्सा कॉलेज हैं उसके अधीन। इन सबों को इसमें लगाने की जरूरत है। इनको टेक्निकल डाइवर्सिफिकेशन, शिक्षा से पशु स्वास्थ्य के नियंत्रण में सहायता मिलती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, इसको एडुकेट करने के लिए ज़रूरत है। और इसलिए कि आज का इस MOU, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पशुपालन, मत्स्य पालन और ICAR मिलके इस देश की उन्नति में, इस देश की आर्थिक प्रगति में बहुत योगदान करने का अगर समन्वय के साथ काम किया जाए तो इस आर्थिक प्रगति में हम देश को उन्नत बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।
1: इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विभिन्न संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण MOU समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर 150 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले 98 वर्षों में भारतीय कृषि को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई, इस पर अपने विचार रखते हुए कहा,
2: 98 वर्षों में ICAR के वो वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन जी को मैं प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भारतीय कृषि को असाधारण ऊंचाई दी है। सारे वैज्ञानिकों को प्रणाम, उनका अभिनंदन। आज 98 स्थापना दिवस पर मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे किसानों की मेहनत, किसान अगर कृषि की आत्मा है तो वैज्ञानिक मस्तिष्क है, इनके प्रयत्नों के कारण जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल देश में 376 मिलियन टन खाद्यान्न और 377 मिलियन टन बागवानी और 19 मिलियन टन मछली में भी उत्पादन दर्ज किया है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस एक साल में ICAR ने जो काम किया है, 44 फसलों की 386 नई किस्में विकसित की है, और मुझे ये बताती हुई खुशी है कि इनमें से 94% जलवायु अनुकूल है, क्लाइमेट रिजिलेंट है। किसान के साथ हमारे वैज्ञानिक अब खेत में भी जाते हैं। पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान, इस साल खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत इस साल हमारे 1657 वैज्ञानिक टीमों ने 728 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचकर लगभग 1 करोड़ किसानों से संवाद किया। जिन जिलों में अलनीनो का संभावित प्रभाव है वहाँ भी किसानों से चर्चा की। आज हमने 43 उन्नत किस्में, 17 नई टेक्नोलॉजी और उत्पाद और 14 अलग अलग तरह के प्रकाशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि निर्यात गुणवत्ता वाले आम की तकनीकी, सुअरों के लिए स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर का टीका जो अभी तक हमारे पास नहीं था, आज वो भी समर्पित किया है राष्ट्र को। भारत का डिजिटल फाइल मानचित्र मैप और छोटे किसानों के लिए किफ़ायती कपास हार्वेस्टर भी शामिल है। आज कई MOUs भी साइन हुए हैं ताकि जो नई तकनीकियाँ हैं उनका कमर्शलाइजेशन होकर जल्दी किसानों तक पहुँच सके। और 100वें स्थापना वर्ष को ध्यान में रखते हुए 2 साल बाद है मिशन ICAR 100 के अंतर्गत हम 100 राष्ट्रीय संकल्पों पर काम करेंगे जो हम तय करेंगे। 100 यंग साइंटिस्ट ग्रांट चैलेंज भी हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारे युवा वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जीन एडिटिंग, प्रिसिजन एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। हम 100 जलवायु स्मार्ट विलेज भी विकसित करेंगे जो क्लाइमेट रिजिलेंट, टिकाऊ और आधुनिक कृषि के आदर्श मॉडल बनेंगे। हम ICAR के 100वें स्थापना वर्ष तक 10 करोड़ किसानों तक हमारी वैज्ञानिक तकनीकें पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है विकसित भारत 2047, उसके लिए जो लक्ष्य तय किए हैं, कृषि उत्पादन 2.1 बिलियन टन, बागवानी हॉर्टिकल्चर 777.7 मिलियन टन, दूध 628 मिलियन टन और मछली उत्पादन 40 मिलियन टन तक पहुंचे इस लक्ष्य

0: लेके वर्षवार बांटेंगे कि कितना हमको इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक साल में काम करना है, उसका हम प्रयत्न करेंगे। मैं ICR के 98 स्थापना दिवस पर फिर एक बार अपने सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, धन्यवाद।
1: इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98वें स्थापना दिवस पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। स्वर कमल किशोर बड़ाइक का, प्रस्तुति सहयोग रहा दिनेश कुमार का, संयोजन था शिवनंदन लाल का, और इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया तुषार पाराशर ने।
2: तो पायल बहन, अभी हमारे किसान भाई जानकारी ले रहे थे ICAR के 98वां जो स्थापना दिवस आज मनाया गया है उसके बारे में ये जानकारी दी जा रही थी रेडियो रिपोर्ट के माध्यम से, जिसमें स्वर था कमल किशोर का और सहयोग था दिनेश कुमार का, और इसके संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर। और निश्चित रूप से देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं पायल बहन, उन्होंने अद्भुत योगदान दिया है हमारी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो उन्नत किस्में तैयार की हों या अभियंत्रिकी के क्षेत्र में जो है हमारे किसान भाइयों के लिए विशेष योगदान रहा हो।
3: आपने सही कहा अतुल भाई, क्योंकि देखिए नए नए जो आविष्कार हैं, नए नए तकनीकी आविष्कार हैं और किस्मों से संबंधित जो बातें हैं, और भाई पशु हर क्षेत्र में जो है वो ICAR जो है कृषि से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उसमें अच्छे अच्छे अनुसंधान कर रही है, कार्य कर रही है। और भाई सरकार द्वारा भी कुछ ऐसी ही बढ़िया योजनाएं जो लेके आई जाती हैं हमारे किसानों के लिए, जो उस जिससे वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसी ही एक योजना है अतुल भाई, जिसे कहते हैं गोबर धन योजना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण भारत में पशुओं के गोबर और ठोस जैविक कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना है। इससे गांवों में स्वच्छता बढ़ती है, पर्यावरण सुरक्षित होता है और किसानों का तथा उद्यमियों के लिए आय व रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए इस योजना के तहत जो आपने बताया है कि पशुओं के गोबर, गोमूत्र और खेतों के जो जैविक कचरे का उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर लेते हैं पायल बहन, जिससे जो है जो मिट्टी जो खाद बनती है उससे जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो सुधरती है और जो उसकी मिट्टी की जो जलधारण क्षमता जो है वो भी बढ़ती है और फसल की जो उपज होती है उसमें भी जो है सुधार होता है।
3: बिल्कुल, और देखिए इसके लाभ बहुत सारे हैं अतुल भाई, जैसे कि भाई आप कचरे से, वेस्ट से, यानी कि कचरे से आप धन बना सकते हैं, गांव स्वच्छ हो सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, ग्रामीण लोगों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सकती है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं, इस योजना से भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं।
2: वही किसानों को गाय के गोबर से ये केचुआ खाद भी हमारे जो किसान भाई वो बना सकते हैं और बहुत सी ऐसे खाद तैयार हमारे किसान भाई कर सकते हैं जो अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। और ये तो रही जानकारी भाई गोवर्धन योजना के बारे में, और एक बात और कहना चाहते हैं कि पायल बहन के बिल्कुल बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और भाई अपने पशुओं की विशेष देखभाल करें, क्योंकि इसी मौसम में जो है पशुओं का जो है मुँहपक और खुरपका का जो रोग है वो भाई आ जाता है। तो कोशिश करें कि अपने पशुओं का भाई चिकित्सक से जो है टीकाकरण अवश्य कराएं और समय पर ये जानकारी भी लेते रहें कि आपके पशु को कोई अन्य कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है।
3: बिल्कुल, आप इसके लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो है, पशु स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाकर जो है बात कर सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2: और अब समय भी हो चला है अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने का, तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
3: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने आनंद लिया कार्यक्रम कृषि जगत का, और अब से कुछ ही देरी यानी ठीक 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब वक्त है कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त तलत। गजल हो या कव्वाली हो, ये एक रूहानी कैफियत बयान करने वाली दोनों विधाएं हैं। गजल में महबूब है तो कव्वाली में वो महबूब जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो एक शक्ति जिसे हम सब मानते हैं। और गज़ल वो शक्ति जो हमें मोहब्बत करने का एहसास दिलाती है, और मोहब्बत जब अपने आखिरी पड़ाव पर आती है तो वो मोहब्बत बन जाती है भक्ति। तो यही कुछ मिला जुला अंदाज़ है गज़ल और कव्वाली का। तो आपके लिए ये पहली कव्वाली फिल्म मकबूल से।

भी एहसास हो जाए कि वो आपके रूबरू है, और लेकिन ये गुमान फिर भी रहे कि शायद वो दूर है, तो ऐसी सूरत में ख़त जो है वो बहुत कीमती शय होती है। ख़त वो ज़रिया होता है जब दिल से दिल की बात एक कागज़ पर उतार दी जाती है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने दिल की बात लिखते हैं और अपने महबूब तक पहुँचा दें। लेकिन जो मज़ा वो पुरानी रिवायतों में है, वो नई में नहीं।

खत का जवाब आए और उस जवाब में वादा हो अगली मुलाकात का, और जब वो वादा वफा ना हो तब दिल और तेज़ी से धड़कता है और दिमाग जो है वो और मायूस हो जाता है। तो ये अब इस कार्यक्रम की आखिरी गज़ल मैं कहूँगी, और इस गज़ल को गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय की कथित आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में दिल्ली और हरियाणा समेत कई जगहों पर छापेमारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद और दिल्ली लोक निर्माण विभाग सड़क रखरखाव को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नो योर रोड परियोजना शुरू करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशीय तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इस रेलगाड़ी के शुरू होने से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। इन देशों में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। रेलगाड़ियों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस खंड पर यह अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका लक्ष्य युवाओं को अपने विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने के लिए आवश्यक हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना है।
1: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में भी लागू की जाएंगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान भी करेगी। इसके अलावा इन इंक्यूबेशन सेंटरों के संचालन, मेंटरिंग, नेटवर्किंग, नवाचार गतिविधियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए हर वर्ष संचालन संबंधी वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस नीति के तहत इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े स्टार्टअप्स को उनके विकास के विभिन्न चरणों के माइलस्टोन आधारित वित्तीय सहायता भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति केवल स्टार्टअप शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के शहीद भगत सिंह कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और पूर्व विद्यार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने साल भर चलने वाली हीरक जयंती कार्यक्रमों के कैलेंडर और कॉलेज के डिजिटल आर्काइव्स के QR कोड का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय पिछले 6 दशकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रथम की भावना का विकास कर रहा है।
2: कॉलेज में अपनी अपनी फील्ड में इस भावना को जरूर इस दिल के कोने में रखना होगा, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं। आज राष्ट्र देवो भव का मतलब जिसने समझ लिया, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। और इस पावर फील्ड में हम सब जुड़ जाते हैं, एक एक भारतीय जुड़ जाता है। तो जब एक व्यक्ति देश के प्रधान मोदी जी ये करते हैं तो हम 140 करोड़ भारतीयों को उस पे गर्व होता है।
0: श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के प्रस्तावित नए परिसर में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास विकसित करने की योजना बनाई गई है। डीयू कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कॉलेज की हालिया उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा

0: कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग में 101वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर 39वां स्थान प्राप्त किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल का विस्तार और नवीनीकरण किया है। रीडिंग हॉल में शोधार्थियों और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 250 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 150 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल शामिल है। इन सुविधाओं में आरामदायक फर्नीचर, बेहतर लाइटिंग और वेंटिलेशन, आसान एक्सेस और पढ़ाई के लिए आरामदायक माहौल जैसी चीजें शामिल भी की गई हैं। जेएमआई के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर साइमा सईद ने कहा, यह कदम छात्रों के लिए आधुनिक, समावेशी और छात्र अनुकूल लर्निंग का माहौल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल के सातवें चरण के तहत 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण करेगी। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को उनके अपने घरों के नजदीक जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, जहां बीमारियों से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर विशेष बल दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में अभी 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दिल्ली का लोक निर्माण विभाग नो योर रोड परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य सड़क रखरखाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इस पहल के अंतर्गत राजधानी की सभी सड़कों में लगभग 2500 क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके नागरिक सड़क के निर्माण की मरम्मत काम करने वाली एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक क्यूआर कोड के जरिए सड़क से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे। इस पहल में लोक निर्माण विभाग का लगभग 1400 किलोमीटर का दायरा शामिल है। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज त्यागराज स्टेडियम में पुनर्स्थापित वर्षा जल संचयन प्रणाली का निरीक्षण किया और शहर में चल रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में 1000 मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणालियों के पुनर्स्थापन और 500 नई वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 400 मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणालियों का पुनर्स्थापन पूरा किया जा चुका है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज भलसवा स्थित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आवास परियोजना का निरीक्षण कर मरम्मत और विस्तार कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री सूद ने कमरों के आकार, नई फ्लोरिंग और अन्य निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इस परियोजना में 7400 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैट शामिल हैं। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास उपलब्ध कराने के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का वादा और गारंटी है, उसको हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आवास योजना के साइज को बड़ा किया गया है, उसी को मैच करने के लिए इन पुराने बने मकानों में ऑल्टरेशन करने के बारे में हमने चर्चा की। हम प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी थे, उनका सपना दिल्ली के गरीबों को सम्मानजनक आवास देने का था, उसको अवश्य पूरा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें दिल्ली, हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद सहित अन्य स्थान शामिल हैं।
2: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के भारत में

0: अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। जांच के दौरान एक मजबूत वित्त नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भारी मात्रा में विदेशी चंदा प्राप्त करने और उसे कई बैंक खातों और बिचौलियों के माध्यम से अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच से ये भी पता चला है कि नकद निकासी और कई छोटी छोटी धनराशि के हस्तांतरण के माध्यम से संदिग्ध लाभार्थियों को धनराशि भेजी गई। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा मार्ग वाली 110 कार्टन अवैध शराब और एक चार पहिया वाहन जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजौरी गार्डन में अवैध शराब की तस्करी में शामिल था। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के अपने 3 निर्वाचित पार्षदों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें निर्मला देवी शर्मा, कृष्णा देवी राघव और सुल्ताना आबाद शामिल हैं। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्य योजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राजधानी में भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा में शामिल हुए। त्यागराज नगर में रथ यात्रा कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत की सनातन सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक समरसता और लोक कल्याण की भावना का प्रतीक है। उपराज्यपाल ने हौसखास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की 48वीं वार्षिक रथ यात्रा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहिणी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में 21वीं वार्षिक रथ यात्रा में भाग लिया। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी रही और मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय की कथित आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में दिल्ली और हरियाणा समेत कई जगहों पर छापेमारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा और दिल्ली लोक निर्माण विभाग सड़क रख रखाव को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नो योर रोड परियोजना शुरू करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब समय है कार्यक्रम गीत मालिका का। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे एक विशेष रेडियो रिपोर्ट। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं?

लाखों श्रद्धालु और भक्तजन। कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्वभर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां एक सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ तालध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से

सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने

0: सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पुरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं, लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नज़ारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्यौहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज़ की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखी है, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से, और कार्यक्रम है फिल्म गीत मालिका का, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। DRM 810 किलोहर्ट्स पर श्रोताओं आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:40 होने को है। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान

0: सेवा शुरू, हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनों से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत

0: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
2: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
3: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जाँच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमे कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
4: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी बीजे और छेरा पहरा की पवित्र रस्म में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं।

0: प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: जगबंधु है।
2: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 पर बंद हुआ।
2: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। इंडिया अचीव्स मेजर माइलस्टोन ब्रिंगिंग ओवर 1 बिलियन सिटीजन्स अंडर सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air.

0: क्रिकेट में कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक्वामी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत में समाजी तहफ्फुज का दायरा 1 अरब से तजावुज कर गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में समाजी तहफ्फुज की कवरेज जो साल 2015 में 19% थी, साल 2026 में बढ़कर 68.4% हो गई है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज़्यादा शहरी समाजी तहफ्फुज के दायरेकार में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की सबका साथ सबका विकास के अहद की अक्कासी करता है। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के अपने दौरे के दौरान जींद रेलवे स्टेशन से जींद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर मुल्क में ही डिज़ाइन तैयार और इंजीनियर की गई है। इसके तैयारी में घरेलू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो जदीद रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों की अक्कासी करती है। इस ट्रेन के आगाज़ के साथ ही भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो जाएगा जहाँ हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पहले से ही कामयाबी से चल रही हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। इस ट्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है, ताहम इस मखसूस रूट पर इसे 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। माफ कीजिए, ये रिपोर्ट हम आपको बाद में सुनवाएंगे। बाद में वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ जाएंगे जहां वो 6,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट सेहत, तालीम और सड़कों के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता हैं। इसके बाद जनाब मोदी जालंधर जाएंगे जहाँ वो 5,470 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना और खित्ते की माशी तरक्की को रफ्तार फराहम करना है। वज़ीर-आज़म अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अज़सर-ए-नौ तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का भी इफ्तिताह करेंगे जिनमें जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के आवाम के दरमियान रेलवे, सेहत, सकाफत, राबता, तालीम और दीगर शोबों से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के मुंतज़िर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स अवाम, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। ज़िरात और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली जैसे चैलेंजेस के बावजूद भारत ने इस साल 376 मिलियन टन गजाई अजनास और 377 मिलियन टन बागबानी फसलों की रिकॉर्ड कायम किया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब साइंसदान बराह रास्त खेतों में किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,657 साइंसी टीमों ने 728 जिलों में खासतौर पर एल नीनो से मुतासर इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ किसानों से राबता कायम किया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनों के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मिशन ICAR 100 के तहत 100 यंग साइंटिस्ट ग्राम चैलेंज का आगाज करेगी जिसमें नौजवान साइंसदान मसनू जहानत, AI, रोबोटिक्स, जदीद ज़रात और आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से स्मार्ट ज़रात जैसे शोबों में कौमी सतह पर मुकाबले मुनक़द किए जाएंगे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से 100 स्मार्ट गांव भी तैयार करेगी जो पायदार, जदीद और आबोहवा की तब्दीली से हम आहंग ज़रात के मिसाली नमूने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल ICAR ने पिछले एक साल में 44 फसलों की 386 बेहतर अकसाम तैयार की हैं जिनमें 94% आबोहवा की तब्दीली के खिलाफ मज़ाहिम फसलें और 29 अकसाम गजाइत से भरपूर हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंसी इदारों, सनत और रियासती हुकूमतों के दरमियान मजबूत इश्तराक की अपील की ताकि मुल्क भर में स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा टेक्नोलॉजियों के बड़े पैमाने पर निफाज को यकीनी बनाया जा सके। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR की एक साल तवील प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि कि बुनियादी ढांचे की भारत

0: ओल्ड चैनल और इजाफी फ्रीक्वेंसीज पर भी सुना जा सकता है। जकार्ता में आज 19 और 23 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी मुहिम का अख्ताम किया। विश्वनाथ सुरेश ने 50 किलोग्राम के जुमरे में और गंगा ने 55 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता। 23 साल की उम्र तक के मर्दों के फाइनल में भारत ने सोने के दो तमगे जीते हैं। वंशज ने फाइनल में 65 किलोग्राम के जुमरे में भरपूर मुकाबला किया, लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। मर्दों के 19 साल से कम उम्र के फाइनल मुकाबले में भारतीय बॉक्सर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 234 रन का निशाना रखा है। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह ईशान किशन को शामिल किया गया है। भारत को सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु आज टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दुनिया की 5 नंबर की चीनी खिलाड़ी हैन यू को सीधे सेटों में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरे राउंड के इस मुकाबले में सिंधु ने सिर्फ 35 मिनट में आला दर्जे की चीनी खिलाड़ी को 21-16, 21-14 से हरा दिया। कल उनका सामना जापान की नोजोमी ओकुहोरा से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की शिकस्त के बाद सिंधु टूर्नामेंट में वाहिद भारतीय खिलाड़ी रह गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिनों में मुल्क के मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों, मशरकी उत्तर प्रदेश और ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, जबकि राजस्थान में इस महीने की 22 तारीख तक इसी तरह के मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। महकमे मौसमियात ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो 21 जुलाई तक जुनूब मगरबी बहिरा अरब और अगले 2 दिनों तक जुनूबी खलीज बंगाल और इससे मुल्हिका इलाकों में जाने से गुरेज करें। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने सामाजिक तहफ़ के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज़्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संग मील अबूर किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बरह रास्त कमर्शल परवाज का आगाज़ हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमेरिका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि 3 मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, भारत कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जहां एक तरफ बहुतायत में अनाज या अन्न का उत्पादन करता है, तो दूसरी तरफ भारत की जो खेती है वो वैज्ञानिक और उन्नत है और तकनीकी रूप से सक्षम है। भारत की खेती को इतना उन्नत, तकनीकी रूप से सक्षम और भारत के अन्न भंडारों को लगातार भरने का जो एक बीड़ा उठाते हैं हमारे कृषक उठाते हैं, लेकिन कृषकों के समर्थन और उनकी सहायता के लिए बहुत से संस्थान भी काम करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ऐसा ही संस्थान है।

0: ने लगभग 98 वर्षों से देश की सेवा की है, कृषि क्षेत्र को लगातार समृद्ध बनाया है। तो आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98 स्थापना दिवस के अवसर पर और जिस तरह से इस संस्थान ने भारत को कृषि प्रधान देश और उन्नत कृषि के मामले में सक्षम बनाने में जो भूमिका निभाई है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर मांगीलाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आपको जो ये लंबा सफर रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का और 98वां जो स्थापना दिवस मनाया है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और चर्चा की शुरुआत इससे ही करते हैं कि जो ये एक पूरा सफर रहा है, कैसे आप देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, भारत की खेती के लिहाज से इस सफर को, क्या सबसे बड़ा योगदान आप मानते हैं इस संस्थान का?
1: धन्यवाद। सबसे तो पहले मैं आज अपने श्रोताओं को, स्पेशली हमारे किसानों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज इस 98वें स्थापना दिवस के मौके पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97 साल का ये सफर, क्योंकि 98वां स्थापना दिवस आज मनाया है, काफी गौरवशाली रहा है। यदि आप देखें तो हम खाद्यान्न में, हॉर्टिकल्चर में, लाइव स्टॉक सेक्टर में, फिशरीज सेक्टर में हमने जो सफर तय किया है वो बहुत अद्भुत है। हमें आयात पर निर्भर होना होता था। आज हमारे देश में अन्न के भंडार इतने भरे हुए हैं। आज हमारा जो एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन जो इस साल का मैं बताऊं आपको, 376.7 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, 377 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, मिल्क का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, लगभग 20 मिलियन टन के आसपास फिश का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट। ये सारा का सारा जो जितना हुआ है, इसके बैकग्राउंड में विज्ञान, तकनीकी, पॉलिसी, किसानों की मेहनत सारा शामिल है। और ये पूरा इकोसिस्टम के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरे देश में काम करता है। ये विश्व का एक सबसे बड़ा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हमारे जो 114 संस्थान, हमारे 731 कृषि विज्ञान केंद्र है जिनको हम काम करते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है 80, उनके साथ में काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है
0: जी।
1: और काफी हमने प्रगति की है। और स्पेशली यदि हम आज, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस है, एक रिफ्लेक्शन पिछले एक साल का यदि मैं करूं तो बहुत बड़ा काम इसमें हुआ है। पिछले एक साल में हमने 19.5 मिलियन टन के लगभग फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया है एक साल में, 7 मिलियन टन के लगभग हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया है, फिशरीज का, लाइव स्टॉक का, और इन सब की यदि वैल्यू मैं करूं तो लगभग 2.25 लाख करोड़ के लगभग एडिशनल वैल्यू मैं बता रहा हूं जो एक साल में हुआ वो है। और इस सब के पीछे अनुसंधान का हाथ है, उसके साथ साथ पॉलिसी और किसान की मेहनत तो है ही है। तो ये गौरवशाली इतिहास है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का।
0: बिल्कुल, आपने जैसे कि बात की शुरुआत में ही कि जो भारत की कृषि है, या कृषि को हम अगर पूरी परिभाषा के साथ देखें तो इसमें फिशरीज है, डेयरी है, लाइव स्टॉक है, हर तरह का क्षेत्र शामिल है। और इसमें भारत के जो प्रगति है उसके आपने बहुत पॉजिटिव आंकड़े और एक समृद्ध देश के आंकड़े आपने प्रस्तुत किए। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन से अहम नवाचार, इनोवेशन या रिसर्च या फिर खेती के लिए बड़े पॉलिसीज रही हैं जिन्होंने भारत की खेती की तस्वीर को बदला है इन बीते कुछ वर्षों में, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
1: सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है बीज, और क्वालिटी बीज, हाई यील्डिंग सीड, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड, इसके ऊपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत काम किया है। हमारा पिछले 10-11 साल का देखें तो 3000 से ज्यादा क्रॉप वैरायटी जो हमने रिलीज किए हैं, उनमें से ज्यादा वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट है। और इसी को यदि आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में चाहे वातावरण की विषम परिस्थितियां रही हो, उसके बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन घटा नहीं, बढ़ा है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने में बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे क्रॉप्स की हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की हो। उसके साथ साथ में पशुधन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ब्रीडिंग और बाकी मेटेरियल, इम्प्रूव्ड ब्रीड और उनकी तो बात है ही है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो वैक्सीन पे काम किया है, हमने क्विकली उसको जो रेस्पॉन्ड किया है, चाहे फुट एंड माउथ डिजीज हो, चाहे लंपी स्किन डिजीज हो। और मैं, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमने फाउंडेशन डे के दौरान एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वैक्सीन रिलीज किया है जो एक अपने आप में ब्रेक थ्रो है। तो उसके कारण से जो एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। हमारे प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे वातावरण हो, उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। लैंड

0: डिग्रेडेशन जो वाटर से होता था 125 मिलियन हेक्टेयर, वो कम होके 80 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। उसके अलावा सैंड ड्यून स्टेबिलाइजेशन, चाहे आप डेजर्ट की बात करते हैं, तो उसपे काम हुआ है। हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेज बना के जो काम किया है और उसका अप स्केलिंग किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हमारी ऊसर भूमि और इस तरीके की जो भूमि थी डिग्रेडेड, उनका रिक्लेमेशन का बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने फार्म मैकेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा काम किया है और फार्म मैकेनाइजेशन का लेवल काफी बड़ा है, क्योंकि अभी लेबर की अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस ऑफ द ऑपरेशन एक काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, तो मैकेनाइजेशन पे बहुत बड़ा फोकस हमने किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है।
1: बिल्कुल, अगला सवाल मेरा डॉक्टर मांगेलाल इसी पर ही था कि जैसे ही आपने बहुत से प्रयोगों की बात की, लेकिन प्रयोगशाला से लेकर किसानों तक, खेतों तक उस तकनीक को पहुंचाना ये कितना बड़ा कदम रहा है और कैसे इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है संस्थान द्वारा, इस पर भी आप प्रकाश डालें। और क्योंकि हम इन दिनों बहुत कुछ ऐसा भी सुन रहे हैं कि भविष्य में जो बीज की तकनीक है वो बिल्कुल बदलने वाली है और जो प्रयोगशालाओं में इस पर शोध भी हो रहे हैं, और हमने पहले भी देखा है कि जो एक जैविक प्रयोग होते रहे हैं फसलों को लेकर, बीजों को लेकर, ये तकनीकें किसानों तक पहुंचे, धरातल पर इनका क्रियान्वयन हो, तो कैसे संस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई है इसमें?
0: बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं ये बताना चाहता हूं कि डिस्कवरी और डिलीवरी आइसोलेशन में नहीं हो सकती, और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो पूरा फोकस है वो है डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम। और डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा फोकस है डिमांड ड्रिवन रिसर्च। हम रिसर्च वो करें जिसकी किसान को जरूरत है, जो किसान मांगता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में वन वे ट्रैफिक नहीं करते हुए ये हम पार्टिसिपेटरी जो काम करते हैं कि टेक्नोलॉजी लैब में बनती है लेकिन उसका पार्टिसिपेटरी वैलिडेशन इवेल्युएशन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं केवीकेज के थ्रू, एक्सटेंशन के थ्रू, उसपे काफी काम करते हैं। और डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में होगा कि पिछले साल मई जून में हमने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। हमारे वैज्ञानिकों की 2000 से ज्यादा 2100 से ज्यादा टीम 15 दिन तक खेतों में थी पूरे देश में 730 लगभग जिलों में, और 15 दिन में हमने लगभग 1,35,00,000 किसानों से सीधा संवाद किया। ना उस संवाद से एक तो है कि टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचाए, लेकिन दूसरा तथ्य उसका यह भी था कि हम किसान की डिमांड साइड को समझें, और उसी को लेते हुए हमने हमारी रिसर्च में क्या हमें नया करना है, किस चीज की डिमांड है वो कर रहे हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लैब टू लैंड का जो फोकस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून के बीच में चलाया। देश में लगभग 1,650 से ज्यादा टीम उसपे फिर जुटी, और उसमें सिर्फ ICAR की बात नहीं है, हमारा फोकस है एक देश एक कृषि एक टीम, और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हम कृषि विश्वविद्यालय स्टेट्स का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स का जो अमला है वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ICAR हमारे इंस्टीट्यूशन सभी लोगों को यूनिवर्सिटीज को मिला के और इसके ऊपर काम किया, क्योंकि इस साल विशेष परिस्थितियां रही है और उसमें खेत बचाओ में यही है कि फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उसको कैसे ठीक किए, बैलेंस कैसे करें, तो उसपे जागरूकता, प्राकृतिक खेती पे देश का बहुत बड़ा एक फोकस है तो उसकी जानकारी किसानों को वो पहुंचाएं। उसके अलावा जो एलनीनो का इफेक्ट है तो कौन सा वैरायटीज, कौन सा सीड, कौन सी क्रॉप कहाँ पे, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो हम उसके अलावा ये भी कर रहे हैं कि जैसे मैं एलनीनो की बात करूं तो हमने 315 जिले जो वल्नरेबल देश के हैं उनके लिए कंटिजेंसी प्लान बना के सारे स्टेट्स के राज्यों के साथ में डिस्कशन करके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको पहुंचाया है। तो हम एक्सटेंशन की दिशा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा एक पूरा एक्सटेंशन का डिवीजन है।
1: क्योंकि आपने एलनीनो की चर्चा की, उसी से मेरे मन में सवाल आया कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक चुनौती तो ये रहेगी पूरी दुनिया के सामने कि दूध या खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने रहे, हमारे देश में भी एक इतनी बड़ी जनसंख्या की पेट भरने के लिए दुग्ध उत्पादन की एक बहुत बड़ी टारगेट रहेगा, तो ऐसे में जो फसलें और जलवायु परिवर्तन भी एक चुनौती है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें हों, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो, इन सब की चुनौतियों को लेकर क्या लक्ष्य रखता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने सामने?
0: मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा फोकस है ये क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर ही है, और जो आज भी जैसे हमने वैरायटीज रिलीज की है तो 94% वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज है। हमारा सारा का सारा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने पे है, और उसी का परिणाम है कि हमारा प्रोडक्शन क्लाइमेट की रिस्क होते हुए भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। लेकिन मैं क्रॉप वैरायटीज की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे लाइव स्टॉक की ब्रीड हो, चाहे फिश की ब्रीड हो, सभी में क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। नाउ ये तो हो गया ब्रीडिंग वैरायटीज ब्रीड्स की बात, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर

0: पे है। यदि आप देखें तो पिछले 15-20 साल में यदि रेनफेड एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है क्लाइमेट चेंज के कारण से, जहां रेनफॉल की अनसर्टेनिटी होती है, डिग्रेडेड लैंड होती है, वहां पे हमने प्रोडक्टिविटी गेन इवन इरिगेटेड एरिया की तुलना में, मैं कंपेरेटिव गेन्स की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा किए हैं। तो हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ी है क्योंकि रेनफेड एरियाज में वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो हमारे सारे एफर्ट हैं कि सोयल का इरोजन कम हो, वाटर का कंजर्वेशन हो, सोयल हेल्थ इंप्रूव हो। अभी मृदा का स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक
1: बिल्कुल।
0: इश्यू है।
1: और आखिर में आपसे मैं यही समझना चाहूंगा डॉक्टर मांगीलाल, सस्टेनेबल खेती के मॉडल को लेकर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें हम आपसे थोड़ी सी चर्चा ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी करना चाहेंगे, जिसमें जो खादों का प्रयोग है वो सस्टेनेबल तरीके से हो और मिट्टी भी स्वस्थ रहे। तो ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इसको लेकर भी कितने प्रयास हैं और कैसे इस विषय को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है संस्थान की ओर से?
0: फूड इज मेडिसिन, उस लाइन पे हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने ICAR और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलके एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया है,
1: बिल्कुल।
0: सेहत स्टैंड फॉर साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सेहत है और उसमें जो हमारी बायोफोर्टिफाइड वराइटीज जो न्यूट्रिशियस होती है उस पर फोकस है। उसका वो क्लिनिकल ट्रायल करके उसको हम आगे कैसे लेके जाए। लेकिन उसके अलावा जो छोटे किसान है, हमारे यहाँ जोत छोटा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ फसल ही नहीं हो, उसमें हॉर्टिकल्चर भी हो, उसमें लाइव स्टॉक भी हो, उसमें सेकेंडरी एग्रीकल्चर की एंटरप्राइजेज भी हो, सारी होगी। तो एक तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, जो क्लाइमेटिक शॉक्स हैं उनसे रेजिलियंस बढ़ेगा, लेकिन ये वो डाइवर्सिफाइड फूड होगा तो सस्टेनेबल एंड हेल्थी डाइट जो कंट्रीब्यूट कर देगा तो वो ह्यूमन हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो फूड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बहुत ज्यादा हैं। एक तो फूड और एक हमारी लाइफ स्टाइल, वो दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो हम एग्रीकल्चर को हेल्थ के साथ में कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ये सारी की सारी चीजें आती है। और इन सब चीजों के पीछे यदि हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी, सॉयल हेल्थ हमारा फाउंडेशन है, तो हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे। पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उसमें जो दाने आएंगे उसको खाके मानव स्वस्थ रहेगा, उसका चारा खाके पशु स्वस्थ रहेगा, और यदि सारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। और इसलिए भारत सरकार का एक कमीशन है वन हेल्थ, तो ये सारा वन हेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करता है और हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर मांगीलाल जाट, आप कार्यक्रम में जुड़े।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Countrywide.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल

0: 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियों चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे दिल्ली चेन्नई मार्ग पर ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की अस्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी बीजे और छेरा पहरा की पवित्र रस्म में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करें। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 5 ओवर में 2 विकेट पर 14 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गज़लों पर केंद्रित कार्यक्रम गुलदस्ता, और कलाकार रहीं सुमिता दत्ता। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 10:30 हुए हैं और ये समय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्री राजा अली खां का राग बागेश्री में गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्री राजा अली खां का राग बागेश्री में गायन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
3: India's hydrogen train features a 10-coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi today held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of Father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that Father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. The National Testing Agency NTA has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush, and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counselling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centres in 551 cities in India and 14 cities abroad. The grand annual Rath Yatra of Lord Jagannath is drawing lakhs of devotees across the country. While the epicenter of the festival is the holy city of Puri in Odisha, the chariot festival is celebrated with immense devotion, vibrant processions and cultural festivities across multiple states. In men's cricket, chasing a target of 234 runs set by India, England were 68 for 3 in 15 overs in second one-day international of three-match series at Sophia Gardens, Cardiff, when reports last came in. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu outclassed world number 5 Han Yui of China to storm into the quarterfinals of the Japan Open in Tokyo today. She will next face Nozomi Okuhara of Japan tomorrow. And that is the end of this news bulletin.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आप जुड़ गए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और समय फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपके अपने दोस्त चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार।
4: सब लोग नजर आए।
3: जी हाँ, 11:10 हो चुके हैं रात्रि के और शहर अपनी आंखें मूंद रहा है। जी हाँ, सोने की तैयारी आप सभी की होने वाली होगी या फिर हो भी चुकी होगी। आसमान ने काले मखमली लिबास में खुद को लपेट लिया होगा।

आप जुड़ गए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से और एक बार फिर आपको बता दें कि आप हमसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पर ipradiodelhi@gmail.com पर। जी हाँ, ये है हमारे ईमेल आईडी जिसके थ्रू आप जुड़कर हम तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। हम बात करें उस चांद की जो इस वक्त सितारों की भीड़ में भी खुद को अकेला सा रहता है। जी हाँ, अकेले होने के बाद भी वो अपनी एक मखमली सुंदर एक सफ़ेदी जो चादर है वो हम तक पहुंचाता है। इससे और खूबसूरत बात क्या होगी। अगर आप भी अकेले हैं ज़िंदगी में तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं या फिर किसी और का सहारा नहीं बन सकते हैं। अकेला इंसान भी उस भीड़ में सबसे अलग होता है, सबसे यूनिक होता है, जो हम नहीं पहचान पाते हैं। खैर, हम चांद की बात करेंगे आज के कार्यक्रम में और आप भी चांद से जुड़ी बात हम तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा।

जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं चांद की। और कभी आपने गौर किया है, इस रात के पहर में चांद कितना अकेला दिखता है? करोड़ों सितारों की भीड़ में भी वो चुपचाप अपनी ही रोशनी में नया ऐसा दिखता है, धरती को निहारता है और खुद अकेला सा रहता है। शायद हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चांद होता है। दिन भर की भाग दौड़, लोगों की भीड़, हंसते बोलते चेहरे, और फिर रात की वो जब 11 और 12 बजते हैं, तब ऐसा लगता है सब कुछ ठहर जाता है। तब वो सन्नाटा हमारे बेहद करीब आ जाता है। चांद को देखना दरअसल खुद के खालीपन से रूबरू होना होता है। वो चांद गवाह होता है हमारे उन आंसुओं का जो तकिए में जज्ब हो जाते हैं, उन मुस्कुराहटों का जो हम में या हमने किसी की याद में अकेले ही मुस्कुरा के गुजार दिए जाते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, दुलारी फिल्म से गीत रहा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। उम्मीद करते हैं आपने ज़रूर पसंद किया होगा। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:21 हो चुके हैं और चलते हैं आपके संदेशों की तरफ जो चांद की कुछ बातें हम तक लेकर आए हैं। अहमद फुलवाले जी ने भी हमसे जुड़ गए हैं, लिखते हैं कि आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है और हमारे मेल को ज़रूर शामिल करें। गीत की रिक्वेस्ट भेजी है और ये है करजत मुंबई से अहमद फुलवाले, दुखनी जूही इमरान, कापसीरा बॉर्डर से बिटिया आमना, आसमा आशु और समस्त फैमिली। और इसी के साथ किशन सपकाल जी ने भी हम तक अपना संदेश पहुंचाया। हमेशा की तरह आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनवा दीजिए। बिल्कुल। और इनके साथ सोनिया सपकाल हैं, एसएम जावेद जी ने भी अपनी बात हम तक पहुंचाई है गीत की रिक्वेस्ट के साथ। एसएम जावेद शागुफ्ता अंजुम है गुमला झारखंड से। भारती नागनपुरे जी भी मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं और सोमदत्त जी जो हैं वो जिला पटियाला पंजाब से हमें सुन रहे हैं। कैरव ज्योति रानी गुरमत कौर मनु और इन्होंने भी गीत की रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाई है। फारूक अली खां जी भी लिखते हैं कि आपसे गीत की गुजारिश है। और कस्बा गन्नौर यूपी से इन्होंने दो गीत की रिक्वेस्ट भेजी है, फारूक अली खां, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा। शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और रश्मि पांड्या जी भी हम तक पहुंच गई हैं अपनी संदेश के साथ और लिखती हैं कि इस समय मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब सफ़र में हूं और हम लोग विदेश जा रहे हैं तो छोड़ने के लिए परिवार के साथ आई हूं, तो सफ़र में आपका सुहाना साथ है। खूबसूरत आप इस वक्त भी हमें सुन रही हैं, इससे खूबसूरत बात और क्या होगी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार। और खूबसूरत रहता है कि कई लोग जो हैं वो इस वक्त चाहे वो सफ़र में हो या फिर सोने की तैयारी में हो, कहीं ना कहीं जो है ना वो हमसे जुड़े रहते हैं। इससे बेहतरीन बात और कोई नहीं होगी। कई हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जो 11:10 का इंतज़ार करते हैं रात के समय, अपने एक फेवरेट प्रेजेंटर का इंतज़ार करते हैं कि इस वक्त वो आएंगी और हम अपने दिल की बात उन तक पहुँचाएँगे, तो ये बहुत खूबसूरत रहता है। इसी के साथ साथ अगले संदेश की तरफ चलते हैं। हाजी मजहर जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचा है। स्वीटी जोड़ा जी भी कृष्णा पार्क दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। बिट्टू गंगनेजा, किशन वांजनी और साथ साथ शंकर लाल जायसवाल जी ने भी अपने गीत की रिक्वेस्ट के साथ हम तक अपनी बात को पहुंचाया। बहुत सारे संदेश हैं, लेंगे एक एक करके आपके संदेशों को। लेकिन चांद की अगर बात हो रही है तो देखिए इतनी भीड़ में भी वो अकेला मुस्कुराता हुआ एक ठंडक सी हम तक पहुँचाता है, तो इस पर भी अपनी बात ज़रूर लिख के भेजिए, हमें इंतज़ार रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना और उम्मीद करते हैं इस गीत को भी आपने ज़रूर पसंद किया होगा, लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ हमें अपनी बातों को भी बरकरार रखना चाहिए। कितना अजीब है ना, वो खुद तपता है लेकिन दूसरों को सुकून और ठंडक देता है, ठीक उन अपनों की तरह जो खुद की तकलीफ़ें छुपाकर हमारी ज़िंदगी में सुकून की चांदी बिखेर देते हैं। आज रात इस शांत पहर में जरा अपनी खिड़कियां तो खोलिए। जी हाँ, अपने कमरे की, अपने घर की जरा खिड़कियां तो खोलिए, उस ठंडी हवा को महसूस तो कीजिए, उस चांद की मध्यम रोशनी में, वो साधारण धूप जैसी नहीं है, वो कायनात का मरहम है जो हमारे दिन भर के थके हुए मन को सहलाने आता है और कह रहा है ठहर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अकेला चांद भी हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि देखिए भीड़ में भी मैं अकेला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि अकेला इंसान घबराए या फिर किसी काम को ना हो, लेकिन उसकी ठंडक आपकी तरह ही है। तो समझिए, अगर आप अकेले भी हैं इस रात के समय में तो खुश नसीब हैं। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:30 होने को हैं और आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। मैं हूं आपके साथ चेतना।

देखिए ना, जो घड़ी की सुइयां हैं ना, वो इतनी तेजी से दौड़ती हैं कि बस मुझे तो ये लगता है कि मैं कोई भी आपका संदेश ना छोड़ूं। बस यही उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं आपका नाम, आपकी बात मुझसे ना छूट जाए। फारूक अली खान जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, लिखते हैं कि हम भी इस वक्त कस्बा गन्नौर यूपी से मेरठ आए हुए हैं और आपको सुन रहे हैं। जितनी मोहब्बत से हम आपको सुनते हैं, उतनी ही मोहब्बत के साथ आप हमारे लिखे खतों को प्रोग्राम में शामिल करती हैं। इसके लिए दिल से शुक्रिया। शुक्रिया फारूक अली खान जी। और अच्छा लगता है कि आप मेरी इस कोशिश को मतलब सराहते हैं, आप मेरी इस कोशिश को ध्यान में रखते हैं, तो इसके लिए शुक्रिया। सतीश अनेजा जी भी हमें चंडीगढ़ से सुन रहे हैं और बेहद खूबसूरत एक शायरी भी उन्होंने लिख के भेजी, ज़रूर आपके साथ साझा करूँगी कुछ देर में। दिलावर खां जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, ये रघुवीर नगर दिल्ली से हमें सुनते हैं। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे जी भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आसिफ अली भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ये हमें कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से सुनते हैं। मुस्कान आसिफ सारिक अली खां हैं इनके साथ में। आप सभी का शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। और आप कार्यक्रम को पसंद करते हैं, इंतज़ार रहता है आपको मेरा, हमारे प्रोग्राम का, तो इससे खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती। और हमारे पास सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने भी अपना संदेश पहुंचाया है। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी चुग ने भी हमें रफ़ी जी की आवाज़ में गीत की रिक्वेस्ट भेजी है। अश्वनी चुग हैं ये, और ये हमें सुनते हैं पंचकुला सेक्टर 9 से। शुक्रिया संदेश भेजने के लिए, अगर आप पूरे पते के साथ भेजते तो ज़रूर सही रहता। फारूक अली खान जी ने भी बात लिख के भेजी है कि चांद का जिक्र करके बचपन की बेशुमार ताज़ा याद हो जाती हैं। माँ ने चांद को लेकर काफ़ी कहानियाँ सुनाई थी जो आज भी याद है। चांद को लेकर बेशुमार गीत भी लिखे जाते हैं, और वाकई में चांद जो है ना, उसकी तारीफ अलग ही है। हम अपनी महबूबा की बात करें, अपने दोस्त की बात करें, या किसी खूबसूरत ख्याल की, तो चांद जो है ना, वो कहीं भी नहीं छूटता है। विनय भान कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और लिखते हैं कि गुड इवनिंग मैम। और इन्होंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हमें अपने संदेश को भेजा है। लिखते हैं कि बहुत दिनों बाद आपको सुन रहे हैं, अच्छा लगा सुन के। और आप कितने सहज से समझाते हैं कि कैसे अकेलेपन में अपने आप को सर्वाइव करना होता है। शुक्रिया आपको इतने दिनों बाद।

सुनने के लिए, और एक गीत की रिक्वेस्ट भी भेजी इन्होंने काला बाजार फिल्म से। तो विनय, पूरी कोशिश करेंगे हम आपके गीत को प्ले करने की, और बहुत सारे संदेश हमारे पास एक एक करके ज़रूर लेंगे। लेकिन आप जुड़े रहिए फिल्म संगीत कार्यक्रम से और अपनी दोस्त चेतना के साथ। चांद की कुछ बात हमसे साझा करेंगे, हमसे शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा।

जी हाँ श्रोताओं, काला बाजार से ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने और संगीत यहाँ ST परमन ने। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इस गीत को पसंद किया होगा। और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11 बजकर पूरे 38 मिनट हुए हैं।

चलते हैं संदेशों की तरफ और सिद्धांत गुनकने जी ने हमें अपना संदेश भेजा है राहुल नगर अमरावती से। अर्चना ताई, हिमा हीरामन शिंदे और प्रणय ने इस संदेश को भेजा है। फारूक अली खान जी लिखते हैं कि चांद अपनी जात तो बता दे, ईद भी तू और करवा चौथ भी तू, बहुत खूबसूरत। मोहम्मद कमर जी ने लिखा है कि उनके चेहरे को देखकर चांद की याद आती है, उनकी जुल्फ लहराए काली घटा छा जाती है, बहुत खूब। भाई चांद के लिए कितनी खूबसूरत बातें की जाएं उतनी ही कम है। नासिर शेख जी ने भी अपना आदाब हम तक पहुंचाया है और इसके साथ साथ दिलावर खां जी भी लिखते हैं कि चांद केवल आसमान का एक खूबसूरत पिंड नहीं है बल्कि उम्मीद, प्रेम और शांति का प्रतीक भी है। इसकी शीतल चांदनी अंधेरी रातों में उजाला बिखेर कर मन को सुकून देती है। वाकई में अगर आप एक दिन भी सोचिए अगर चांद नहीं है, अंधेरी भरी रात तो होती ही है लेकिन और कितना अंधेरा छा जाएगा इसके बाद में हम नहीं सोच सकते हैं। तो चांद भाई उतनी ज़रूरी है जितना हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में ज़रूरी होता है। तो चांद को अगर हम सोचें एक दिन के लिए भी अगर वो नहीं है तो घबराहट सी होने लगती है। खैर सदियों से कवियों ने, लेखकों ने, कलाकारों ने चांद को अपनी रचनाओं में प्रेरणा बनाया है। दूर होकर भी चांद हर किसी के दिल में कुछ ना कुछ करीबी ज़रूर लेके आता है और हमें ये संदेश भी देता है कि अंधेरे के बाद रोशनी अवश्य होती है। बिल्कुल सही बात है कि रोशनी ज़रूर होगी, अगर रात है तो उसके बाद दिन का उजाला निश्चित है। राजकुमार जी ने भी हिसार से हमें अपना संदेश भेजा है। गांव फ्रांसी से हमें सुनते हैं। प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार हैं ये और किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल करें बिल्कुल। इसके साथ साथ बेहद खूबसूरत शायरी हमें सतीश जनेजा जी ने लिख के भेजी कि चांद भी क्या खूब है, ना सर पे घूंघट है ना सर पर बुरखा, कभी करवा चौथ का हो गया तो कभी ईद का, कभी ग्रहण का तो कभी ज़मीं पर होता है, अदालत की सुनवाइयों में होता है तो कभी अखबारों की सुर्खियों में, बेहद खूबसूरत। शुक्र है आसमान बादलों की गोद में है इसलिए ज़मीन पे कविताओं और गज़लों में महफूज हैं। बिल्कुल सही बात है, वो अकेला तो है आसमान में लेकिन यहाँ भी ज़मीन पर भी सबके दिलों में है चांद। खैर चांद की बात तो कुछ अलग ही है। आप भी अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर ipradio@delhi.gmail.com पर। जी हाँ, ipradio@delhi.gmail.com पर हमें इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का।

जी हाँ, श्रोता मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में चंद्रकांता फिल्म से ये गीत रहा, और उम्मीद करते हैं इस गीत को आपने ज़रूर पसंद किया होगा। और हम बात कर रहे थे चांद की। अगर आपके दिल में भी कोई दबी सी बात है या फिर किसी की याद है जो आँखों में तैर रही है, तो उस चांद को देखकर एक गहरी सी सांस लीजिए। वो दूर तो है लेकिन सब कुछ सुनता है, तो आप अपने दिल की बात भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन आप हम तक भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी बात का। और दिलावर खां जी ने भी हमें रघुवीर नगर से एक संदेश भेजा है, और लिखते हैं कि आपने मेरे नाम को शामिल नहीं किया लेकिन आपने मेरे मेल को शामिल किया, इसके लिए शुक्रिया। रघुवीर नगर से दिलावर खां, हसीना बानो, अलीज़ा नायाब और लड्डू। उम्मीद करती हूँ आपकी शिकायत को मैंने ज़रूर दूर किया होगा। दारा सिंह जी हरियाणा से हमें सुन रहे हैं, और इनके साथ संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा है। इन्होंने भी गीत की रिक्वेस्ट के साथ अपनी बात हम तक पहुंचाई है। अश्वनी चुग जी ने लिखा है कि आपने काला बाजार से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जो गीत चलाया उसके लिए शुक्रिया। पंचकुला सेक्टर 9 से हैं आशु चुग, गोविंद चुग। शुक्रिया, आप उन गीतों को भी पसंद करते हैं और प्रतिक्रिया भेजते हैं अपनी जिन गीतों को हम प्ले करते हैं। हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपकी वही पसंद हो जो आप सुनना चाहते हैं। कुछ ऐसे गीत होते हैं जो अचानक से प्ले हो जाते हैं, अचानक से हमारे कानों में आ जाते हैं, तो हमें लगता है हाँ यही तो था हमारी पसंद, इसी को तो सुनना चाहते थे हम। क्या शीशपाल वरदान जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और लिखते हैं कि किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल कीजिए, गाजियाबाद से हमें सुनते हैं ये। शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए।

जी हाँ श्रोताओं, चांद भले ही अकेला है लेकिन देखिए ना कितने सारे लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा ही होता है वो शख्स जो अकेला तो होता है लेकिन कुछ खास होता है। करोड़ों तारों की महफिल में भी वो कितना तन्हा है, शायद वो चांद भी हमारी तरह किसी एक को तरसता है। खिड़की से झांकते उस चांदनी का कोई कसूर नहीं, रात गहरी है और पुरानी यादों का सुरूर है। तुम जो कहो तो आज रात हम भी ठहर जाएं, जैसे चांद ठहर जाता है किसी की खिड़की के सामने आकर।

0: और एक बेहद खूबसूरत मेल के साथ नासिर शेख जी ने लिखा है कि चांद तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है रात के अंधेरे में भी निकल पड़ता है। बहुत खूबसूरत, महाराष्ट्र से इन्होंने अपने संदेश को हम तक पहुंचाया वाकई में, कि भाई वो तो अकेला निकल पड़ता है, वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। खैर, सुदर्शन मुखी जी ने लिखा है कि सुपर सॉन्ग सिलेक्शन है और हैव ए वेरी वंडरफुल इवनिंग एंड नाइट, और थैंक यू लिख के भेजे हैं सुदर्शन जी, इसके लिए धन्यवाद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। बोधराज खोरवाल जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया है और एक गीत की रिक्वेस्ट भेजी है हमें उत्तम नगर दिल्ली से। आप सभी हमें ध्यान से सुनते हैं, सभी गीतों को सुनते हैं और गीत के बोल भी लिख कर भेजते हैं कि अब आपने इस वाले गीत को प्ले किया है, इसके लिए शुक्रिया।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप जुड़े हुए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और समय है रात के 11:52 हुए हैं और देखिए ना, लगभग जाने का वक्त होने ही वाला है। इतनी सारी ढेर सारी बातें करी हमने चांद को लेकर, और यही उम्मीद करते हैं कि आप भी इस खामोशी भरी रात में अपने दिल की बात उस चांद तक ज़रूर पहुंचा रहे होंगे।

जी हाँ श्रोताओं, आप भी जाते जाते अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, गीत कैसे लगे, बातें कैसे लगी, हमें इंतज़ार रहता है। और इसी के साथ सतीश अनेजा जी ने हमेशा की तरह अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाई है चंडीगढ़ से। लिखते हैं कि बेहद खूबसूरत और दिलचस्प रही आज की प्रस्तुति। आज का टॉपिक आपने चांद लिया, चांद को समर्पित प्रोग्राम में चार चांद लगा दिया आपने, शुक्रिया। चलते प्रोग्राम में अपना मोबाइल लेकर मैं बाहर गेट के पास आ गया और उस ऊपर चांद की तरफ देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रोशनी और तेज़ हो गई है, बहुत खूबसूरत। और तारीफ़ों का तो खैर सिलसिला आप बना कर रखते हैं सतीश जी, बेहद शुक्रिया। अच्छा लगता है कि आप कार्यक्रम के अंत में अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाते हैं, इससे हमें हौसला मिलता है। नवी हसन जी ने भी जाते जाते हमें एक संदेश भेजा है कि दुबई नगर सिद्धपुरा टाउन से, ज़ुबैर अली खान, नवेद, सुहेल, अनम, शुक्रिया आप सभी का। और सुदर्शन मुखी जी ने भी अपनी आखिरी संदेश ब्लैंक के ये इसके साथ अपनी बात पहुंचाई है। हसीना जी ने अपनी बात हम तक पहुंचाई है, ये हमें सुनते हैं शहनाज, शबनम, शाहरुख, फारूक, जय विहार, नजफगढ़ से। चांद सिर्फ आसमान की शोभा नहीं बल्कि सुकून, प्रेम और उम्मीद का प्रतीक है। इसकी चांदनी हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, एक दिन उजाला ज़रूर होता है। बेहद खूबसूरत, इतने ध्यान से आपने कार्यक्रम को सुना, चांद की बातें करी, और सबसे खूबसूरत एहसास कि आप वाकई में मेरी बात सुनकर उस चांद की तरफ देखकर मुस्कुराए, बस सुकून सा मिल गया।

जी हाँ श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:56 और ये पूरे हुए 57 मिनट। फिलहाल मुझे कार्यक्रम से जाना होगा, लेकिन इसी वादे के साथ जा रही हूँ कि जल्द ही आपसे रविवार के दिन फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में और लेकर एक नए विषय के साथ, नई बातों के साथ। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। फिलहाल वक्त रात्रि के 12 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियाँ चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और BSF जवानों से बातचीत करेंगे। वे BSF से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पन राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूघस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे।
1: जग बंधु है गोसाई। पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 27 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen power trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will be on a three-day visit to West Bengal from today. Sources said that during the visit, he will participate in programs focused on border security, governance, law and order, and development. On Saturday, Mr. Shah will visit the Jumagach border outpost in Siliguri and interact with BSF personnel at the 18th Battalion border outpost. He will also inaugurate and lay the foundation stone for various development projects related to the BSF.

आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर रात्रि के 12:10। कुछ ही देर में आपके लिए कार्यक्रम होगा सुरों का सफरनामा।

सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। आज ये कार्यक्रम हम उस कलम के सिपाही के नाम कर रहे हैं जिन्होंने दुश्वारियों को हराकर शब्दों की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम की। 2 नवंबर 1942 रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ एक बच्चे ने आंखें खोली थी। नाम रखा गया देव कोहली। पार्टीशन के वक्त इनका परिवार सब कुछ पीछे छोड़कर दिल्ली आ गया और फिर देहरादून में बस गया। उनकी शुरुआती जिंदगी संघर्ष से भरी थी, लेकिन उनके दिल में शायरी का चिराग जल रहा था। 1964 में देव कोहली मुंबई आए, आंखों में बड़े ख्वाब लिए। तो फिर चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस पहले बड़े गाने से जिसने इन्हें पहचान दिलाई।

जब ये लिरिसिस्ट यानी रचनाकार जितनी मेहनत अपने इन गीतों को लिखने में करते हैं और वही इंसाफ इसे गाने वाले और म्यूजिशियन कर दें तो पूरा गीत निखर कर आ जाता है। और वही इंसाफ किया किशोर कुमार ने इस गाने के साथ जो लिखा था देव कोहली साहब ने ऑब्वियसली। और ये गीत लाल पत्थर के बाद ऐसा लगा कि देव कोहली का करियर ऊंचाइयां छुएगा, लेकिन किस्मत ने उनका इम्तिहान लिया। पूरे 18 साल तक वो बड़े पर्दे से लगभग गायब रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कहना था कि शायर कभी खामोश नहीं होता, वो बस मौके का इंतज़ार करता है। और वो मौका आया 1989 में। सूरज बड़जात्या ने उन्हें मैंने प्यार किया के लिए ब्रेक दिया। रातों रात देव कोहली का नाम घर घर में गूंजने लगा, आते जाते हंसते गाते जैसे गानों ने पूरे देश को इश्क करना सिखाया। और क्या आप जानते हैं उन्हें इस फिल्म के लिए कितनी तारीफ मिली? वहीं से शुरू हुआ राजश्री प्रोडक्शंस के साथ इनका वो सुनहरा दौर जो सालों तक चला।

अब बात करते हैं देव कोहली साहब की वर्सेटिलिटी के बारे में। 90s का वो दौर याद कीजिए। एक तरफ हम आपकी हैं कौन की पारिवारिक मिठास थी, तो दूसरी तरफ बाजीगर का स्वैग। देव साहब ने दिखाया कि वो जितने माहिर माए नी माए जैसे गाने लिखने में हैं, उतने ही उस्ताद ये काली काली आंखें लिखने में भी। इनकी जोड़ी अनु मलिक के साथ ऐसी जमी कि उन्होंने टन टनाटन और ऊंची है बिल्डिंग जैसे डांस नंबर से डांस फ्लोर्स पर आग लगा दी। उन्होंने हमेशा कहा कि उन्हें संस्कृति और मॉडर्निटी के बीच का पुल बनना पसंद है।

काम से हटकर अगर देव कोहली साहब की शख्सियत की बात करें तो वो बेहद सादगी पसंद इंसान थे। अंधेरी के अपने फ्लैट में वो घंटों बैठकर किताबें पढ़ते थे। उन्हें नए लोगों से मिलना और उनके दुख सुख सुनना पसंद था। वहीं से उन्हें अपने लिरिक्स की प्रेरणा भी मिलती थी। अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें कई बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया और उनके काम को हमेशा सराहा गया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड उनके चाहने वालों का प्यार था। 100 से ज़्यादा फिल्मों में 500 से ज़्यादा गाने लिखे। सन 2000 में उन्होंने विशाल शेखर और आनंद राज आनंद जैसे नए कंपोजर्स के साथ काम किया। फिल्म थी मुसाफिर और गाना था साकी साकी। इस आइटम सॉन्ग ने धूम मचा दी और देव साहब को आईफा अवार्ड्स में नॉमिनेशन दिलाया। इन्होंने कांटे, शूट आउट एट लोखंडवाला और टैक्सी नंबर 9211 जैसी एजी फिल्मों में भी कमाल के लिरिक्स लिखे। उनका ये रेंज देखकर हर कोई दंग था। वही शायर जो मैया यशोदा लिखता है और वही गणपत और साकी भी लिख रहा था।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देव साहब के गाने आज भी चार्ट बस्टर्स हैं? उनके लिखे पुराने गानों को जब जुड़वा 2 या बाटला हाउस में रिक्रिएट किया गया, तो आज की जनरेशन ने भी उन्हें वैसा ही प्यार दिया। चलती है क्या 9 से 12 का रीमिक्स हो या ओ साकी साकी का नया वर्जन, इनके मुखड़े यानी कि जो स्टार्टिंग लाइंस हैं वो देव कोहली की ही देन है। इन्होंने दिखाया कि एक अच्छा लिरिसिस्ट वही है जिसकी लिखी बातें सदियों तक पुरानी ना हों। 2023 तक वो एक्टिव रहे और इनका आखिरी बड़ा काम जुड़वा 2 के गानों में उनकी पुरानी लेगेसी को नया रंग देना था।

अब हम शो के आखिरी पड़ाव पर हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और आज हम बात कर रहे थे देव कोहली साहब की। इनके गानों में एक खास बात थी, इनके शब्द कभी भी श्रोताओं को बोझ नहीं लगते थे। वो आम आदमी की भाषा में दिल की गहरी बात कह देते थे। हम साथ साथ हैं का टाइटल ट्रैक हो या कांटे फिल्म के गीत, उन्होंने हर मूड को पकड़ा। इनका मानना था कि एक गीतकार का काम सिर्फ धुन पर शब्द बैठाना नहीं, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाना होता है। आज जब हम उनके गाने सुनते हैं तो लगता है जैसे वो हमारी ही जिंदगी की कहानी सुना रहे हैं।

हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कलाकार हमेशा जिंदा रहता है। 26 अगस्त 2023, ये वो दिन था जब 80 साल की उम्र में देव कोहली साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से बॉलीवुड के एक सुनहरे युग का अंत हो गया, लेकिन देव कोहली साहब के लिखे गीत हमारे दिल में सदा गुनगुनाते रहेंगे, और जब जब हम उन गीतों को सुनेंगे तो यूं लगेगा कि वे आज भी हमारे बीच हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए और सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाज़त। छोड़े जा रही हूँ इस गीत के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सुरों का सफरनामा कार्यक्रम। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 1 बजने वाले हैं। अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियों चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी पर का दौरा करेंगे। वे BSF से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई

0: के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पू महारामोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बातचीत की और पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे। इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताज़ा समाचार मिलने तक 42वें ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said, this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 kilometers per hour, but on this section it will operate at a maximum speed of 75 kilometers per hour. Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will be on a three-day visit to West Bengal from today. Sources said that during the visit, he will participate in programs focused on border security, governance, law and order, and development. On Saturday, Mr. Shah will visit the Jumagach border outpost in Siliguri and interact with BSF personnel at the 18th Battalion border outpost. He will also inaugurate and lay the foundation stone for various development projects related to the BSF. In the afternoon, he will chair a meeting on border-related issues in West Bengal. Sources added that the Home Minister will also review the implementation of the three new criminal laws in the state. Prime Minister Narendra Modi yesterday held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his

0: condolences on the passing of the father, Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father, Amir of Qatar's enduring legacy, will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. The National Testing Agency NTA has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate, medical, dental, Ayush, and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counseling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centers in 551 cities in India and 14 cities abroad. The grand annual Rath Yatra of Lord Jagannath is drawing lakhs of devotees across the country. While the epicenter of the festival is the holy city of Puri in Odisha, the chariot festival is celebrated with immense devotion, vibrant processions and cultural festivities across multiple states. And the Goa government has tightened regulations governing casino operations by prohibiting entry of persons below 21 years of age into casino gaming areas. The notification also introduces stricter provisions regarding the payment of license fee for offshore casino vessels. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्यरात्रि के 1:10 गीत सुनहरे कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त कीर्ति, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। और आपको बता दें, ये गीत जिस फिल्म में था, यानी कि वो कौन थी, इसे डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब ये धुन उन्हें पसंद नहीं आई तो संगीतकार मदन मोहन ने उन्हें काफ़ी समझाया, और गाने की रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद जब डायरेक्टर ने इसे सुना तो वे इसके मुरीद हो गए। और आज ये गीत हमें भी बहुत पसंद है, और आप सुन सकते हैं कि जैसे ए दिल है मुश्किल, जो अभी कुछ पुरानी फिल्म है, उनमें आज भावनात्मक माहौल बनाने के लिए इस धुन का इस्तेमाल भी किया गया था। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म वो कौन थी का ये गीत।

0: अगला गीत फिल्म हम दोनों से आपके लिए आ रहा है, और इस गाने को लिखा था साहिर ने, साहिर लुधियानवी। जी हाँ, इस गाने के शब्द इतने आम और गहरे हैं कि ये हर दिल को छू लेते हैं, और जो इस गीत में लाइन है, दिल अभी भरा नहीं, इस लाइन को इन्होंने इतना आम शब्दों में बयां कर दिया कि ये गहरा रोमांटिक रूप इस गीत को मिल गया। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म हम दोनों से।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

अगला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, वो कहा जाता है कि इस खूबसूरत गाने के शुरुआती बोल जो हैं वो गीतकार शैलेंद्र ने एक माचिस की डिब्बी पर लिखे थे। जी हाँ, और साथ ही ये फिल्म फंटोश के लिए गाना लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे देवानंद की काला बाजार फिल्म में शामिल कर लिया गया। जी हाँ, आप शायद सही अनुमान लगा रहे होंगे कि मैं कौन सा गीत आपको सुनवाने वाली हूँ। खोया खोया चांद, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे संगीतबद्ध किया था SD बर्मन ने।

अगला गीत पुरानी हिंदी फिल्मों का जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, फिल्म प्रिंस से, जिसमें शमी कपूर और वैजयंती माला ने काम किया था और इसे मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो गीत है ये एक पब में लिखा गया था। जी हाँ, गीतकार हसरत जयपुरी जब एक नाइट क्लब में बैठे थे तब एक महिला की चमकती ड्रेस देखकर उनके दिमाग में ये गीत के शब्द आए थे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं पुराने हिंदी फिल्मी नगमे ऑफ गोल्डन एरा। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, साथ में सुमन कल्याणपुर, और संगीत शंकर जयकिशन का है। और दोस्तों आपको बता दें कि गाने में जो शम्मी कपूर का ताली बजाने वाला अनोखा डांस स्टेप है, उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। आइए सुनते हैं ये गीत।

गीत आप सुन रहे थे फिल्म ब्रह्मचारी से। अगला गीत जो हम आपको सुनवाने वाले वो है 1965 की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म गुमनाम। जी हाँ, ये बेहद और बेहतरीन रहस्यमय गानों में से एक है। जी हाँ, और आपको बता दें ये फिल्म मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी के प्रसिद्ध उपन्यास एंड देन देयर वर नन पर आधारित थी। और ये पहला हिंदी फिल्म गीत था जिसे दशकों बाद 2001 में आई हॉलीवुड फिल्म घोस्ट वर्ल्ड के साउंडट्रैक में इस्तेमाल किया गया था। आइए सुनवाते हैं लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

आइए अब सुनते हैं 1976 की सुपरहिट फिल्म कभी कभी से ये गीत, जो कि अपनी सदाबहार धुन के लिए खय्याम को उस साल का फिल्मफेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और मुकेश को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का। जी हाँ, और आपको बता दें कि इस गीत के दो वर्जन थे, एक जिसे मुकेश ने अकेले गाया था और दूसरा मुकेश और लता मंगेशकर का डुएट। दोनों ही वर्जन फिल्म में अलग-अलग मौकों पर बजाए जाते हैं। आइए सुनते हैं ये वर्जन।

बेहद खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसमें कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी द्वारा संगीतबद्ध है और ये गीत विनोद खन्ना और जीनत अमान पर फिल्माया गया था, फिल्म कुर्बानी से ये गीत। आइए सुनते हैं।

अच्छा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में इतना खूबसूरत गीत आपके लिए था। अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे आवाज़ भूपेंद्र सिंह की। और दोस्तों बता दें, ये जो गीत है ये फिल्म के जे क्रोनिन के प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रीन ईयर्स पर आधारित थी ये फिल्म बेसिकली। और इसी फिल्म का ये गीत है जिसका निर्देशन गुलजार साहब ने किया था। और फिल्म मौसम ने राष्ट्रीय पुरस्कारों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब जीता था और शर्मिला टैगोर को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था।

अब इस कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं एक बेहद भावुक गीत फिल्म मासूम से, जिसे गुलजार साहब ने लिखा है और आर डी बर्मन ने संगीत दिया था। इस सदाबहार गीत में आप आवाज़ सुनेंगे लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: रात्रि के 2 बजने वाले हैं। अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियाँ चलाने वाले भारत, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे BSF से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे हैं और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क की एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव

0: कुछ कहानियाँ अधूरी ही अच्छी होती हैं, और इसी के साथ अब नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार यहीं समाप्त करने की अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। फिलहाल रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे BSF से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11,00,000 से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधारित वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20,00,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती कीमत को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। ब्राज़ील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राज़ील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये फैसला कथित अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर लिया गया है। नए शुल्क 22 जुलाई से लागू होंगे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा

63 रन बनाए। विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत लाई। जो रूट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव 24x7 चैनल है। रात्रि के 3 बजे हैं, 3:10 हुए हैं श्रोतों। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल आपके साथ, मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तलत अजीज द्वारा गाई एक बेहतरीन गजल के साथ।

अभी आपने मिर्ज़ा गालिब की गज़ल सुनी सोमेश कुमार के स्वर में। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म मासूम से।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। श्रोताओं, रात्रि के 4 बज चुके हैं। ये वक्त है कार्यक्रम अर्चना का।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भोशंभ।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत के अंतर्गत रुद्र वीणा, प्रस्तुति सरस्वती राज गोपालन की है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई सन 2026। सुबह के 4:54 और ठीक 25 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत भद्रासन और अश्वत्थासन के बारे में बताया जाएगा। 5:20 पर देशभक्ति संगीत आप सुन सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत स्वरंजनी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 5:30 पर।

हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी प्रातः 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। हिंदी समाचारों के उपरांत 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का रहेगा।

0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर चिंतन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:40 पर। रामचरितमानस से पाठ बालकांड भाग 119 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। 6:55 पर संस्कृत समाचार होंगे। 7 बजे पुनः आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 का समय संगीतिका कार्यक्रम का रहेगा और 7:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित गीतों भरी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और हिंदी समाचारों के उपरांत अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन

0: चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद के मानसून सत्र से पहले आज एनडीए की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों के अनुसार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार किया जाएगा। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,73,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ब्राज़ील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ का विरोध किया है। अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की भी ब्राज़ील ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राज़ील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज सुबह 9:30 बजे फिर शुरू होगी।
2: चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ।
1: कल रात अंधेरा होने पर रथों को रोक दिया गया था। आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। उधर कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, 5:11 और ठीक 13 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को कर

ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें।

ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी सांस लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई कंप्यूटर कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, 5:20 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी।